0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: और वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पीके ट्रेंड ऐप प्ले स्टोर से। रहिए हमेशा ट्रेंड में।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: श्रोतागण, ई प्रातःकालीन बेला में स्वागत बा रउआ सबके प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। तो दोस्त लोग रउआ तो जानत ही बानी कि ई प्रोग्राम लेके आवेली राव रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले रउआ सबके सुप्रभात प्रणाम। दोस्त लोग, हर बार की तरह ई बार भी हमरा पास बार रोज स्वास्थ्य की संवारे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स। तो चलिए शुभ आरंभ कर जाओ आज के कार्यक्रम के। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चना के शक्तिशाली गुण के बारे में। नाश्ता खातिर एक मुट्ठी काला देशी चना पानी में डाल के रख दी। सुबह एक एक कच्चा या उबाल के या तवा पर थोड़ा भून के मसाला मिला के खूब चबा चबा के खाएं। चना के साथ किशमिश खा सकता नहीं और ये कोनो मौसमी फल भी खा सकता नहीं। तो केला के पानी से धो के छिलका सहित गोलकार टुकड़ा में काट ली और ये छिलका सहित चबा चबा के खाई। नाश्ता में अन्य कोनो चीज ना ली। भोजन में भी रवा चना के इस्तेमाल कर सकता नहीं, जैसे रोटी के आटा में चोकर मिलल होखल होके और इस सब्जी या दाल में चना के चुनी यानी चना के छिलका मिलल होखल होके तो ई आहार बहुत ही सुपाच्य और ई पौष्टिक हो जाला। चोकर और ई चना में सब प्रकार के पोषक तत्व होला। चना गैस ना करेला। शरीर में विषाक्त वायु होके तो अपान वायु के रूप में बाहर निकाल देला। ऐसे पेट साफ और हल्का रही, पाचन शक्ति प्रबल बनल रही, खाल पियल अंग लागी, जैसे शरीर चुस्त दुरुस्त और शक्तिशाली बनल रही। कमजोरी, गैस, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, भकंदर आदि रोग ना हुई। चना के आटा के उपटन शरीर पर लगा के स्नान करे से खुजली रोग नष्ट होला और ये त्वचा उजला होला। पूरा परिवार चना के नियम पूर्वक सेवन करे तो घोड़ा की तरह शक्तिशाली, फुर्तीला, सुंदर और परिश्रमी बनल रह सकेला। जैसे में गेहूं, चना और जौ तीनों समान वजन में जैसे तीनों दो दो किलो लेके मिला ली। और मोटा पिसवा के चाले बिना यानी चोकर सहित आटा की रोटी खाइल शुरू कर दी। एके बेजड़ या मिक्सी रोटी कहल जाला। चना के गरीब के भोजन भी कहल जाला, लेकिन एके ताकत के हमनी के अनदेखा कर देनी सा। चना सस्ता भी है और सरल सुलभ भी। ऐसे हमनी के पथ्य यानी सेवन करे योग्य आहार के रूप में चना के सेवन करके स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त करे के चाहिए। तो दोस्त लोग ई तरह है चना के घरेलू नुस्खा। चलिए अब जान लिया जाओ रंगीन आहार सेहत के आधार एकरा बारे में। वैज्ञानिक लोग ई पौले बा कि अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ रोग शरीर के अलग अलग हिस्सा के फायदा पहुंचावेला। तो चलिए जानल जाओ कि कौन सा रंग शरीर के कौन अंग के मित्र है। सफेद यानी आलू लहसुन सफेद मशरूम आदि रोगा फेफड़ा खातिर फायदेमंद होला। नारंगी रंग प्लीहा के सलामती खातिर नारंगी रंग के चीज खाइल फायदेमंद होला। संतरा में विटामिन सी तो होला ही, कुछ मात्रा में विटामिन ए भी होला जौन प्लीहा खातिर अच्छा होला। हरा फल सब्जी में लूटीन व इंडोल नामक फाइटोकेमिकल्स होला जौन लीवर के रक्षा करेला, अतः हरा रंग की चीज खूब खाएं। जामुनी, यदि रउआ अपना मस्तिष्क के सलामती चाहतनी तो जामुनी फल सब्जी के अपना आहार में शामिल करें। इमे हा अंगूर प्याज जामुनी रंग के पत्ता गोभी बैगन आदि शामिल करें। दोस्तों यूं काला रंग लोग के कम ही पसंद होला, खास तौर पर खाए पिए के मसाला में, लेकिन यकीन मानी काला रंग के आहार रोग गुर्दा खातिर बहुत लाभकारी हुई। अतः मुनाका काली चौला फली काला जैतून आदि खाई करी। लाल, यदि रोवा दिल के रक्षा करे के चाहतनी तो लाल रंग के चीज खाई। लाल रंग के फल सब्जी में फाइटोकेमिकल्स पावल जाला, तरबूज अमरूद टमाटर आदि ई श्रेणी में आवेला। एस्ट्रॉबेरी रसबेरी और वीट रूट में एंथोसाइनिन पावल जाला। ये फाइटोकेमिकल्स के ही एगो समूह है जौन उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करेला और डायबिटीज से जुड़ल समस्या से बचाव करेला। तो दोस्तों अब हम बताएं दूध से निखरत कोमल सौंदर्य के घरेलू नुस्खा। दूध के गुलाब जल में मिला के लगावे से त्वचा के रंगत निखरेला। दूध में थोड़ा सा नमक मिला के चेहरा पर सुबह शाम लगावे से मुहासा दूर होला। बादाम बेसन गाजर के रस दूध में मिला के उबटन की तरह लगावे से त्वचा में कमनीयता आवेला। दूध के पूरा शरीर पर लगा के रगड़े से त्वचा में चमक आवेला। नाखून के सुंदर बनावे खातिर कुछ देर दूध में भिंगा के रखी। बर्तन साफ करे से हाथ खुरदुरा हो जाला। ते ए पर दूध में नींबू के रस मिला के लगावे से राउर हाथ सुंदर हुई। होठ के कलापन दूर करे खातिर दूध के होठ पर प्रतिदिन लगाई। आधा चम्मच काला तिल और आधा चम्मच सरसों के बारीक पीस के दूध में मिला के मुहासा पर निरंतर लगावे से फायदा होला। चिरौंजी के दूध के साथ पीस के लगावे से त्वचा चमकदार बनेला। तो दोस्त लोग अब जानल जाई जब पेट में दर्द होके तब का करे के चाहिए। पेट के ऊपरी भाग में दर्द की स्थिति में 3 बूंद पिपरमेंट ऑयल, 2 बूंद क्लोव ऑयल, 1 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल के मिश्रण में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला के मालिश करे से लाभ होला। दर्द यदि पेट के निचला हिस्सा में होके तो 2 बूंद जिरेनियम ऑयल, 2 बूंद रोजमेरी ऑयल। वह 1 बूंद जिंजर ऑयल में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल के दर्द वाला भाग पर हल्का हाथ से मालिश कर जा सकेला तो ऐसे दर्द में राहत मिली। तो दोस्त लोग ई रहला आज के घरेलू नुस्खा जिमे हमनी के जननी हसन चना के घरेलू नुस्खा और रंगीन आहार के बारे में, ओकरा साथे साथे दूध से निकलल कोमल सौंदर्य के बारे में। तो अब वो वक्त आ गई बा जिमे दीपाली ली है रउआ से जाए के इजाजत। तो रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल। नमस्कार।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
10: मैं वो सब देख सकता हूँ जो केवल आपने भोगा है। आपका वो दर्द जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, उसको मैं समझता हूँ। मैं आकाश हूँ। अब सत्यवती को क्या पता था कि एक दिन महर्षि पराशर से मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि एक दिन वो आर्यवर्त के सबसे बड़े घराने की बहू बनेंगे, पर वो बहू बनी भी और एक दिन खुद उनके अपने ही बेटे के सामने ये रहस्य खोलना भी पड़ा। यही है जिंदगी, ऐसी ही चाल है इसकी। यहां सब कुछ अपने हिसाब से कहां चलता है। तो सत्यवती के साथ जो भी हुआ हो, भीष्म बड़ी उलझन में पड़ गए जब उनको महर्षि व्यास के पास जाना पड़ा।
11: मेरा परिचय मेरे कर्मों से है। मैं एक साधक हूं, एक तपस्वी हूं। मैं सांसारिक इच्छाओं व आकांक्षाओं से बहुत दूर हूं भीष्म। मैं तो बस हस्तिनापुर में जो हो रहा है उसका साक्षी हूं।
12: यदि आप हस्तिनापुर की घटनाओं के साक्षी हैं महर्षि, तो आप उस आवश्यकता को समझ सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक बार, बस एक बार हस्तिनापुर चलें।
11: क्यों भीष्म? इस सन्यासी का राजमहल में क्या काम?
12: मैं आपको आपकी माता से मिलाना चाहता हूं।
11: मेरी माँ से? आप जानते हैं मेरी माता कौन है?
12: हाँ महर्षि, मैं जानता हूँ।
11: कौन है मेरी माता?
12: देवी सत्यवती। मेरी माता सत्यवती आपकी भी माता है और आपको उनसे मिलना है। वो आपके दर्शन करना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं।
11: यदि ऐसा है तो मैं उनसे अवश्य मिलना चाहूंगा, उस माता से अवश्य मिलना चाहूंगा जिसने मुझे जन्म लेते ही इस वीरान द्वीप पर छोड़ दिया। मैं उस माता को धन्यवाद देना चाहूंगा।
12: क्या आपकी जिस माता ने आपको जन्म देकर इस वीरान द्वीप पे छोड़ दिया, आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं?
11: उन्होंने मुझे यहां लाकर छोड़ दिया जिसके कारण मैं साधक बन सका। यही मैंने जीवन के रहस्य जाने, सारी सिद्धियां प्राप्त की। ऐसी महान माता से कौन पुत्र नहीं मिलना चाहेगा?
12: तो मेरे साथ चले ऋषिवर, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी।
13: अंबिका, आज तुम वैसा ही श्रृंगार करोगी जैसा अपने पति से पहली बार मिलने के लिए किया था। वैसे ही आभूषणों से सजोगी जैसे उस समय सजी थी।
14: पर क्यों राजमाता, आज कोई विशेष दिन है?
13: हाँ, तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। अंबालिका, तुम भी आज पूरा श्रृंगार करोगी। विंता, ये विंता कहाँ गई?
15: जी राजमाता, यही हूँ।
13: अंबिका और अंबालिका के पैरों में महावर रचा, इनका श्रृंगार करो।
15: जी राजमाता।
14: पर बात क्या है राजमाता, क्या हमें किसी उत्सव में जाना है?
13: जितना कहती हूँ उतना करो अंबिका, समय आने पर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे।
14: ये आज राजमाता को क्या हो गया विंता? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कोई आदेश दिया हो और उसका कारण नहीं बताया हो।
15: अब राजमाता के मन की बात मैं कैसे समझ सकती हूँ महारानी, मैं तो आदेश का पालन करने वाली एक दासी हूँ।
14: पर उन्होंने तुम्हें कुछ तो बताया होगा।
15: क्षमा करें महारानी, हस्तिनापुर का हित मेरे लिए सबसे ऊपर है और मुझे लगता है कि यदि राजमाता ने किसी बात को छिपा कर रखना चाहा है तो उसके छिपे रहने में ही हस्तिनापुर का हित है। पर विश्वास रखिए, मेरा मन कहता है कि राजमाता सत्यवती जो भी करेंगी वो आपके शुभ के लिए ही करेंगी।
16: हस्तिनापुर नरेश, सभासदो, अंतपुर वासियों, आर्यवर्त के सर्वसिद्ध महर्षि व्यास पधार रहे हैं। महर्षि व्यास की जय। महर्षि व्यास की
12: जय। आइए राजमाता, अपने महर्षि पुत्र का स्वागत कीजिए।
11: माता, आशीर्वाद दें। माता, अपने पुत्र को आशीर्वाद दें। आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया।
13: सुखम जीवेत पुत्र, आओ चलो कक्ष में चलो।
15: आप हंस क्यों रही हैं महारानी?
14: अपने आप पर हंसी आ रही है। पता है, जब मैं नई बहू के रूप में यहाँ आई थी, शायद इतना श्रृंगार तो मैंने तब भी नहीं किया था।
17: उस समय की तो परिस्थितियां ही कुछ और थी दीदी, श्रृंगार का समय कहाँ था तब।
13: पुत्र, अपनी माता को क्षमा कर देना, मैंने बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ।
11: ये आप क्या कह रही हैं माते, कैसा अन्याय, कैसी क्षमा? आपने तो मुझे जीवन दिया है, दिव्य दृष्टि दी है। आपके कारण ही मैं आज इस संसार में इतना सम्मानित हूं। ये मान तो किसी राजा महाराजा को भी नहीं मिलता माते।
13: अपने ज्ञान का श्रेय तुम मुझे दे रहे हो, ये तुम्हारी महानता है पुत्र। पर सच यही है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। लोक लाज के भय से तुम्हें यमुना के एकांत में तुम अबोध थे, तुम असहाय नवजात शिशु थे,
18: और मैं इस राजभवन के वैभव में गिरकर तुम्हें भूल गई थी।
11: ईश्वर जो भी करता है शुभ करता है माते। मुझे जिस मार्ग पर जाना था वो मार्ग मुझे अपने आप मिल गया। आपकी कृपा से मुझे सिद्धियां मिली, वेदों का ज्ञान हुआ, मैं सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ गया। पर आज अचानक जब मुझे आपकी सूचना मिली तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। आज मैं आश्रम से बाहर पहली बार किसी राजमहल को देख रहा हूं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
18: तुम्हें गुरुकुल की रक्षा करनी है।
11: मैं समझा नहीं, एक सन्यासी राजकुल की रक्षा कैसे कर सकता है?
18: तुम कर सकते हो पुत्र।
11: पर कैसे? इस राजवंश पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है?
18: क्या देवव्रत ने कुछ बताया नहीं?
11: उन्होंने तो मुझे ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया।
18: ठीक है, मैं बताती हूँ, पर पहले मुझे वचन दो कि तुम ना नहीं कहोगे।
11: बिना कुछ सुने बिना कुछ समझे मैं वचन कैसे दे सकता हूँ माते?
13: तुम सर्वसिद्धि महर्षि हो, ज्ञान के भंडार हो,
18: और मैं एक साधारण स्त्री हूँ, सांसारिक बंधनों में बंधी हुई माता।
13: सुख वैभव माल राजकोष इस सब से मुझे मोह है। जीवन के इस पड़ाव पर मैं इस मोह से मुक्त भी नहीं हो सकती, और मैंने तुम्हें इसी मोहवश बुलाया है। तुम वचन दो कि अपनी माता का निवेदन ठुकराओगे नहीं।
11: माता का निवेदन एक पुत्र कैसे ठुकरा सकता है? आप निवेदन करें माते।
13: विचित्र वीर्य की पत्नियां अंबिका और अंबालिका संतानहीन है, और भविष्य में उनसे संतान की कोई आशा भी नहीं है।
11: परमाते, आप एक सन्यासी से क्या चाहती हैं?
13: संतान चाहती हूँ, हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी चाहती हूँ पुत्र।
11: परंतु मैं इसमें आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? सांसारिकता ने मुझे कभी छुआ तक नहीं।
13: नियोग प्रथा तो जानते हो तुम पुत्र, विशेष स्थिति में संतान प्राप्ति के लिए नियोग का सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई अधर्म नहीं है।
11: पर मैं संसार से विरक्त हो चुका हूँ माते, मोह माया से मुक्त हो चुका हूँ मैं। स्त्रियों के लिए मुझ में कोई आकर्षण नहीं है।
13: तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं करना है पुत्र, जो भी करना है लोक परंपरा के अनुसार गुरुकुल के लिए करना है।
11: नहीं, ये सही नहीं है।
13: तुम सच से बचने का प्रयास कर रहे हो।
11: नहीं माते, मैंने वचन दिया है तो उसे पूरा करूंगा। पर
13: कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो गए?
11: विचित्र वीर्य की पत्नियां नियोग स्वीकार भी कर लें, पर वे मुझे स्वीकार नहीं कर सकती, मेरे साथ उतनी सहज नहीं हो सकेंगी।
13: तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो पुत्र। मन से स्वीकार करना या ना करना मैं समझती हूँ, पर गुरुवंश के मिट जाने के संकट के सामने ये कुछ भी नहीं है।
11: मैं कैसे समझाऊं कि नियोग स्त्री की भावनाओं के विरुद्ध?
13: इस समय मैं ना भावनाओं को समझना चाहती हूँ और ना उसका ये समय है। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वो तुम्हें करना है।
11: ठीक है माते, फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।
19: महारानी, मैं ऋषि व्यास नियोग के लिए आए हैं।
14: क्या? हे ईश्वर,
19: ये तुम क्या बोल रही हो विंता? हमारा ये श्रृंगार, हमारे कक्ष का ये श्रृंगार, क्या ये सब हमारे नियोग के लिए है?
20: हाँ महारानी, राजमाता निश्चित कर चुकी हैं।
14: पर कौन है वो महर्षि व्यास जिसे हम भेंट किए जा रहे हैं? हमें किसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है?
19: पर इस नियोग के अलावा क्या और कोई रास्ता नहीं है?
13: रास्ता मैंने तय कर लिया है, क्योंकि राजमाता मैं हूँ, और राजवंश की रक्षा का भार मुझ पर है। रात्रि में तुम्हें अपने कक्ष में उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। ध्यान रखना विंता, कोई कमी न रहे। महर्षि व्यास के स्वागत सत्कार और महारानियों के पास पहुंचने का भार तुम पर है। मैं जानती हूं कि अंबिका और अंबालिका ही क्या, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। पर तुम जानती हो कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पल पल की सूचना देनी होगी। यदि कोई भूल हुई तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी।
20: चिंता ना करें राजमाता।
13: जाओ अंबिका को सूचना दो।
20: जो आज्ञा राजमाता।
10: सत्यवती के बेटे महर्षि व्यास बचपन से ही जंगल में छोड़ दिए गए थे। वहां साधुओं की संगत मिली तो डूब गए तपस्या में। एक तो धूप ताप से अजीब कुरूप से हो गए थे, फिर विशाल काय शरीर पे बाघ की खाल, लाल लाल आंखें और लंबी लंबी जटाएं, मतलब भयानक समझते हैं आप, भयानक। अब महलों में पली बड़ी रानी ऐसे इंसान को देखेगी तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप। व्यास को देखा डर गई अंबिका, आंखें बंद हो गई। अच्छा क्या ये नियोग की परंपरा आपको अजीब नहीं लगी? लेकिन ये भी सच है कि आपके आसपास ऐसा बहुत कुछ अजीब है, पर आपको उसकी आदत पड़ गई है इसीलिए वो आपको अजीब नहीं लगता। बुद्धि लगाइए। महा

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 8023-3586-76 या 95-999-27-982।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन।

0: जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बढ़ते जलस्तर से खौफ में लोग कई गांवों में घुसा पानी। लूट कांड में शामिल आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान हो गई मौत। विदेश प्रवासन को लेकर जागरूकता बैठक का हुआ आयोजन। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों के साथ की खास बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंग के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद गोपालगंज अंचल अंतर्गत जगीरी टोला पंचायत के मुंगारहा गांव के वार्ड संख्या 1, 2, 3 और 5 में प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य लगातार संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखते हुए प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह, अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के मद्देनजर जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह और जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भी डुमरिया घाट का निरीक्षण किया, नदी के जलस्तर और तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगले कुछ घंटों में जलस्तर में कमी आने की संभावना है। इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। सदर प्रखंड के सिहोरवा गांव के पास बांध में रैट होल मिलने से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिलाधिकारी के निर्देश पर कम्युनिटी किचन बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध करा दिया गया है और लगातार बाढ़ पीड़ित लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर जल स्तर बढ़ने के साथ ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने भी गोपालगंज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। प्रशासन को जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सदर विधायक सुभाष सिंह ने भी सदर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, जनता की समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रशासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली गई है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से बांध के निचले इलाकों के कई गांवों में पानी घुस गया है और इससे एक बहुत बड़ा वर्ग बाढ़ से परेशान है। बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बच्चों और पशुओं की विशेष ख्याल रखी जा रही है। वहीं घरों में पानी घुसने से लोग बांधों पर शरण ले रखे हैं। इस दौरान कई सुरक्षित स्थानों पर कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। मोहम्मदपुर ओवर ब्रिज के पास अंडा व्यवसायी के चालक से हुई लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। इस मामले में आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 67,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन और लूट में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक व्यवसायी के यहां काम करने वाले कर्मचारी ने नगदी की जानकारी अन्य आरोपियों तक पहुंचाई थी, जिसके बाद लूट की साजिश रची गई। चालक को बकरी के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कहकर रोका गया और चाकू का भय दिखाकर पैसे लूट लिए गए। मामले में फरार अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और शेष लूट की रकम को बरामद करने के लिए भी छापेमारी की जा रही है। समाहरणालय के सभा कक्ष में आज सुरक्षित एवं वैध विदेश प्रवासन विषय पर जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रवासी संरक्षक संजय कुमार ने की। बैठक में विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले जिले के युवाओं एवं उनके परिवारों को सुरक्षित प्रवासन के प्रति जागरूक करने तथा विदेश जाने से पूर्व आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी गई। बैठक में अमरजीत कुमार सेक्शन PO 2, सुमित कुमार SO तथा सामान्य शाखा प्रभारी संदीप कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी और कर्मीगण उपस्थित रहे। इस दौरान बताया गया कि विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को किसी भी एजेंट या बिचौलियों के झांसे में आने से बचना चाहिए। आज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 23 वर्षीय नीरज कुमार यादव था, जो शराब तस्करी के मामले में उत्पाद पुलिस के द्वारा कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ था और इसे जेल भेजा गया था। जेल में अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल में रेफर कर दिया और सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के दौरान नीरज कुमार यादव की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट और सूचना नहीं देने का आरोप लगाया और इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक कटिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव का रहने वाला था। अब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले की आवश्यक जांच पड़ताल कर रहे हैं। विदेश जाने से पहले पासपोर्ट, वीजा, रोजगार अनुबंध, मेडिकल रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेजों की विधिवत जांच करनी चाहिए। साथ ही विदेश में रोजगार के लिए अधिकृत एवं वैध माध्यम का ही उपयोग करने की सलाह दी गई। जागरूकता सामग्री के माध्यम से बताया गया कि विदेश जाने वाले व्यक्ति अपने रोजगार अनुबंध को अच्छी तरह से पढ़ें और वेतन, कार्य की प्रकृति, काम के घंटे, रहने की व्यवस्था तथा अन्य शर्तों की जानकारी पहले से प्राप्त करें। अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने तथा उनके आवश्यक प्रतियों को परिवार के सदस्यों के पास भी रखने पर बल दिया गया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला शाखा गोपालगंज की ओर से 29-30 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से अगले 10 बजे दिन तक 24 घंटे का विशाल धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर सिंह तथा जिला मंत्री रामायण सिंह ने किया। एसोसिएशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 24 घंटों के धरने पर बैठा हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षा बैठक की। शिक्षकों के वेतन, बकाया वेतन और अंतर वेतन से जुड़े लंबित विपत्र जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाढ़ प्रभावित विद्यालयों को नजदीकी स्कूल से टैग करने का प्रस्ताव तत्काल भेजने को कहा गया। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की सेवा संबंधित सभी प्रविष्टियां अपडेट करने और स्कूलों में 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। आज राजद पार्टी के नेताओं ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान रामपुर टेंगराही, सिमराही, बिशुनपुर कुट्टी, सिहोरमा आदि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और परेशानियों की जानकारी ली। बाढ़ प्रभावित लोगों ने टीम को बताया कि नाव, जल जमाव, आवागमन, भोजन, पेयजल, पशुओं के चारे तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज पुलिस केंद्र गोपालगंज में पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न थाना और शाखाओं से उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया और उसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। माझा थाना पुलिस ने कांड संख्या 224/2024 NDPS एक्ट के मामले में 3 अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी गुड्डू कुमार, रवि रंजन और विशाल कुमार, ये सब मिश्रवलिया थाना माझागढ़ के रहने वाले हैं, इन्हें NDPS एक्ट में दोषी पाया और आरोपियों को 1 वर्ष कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। सिरीपुर थाना की पुलिस ने 24 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है और एक मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। कटिया थाना की पुलिस ने भी 216 लीटर विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सिधरिया पुल के पास छापेमारी करते हुए कार को पकड़ा और इसके अंदर से 216 लीटर विदेशी शराब मिली। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कृषि अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा वैज्ञानिकों ने सारण और वैशाली जिलों में प्रारंभिक बाढ़ क्षति का आकलन किया। डॉक्टर अनूप दास, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मार्गदर्शन में संस्थान के तीन वैज्ञानिकों की बहुविषयक टीम डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रोहन कुमार रमन एवं डॉक्टर राकेश कुमार ने सारण और वैशाली जिलों में बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर गंगा एवं गंडक नदियों के बाढ़ के पानी से कृषि फसलों, बागवानी फसलों तथा कुछ हद तक पशुधन पर पड़े प्रभाव का प्रारंभिक आकलन किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बढ़ते जलस्तर से खौफ में लोग कई गांवों में घुसा पानी। लूट कांड में शामिल आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान हो गई मौत। विदेश प्रवासन को लेकर जागरूकता बैठक का हुआ आयोजन। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों के साथ की खास बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 97565-7750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
4: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं।

0: नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत, सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
2: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
2: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
4: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
2: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
5: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
6: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर अवश्य दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है, अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुगरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, NCERT की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी, ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
11: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
10: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
11: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
10: कहाँ?
11: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
12: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
13: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
12: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
13: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
12: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
13: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-3586 या 95-99-27-982।
12: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
12: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
13: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
13: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
14: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
15: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
14: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
15: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
14: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
12: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
13: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
12: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: मेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 6252-62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
8: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
7: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
8: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
7: कहाँ?
8: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
4: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
4: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
4: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-3586 या 95-99-27-982।

0: बाद पटना और गया जी को स्वच्छता के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आज मध्य रात्रि से वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद हो जाएगा। 3 महीने तक रहेगा मेगा प्लाव। और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार और गूगल के बीच हुआ समझौता। अब समाचार विस्तार से। गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ का दायरा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज और सारण जिले तक बढ़ गया है। इन जिलों के 200 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज में अभियंताओं का दल भेजा है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी की तेज धारा ने जिले में 10 घंटे के भीतर चंपारण तटबंध को 4 जगहों पर ध्वस्त कर दिया।
1: चंपारण तटबंध खैरटवा, फुलिया खाड़, बथवरिया और गोलाघाट में क्षतिग्रस्त हो गया है। तटबंधों के टूटने से 150 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। बाढ़ से 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। फसलें डूब गई है और हजारों लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। इधर जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 13 घंटे तक 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का प्रवाह रहा। हालांकि कल शाम तक जल स्राव घटकर 1,66,000 क्यूसेक हो गया। बगहा में नदी का जल स्तर 91.25 मीटर पहुंच गया है, जो अब तक का नया उच्चतम स्तर है। जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी लगातार बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में जुटे हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर पूर्वी चंपारण के अरेराज में भी गंडक का रिंग बांध टूट गया है। रिंग बांध टूटने के चलते सरैया, पांडेटोला, लोकनाथपुर और मिश्रोलिया पंचायत के सिकटिया गांव में 5 फीट तक पानी भर गया है। अरेराज पटना स्टेट हाईवे पर पानी चढ़ने से आवागमन बंद है। संग्रामपुर प्रखंड में अरेराज हाजीपुर SH74 पर इजरा के पास 2 फीट पानी भर रहा है। वहीं पिपरासी के सुगोली में भी पीपी तटबंध का रिटायर बांध टूट गया। इससे तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है। कल शाम नौतन गोपालगंज पथ पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। गोपालगंज के सिद्धवलिया प्रखंड के शीतलपुर बंजरिया में गंडक नदी के दबाव के चलते जमींदारी बांध टूट गया है। जिले के 37 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बैकुंठपुर, सिद्धवलिया, माझागढ़, गोपालगंज सदर और बरौली प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। छपरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि पानापुर, मकेर, परसा और तरैया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है। मुजफ्फरपुर के माधोपुर, हजारी से जेमल डुमरी तक गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। वैशाली जिले के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इधर बागमती और कोसी में पानी का दबाव बढ़ने से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पटना और गया जी को स्वच्छता के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। देश के 50 चुनिंदा शहरों में बिहार के इन दोनों शहरों को प्रगति 50 पहल के तहत शामिल किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत दोनों शहरों में स्वच्छता, जल प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल पटना में प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। बैठक में राज्य सरकार लंबित प्रस्तावों को मंजूरी देने और नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का आग्रह करेगी। इससे पहले श्री गडकरी राइजिंग बिहार इन्वेस्टर समिट में भी शामिल होंगे। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आज मध्य रात्रि से वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद हो जाएगा। क्षतिग्रस्त स्लैब के अस्थायी पुनर्स्थापन के लिए 3 महीने का मेगा ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान टूटे स्लैब को बदलने के साथ ही 3 अन्य स्लैब को दुरुस्त किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: साथ आपदा मित्र भी तैनात रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने साहिबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। विधायक को राउस रेवेन्यू अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 वर्ष कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। राजू कुमार सिंह ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर सजा निलंबित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है, लेकिन सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि लंबे समय तक पति पत्नी का अलग रहना मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने 15 वर्षों से अलग रह रहे दंपति के मामले में यह टिप्पणी करते हुए तलाक की मंजूरी दी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान ने किस प्रकार देश की एकता में विविधता की भावना को मजबूत किया है।
3: भारत की विविधता में एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था,
4: एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ, अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक।
3: अभियान के तहत इस वर्ष युवा संगम के 6th चरण में पंजाब को बिहार के साथ जोड़ा गया है। IIT पटना समेत प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के 60 छात्रों ने पंजाब का दौरा कर वहां की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना।
5: मेरा नाम उमा कुमारी है, के नवादा जिले से वारसलीगंज से आती हूं। मुझे भारत सरकार की पहल युवा संगम फेज 6 के अंतर्गत IIT पटना के माध्यम से बिहार से पंजाब तक जाने की इस यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला। शहीद भगत सिंह का पैतृक घर, बागाघाट बॉर्डर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को प्रत्यक्ष देखने के लिए मुझे ये अवसर मिला।
6: मेरा नाम शिवम सांडिल है, मैं RS कॉलेज तारापुर मुंगेर से BSc का छात्र हूँ। युवा संगम कार्यक्रम के तहत मुझे बिहार को पंजाब में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। संगम कार्यक्रम के तहत हमने जो पंजाब की संस्कृति, वहाँ की मेहमान नवाजी, वहाँ का इतिहास देखा, वो मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा।
3: एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य भारत की विविधता को केवल जानना नहीं, बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना और आपसी समझ को मजबूत करना है। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
1: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार और गूगल के बीच समझौता हुआ है। एक रिपोर्ट।
7: विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और गूगल LLC के बीच पटना में संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य शिक्षकों की AI दक्षता बढ़ाना और आधुनिक डिजिटल तकनीकों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। समझौते के तहत गूगल AI एजुकेटर सीरीज के माध्यम से शिक्षकों को हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में जेमिनी और नोटबुक LM जैसे AI उपकरणों के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के साथ पाठ योजना तैयार करने और शिक्षण पद्धति बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और भाषा प्रयोगशालाओं के विकास में भी सहयोग मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: राज्यपाल सह कुला

0: कुलपति सैयद अता हसनैन ने कुलपतियों को विद्यार्थियों से निरंतर संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लोक भवन में पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक में उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने बेलसन विधायक अमित रानू पर आपराधिक इतिहास छिपाने के मामले में 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दानापुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बेगूसराय के एक होटल में युवती से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसे समस्तीपुर के मोहीउद्दीन नगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में उसके बहनोई विक्रम सानी को भी गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के फरहंगपुर बहियारा के पास सोन नदी में पुलिस टीम की नाव डुबोने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने सारण, गोपालगंज, सिवान और भोजपुर जिले से 23 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चंपारण तटबंध 10 घंटे में 4 जगह टूटा। गंडक की बाढ़ से चंपारण से गोपालगंज सारण तक त्राईमाम। प्रभात खबर की सुर्खी है, जच्चा बच्चा की सेहत और बच्चों की अच्छी पढ़ाई सरकार की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, अस्पतालों में 10 गुना कीमत पर कैंसर की दवा बेचना नरसंहार। दैनिक भास्कर लिखता है, TRE4 में 932 पद बढ़े, 33,320 सीटों पर अब होगी शिक्षकों की भर्ती। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, कृषि विकास के लिए बिहार को केंद्र से मिले 114 करोड़ रुपए। आज अखबार ने एशियाई खेलों की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सोने से दमकी बेटियां, 10वें दिन भारत ने 2 गोल्ड समेत जीते 8 मेडल। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सारण समेत अन्य तटवर्ती जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रगति 50 पहल के तहत पटना और गया जी को स्वच्छता के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आज मध्य रात्रि से वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद हो जाएगा, 3 महीने तक रहेगा मेगा ब्लॉक। और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार और गूगल के बीच हुआ समझौता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 94 FM में।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं मनीष राजा फाइन और कुछ बोल रहा हूँ।
2: जी, कैसे हैं आप?
1: बताइए
2: जी। हम लोग भी अच्छे हैं।
1: मौसम का क्या हाल है?
2: अभी तो मौसम इधर काफी सुहाना मौसम बना हुआ है।
1: हम लोग की तरफ हुआ है मौसम सही। अभी तो मैं पंजाब में हूँ
2: जी,
1: इधर भी मौसम सही हुआ है, बादल घेरा हुआ है, बारिश का मौसम है।
2: अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना
1: सब बताइए?
2: और सब तो बढ़िया है।
1: गाना सुना है, सुना दीजिएगा।
2: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: जान पिक्चर का गाना सुना दीजिए, हिंदी पिक्चर का।
2: और गाने की बोल
1: जान मेरी जान।
2: और गाना किसी को सुनवाना भी है
1: तो पहले आपको पूरा रेडियो रेंजन सुनने वाले कराता हूँ।
2: जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: कब तक बजेगा मैम
2: ये? आपको आज शाम को 5 से 7 के बीच बज जाएगा, नहीं तो कल शाम को 5 से 7 के बीच बजेगा।
1: पहला कॉल है मेरा।
2: जी जी, पहला ही कॉल है।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, नाम बता दीजिए पहले अपना।
1: मेरा नाम जगत प्रसाद है।
0: और कहाँ से है आप?
1: गोपालगंज मठिया से।
0: जी, तो कौन सा गाना सुनना है आप?
1: कांटे फैले की फिल्म का प्यार नहीं करना जहां तारा काटा है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
1: सबसे पहले आपको सुनाना चाहते हैं।
0: जी,
1: जितना रेडियो आदमी को सुनाना चाहता है।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: कब तक हो जाएगा जी
0: ये? आपको आज शाम को नहीं तो कल शाम को सुनने को मिलेगा, 5 से 7 के बीच में।
1: आपका समाचार ठीक है जी?
0: जी जी, मेरा समाचार ठीक है, आप ठीक है ना?
1: हाँ जी, हमारा भी ठीक है
0: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: हाँ जी ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: Yeah। बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
11: नमस्कार मैडम।
12: जी नमस्कार,
11: बोल रहे हैं हम हाथा मठिया से बोल रहे हैं मैडम।
12: जी नाम बताइएगा अपना।
11: मंतोष माझी
12: जी, क्या हालचाल है आपका?
11: ठीक है, अपना बताइए।
12: जी हम सबका भी ठीक है।
11: फरमाइश करना था एक मैम।
12: बिल्कुल बताइए, कौन से गाने की फरमाइश है?
11: हिंदी में कोई अपना अच्छा गाना लगा दीजिए ना, देवफाई वाला कोई।
12: हिंदी में?
11: हिंदी में जो आपको अच्छा लगता हो।
12: अच्छा, तो हम लोग तो हमेशा अपनी पसंद के गाने आप लोगों को सुनाते रहते हैं।
11: मैं चॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब साइड सॉन्ग कोई अच्छा से लगा दीजिए।
12: जी जी, कोई बात नहीं। और गाना आप किसी को सुनाएंगे भी?
11: जी
12: बिल्कुल बता दीजिए।
11: नाम नहीं बता सकते हैं ना।
12: अच्छा जी, चलिए कोई बात। तो आपका गाना प्ले कर दीजिए।
11: कोई अच्छा सॉन्ग लगाना कि साइड सॉन्ग की उसके पास तक ले चला जाए।
12: जी जी बिल्कुल, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
11: एक मैम ऐसा देना था, एक दोस्त लो है।
12: जी जी बिल्कुल,
11: तनु और मनु हाथा मठिया से दोस्त लो है, थोड़ा सा ये भी डाल दीजिएगा, उन लोग भी सुन ले मेरा साइड सॉन्ग।
12: जी बिल्कुल,
11: धन्यवाद मैडम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: हेलो
0: जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं बस।
0: तो कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए आप।
1: मनोरमा हुआ हूँ
0: जी। और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: जी आपको, मनोरमा मैम को और जितने भी सुनने वाले हैं रेडियो में उन सभी को।
0: तो अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
1: मेरा नाम सुरभि है।
0: जी जी मालूम है, लेकिन आप बताएंगे तो सारे लिसनर को पता चलेगा ना कि किसकी फरमाइश है, इसीलिए बोल।
1: ठीक है मैम, प्ले कर दीजिएगा।
0: जी गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: नमस्कार मैम।
10: जी नमस्कार,
9: हम रांची झारखंड से बोल रहे हैं।
10: जी नाम बता दीजिएगा अपना।
9: गोविंद
10: जी।
9: सब और सब सुनाइए, कैसे हैं?
10: जी जी हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
9: हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है।
10: जी तो इसका टाइमिंग अभी शुरू होता है 11 बजे से 12:30 के बीच में ये रिकॉर्ड होता है।
9: 11 बजे हम लगा रहे हैं तो बहुत दिन ट्राई किए, केवल व्यस्त बता रहा था, कॉल ही नहीं लग रहा।
10: हाँ हाँ, तो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं ना, इसीलिए।
9: आरती मैम बोल रहे।
10: जी जी
9: बहुत अच्छा लगता है शो रेडियो।
10: अच्छा जी, आप केवल इसी शो में जुड़ते हैं कि कोई और शो में भी जुड़ते हैं?
9: केवल हम रेडियो हर शो में जुड़ते हैं कि, लेकिन केवल रेडियो रिमझिम केवल हम केवल सुनते हैं और कोई रेडियो चैनल नहीं सुनते हैं।
10: जी जी, बस यही पूछ रहे थे, मतलब इसमें के सारे शो से आप जुड़ते हैं?
9: हाँ, सारे शो में। थोड़ा मजबूरी है, हम थोड़ा क्या बोलेंगे, नेत्रहीन व्यक्ति हैं तो थोड़ा काम करने नहीं सकते हैं, इस कारण से कोई काम में नहीं रहता, इस कारण से हमेशा सुनते रहते हैं।
10: कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आंखें नहीं है तो जिंदगी खत्म हो जाएंगी।
9: खराब लगता है लेकिन क्या करेंगे, बोर लगा है सर।
10: जी, ये तो बात सही है।
9: तो गाना सुना दीजिएगा।
10: बता दीजिए।
9: फिल्म का नाम तो याद नहीं है लेकिन गाने का बोल है, रब ने भी मुझ पे क्या सितम किया है वाला।
10: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
9: पूरा रेडियो रिमझिम परिवार को, आपको भी और सभी को जितना भी सुनने वाला है सभी।
10: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम
9: 90.4। कितना बजे होगा
10: ये? आपको आज शाम को 5 से 7 सुनने को मिलेगा, नहीं तो कल शाम को मिलेगा। जी
9: ठीक, धन्यवाद।
10: वेलकम।

0: जी बहुत स्वागत है आपके रंजन 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, भीमतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है
0: जी। तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
1: फिल्म मुगले आजम से सुनवा देंगे, प्यार किया तो डरना।
0: और गाना किसी को डेडिकेट हुई है?
1: कुछ मित्र है हमारे, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप आहूजा जी है, तुकाराम जी है, धीरज रवाड़ी जी है और सभी।
0: तो आप कल गाना प्ले करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद।
0: सुनते रहिए रेडियो रिमिशन 90.4 FM।
1: शुक्रिया।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
12: नमस्ते मैम, कैसी हैं?
13: जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
12: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
13: तो क्या हो रहा है अभी?
12: अभी कुछ नहीं, बैठी हूँ।
13: अच्छा, तो बता दीजिए आप कौन सा गाना सुनिएगा?
12: साजन साजन तेरे बिन हम तुझको पुकारे आ जा।
13: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
12: आपको और जितने भी रेडियो रूम चिल्ड्रन सुनकर।
13: जी जी, अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा।
12: नेहा कुमारी, खातू से।
13: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4।

0: जी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी मैडम, हम लोग मठियाहाता से बोल रहे हैं। लोग
1: जी नाम बता,
0: क्या है कि सभी लोग रेडियो में सुनते हैं, लोग हम लोग कार में सुनते हैं और ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करते हैं, लोग उसमें बहुत अच्छा सुनाई देता है FM, तो सोचे हम लोग भी कॉल करें सभी लोग का रिकॉर्डिंग देखकर।
1: जी
0: हम मनु मौर्या बोल रहे हैं और मंतोष और सोनू का गाना सुनवाना चाहते हैं, सारे लड़कों को कर दो शादी बस एक को कुंवारा रखना, यही गाना बजा दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल बजाएंगे।
0: और ये कहाँ कब तक बज जाएगा?
1: ये तो आपको शाम को बजता है 5 से 7 और सेम रिपीट होता है सुबह में 9 से।
0: इन्हीं लोगों को सुनाना है और हम लोग शाम को कार में बैठेंगे।
1: जी जी
0: तो ठीक है मैडम,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैडम,
1: वेलकम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, नमस्कार।
8: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीव 90.4 FM में।
7: जी आपका भी स्वागत है कॉल लेने के लिए।
8: जी जी,
7: क्या हाल चाल है भारती जी?
8: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
7: हम भी ठीक है। मौसम कैसा है आज आपके साइड में?
8: मेरे यहाँ तो काफी सुहाना मौसम बना हुआ है,
7: बदरी छाया हुआ है,
8: हल्का धूप है,
7: लेकिन दिल्ली में तो बदरी छाई हुई है।
8: बारिश होने वाला है क्या?
7: अब देखिए, ऊपर वाले के कृपा होगी तो जरूर बारिश होगी, इतना पानी लेके आए होंगे तो। यदि दूसरे जगह ट्रांसफर होने वाला होगा तो कहाँ होगा, लेकिन चारों तरफ से बदल छाया है। सुबह से सूरज देव के दर्शन हुआ नहीं अभी तक, तो सब नाश्ता पानी सही से करके आई है?
8: हाँ, नाश्ता पानी तो हुआ है।
7: आज सोमवार है, आज सोमवार का एक हफ्ता हो गया। बीच में बोले थे ना कि आपको फलना दिन होगा, इसीलिए मैंने नहीं भेजा
8: जी।
7: आपकी बातों का सामान रखते हुए कदर किया आपको।
8: जी जी, कोई बात नहीं, आज प्ले होगा सबके गाने जिनके जिनके हैं।
7: तो नाश्ता पानी बढ़िया से करके आई है ना? आप नॉर्मल जी कहाँ बन गई?
8: काम में अपना
7: पूरा रिकॉर्डिंग करे के बाद वहाँ पड़ेगी
8: ना। अब हम शो शुरू करम ना, वहाँ के रिकॉर्ड करम।
7: मान लें कि 10:11:47 हो गया।
8: अब लास्ट कॉल ले।
7: अच्छा, ओकरा बाद वहाँ का लेते रहें कि ना? अच्छा, वो दिन में जो रिकॉर्डिंग भयल तो बाजन लेके का है जी?
8: एक कॉल अभी रह गई बावे, हमारा पास रहे कॉल बावे अभी।
7: अच्छा, अभी वे रोजाना तो हम सुनबे करी ले, लेकिन कहले की खाली मनोरमे जी आवाता नहीं है, बीच में भारती जी आते नहीं, कहाँ भाग जाता
8: ना। आयल तो रहनी कल ही है, मतलब आज सुबह में भी बादल हवे और कॉलवा नहीं खे कैसी हमारे पास कॉल बाचल बावे।
7: अच्छा वो कहानी है की हम कहा पता ना हम के चोकर का बोरा में कहीं भुला गए
8: ना चोकर के बोरा में नहीं थी।
7: अच्छा ये वो गाना बाटे
8: बिल्कुल
7: बीचे बीचे बीचे लिखल हो जय हिंद ये राजा ले ले टी कुंजा इनके राजा
8: गाना सुनवाहू के बाद।
7: सबसे पहले तो रघुआ बानी स्पेशल ब्रांड में मनोरमा जी आ बाद जे बाटे सोनू भाई बारन कमरान भाई बारन अमर भाई और डॉक्टरी जी बानी सविता जी बबीता जी गुड़िया जी नेहा जी और ओकरा बाद शबीर अंसारी जी मुस्तफा भाई बारन और जितना श्रोता गण और सखी सहेली सुनता लोग सब केहू के गाना सुना बोलते
8: गाना
7: ठीक बाटे। नमस्कार
8: नमस्कार
7: फिर हम लोग मिलते हैं
8: रेडियो में कॉल करने के तो बहुत बहुत धन्यवाद
7: और

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: दीदी,
0: नमस्ते।
1: क्या हाल है? मेरा
0: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे
1: भी बढ़िया है। कॉल लगा रहे हैं तो आप व्यस्त, इतने व्यस्त हो रहे हैं कॉल ही नहीं उठा रहे हैं।
0: हैं। नहीं, अभी जस्ट कटा है तो आपका कॉल आया तो रिसीव किए।
1: मेरे को लग रहा है कि अभी रिसीव नहीं हो पाएगा।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, लगेगा, लेट सेट तो लग ही जाएगा।
1: नहीं, कभी कभी थोड़ा सा पास लग जाता है, कभी कभी पूरा टाइम लग जाता है। और सब बताइए,
0: और सब बढ़िया है।
1: थोड़ा कॉल भी फरमाइश नहीं, तो कॉल भी नहीं जुड़े थे फरमाइश में। थोड़ा मेरा गांव 5 दिन से लाइट नहीं था,
0: अच्छा
1: 5 दिन से लाइट नहीं।
0: अभी लाइट आ गया है?
1: अभी लाइट आ गया है, अभी लाइट आ गया है।
0: तो आज रउआ हमके थोड़ी चीन है,
2: नहीं
0: ऐसा कोनो बात नहीं है।
2: सोनी दीदी बोला था नहीं होगा एकदम।
0: हाँ, आवाज बदल गई बा का?
2: हाँ, आवाज बदल गई 5 दिन में। मनोरमा दीदी कहाँ बनी?
0: मनोरमा दी काम में बानी अपना।
2: फरमाइश में जा दिले बरे भेजन सब हमने संग के।
0: ठीक बा।
2: हाँ, पहले के बार भेजन सब बात है कि चाहे वेट मत करो।
1: ये सो चल रही है
0: तो आज अभी बता दी कौन सा गाना सुने लो।
1: आज हिंदी सॉन्ग बजा दीजिए।
0: बताइए कौन सा।
2: हाँ, ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: अच्छा,
2: जैसी रह जाएगी सखिया बेचारी।
0: ओहो,
1: चली ढेर रिसनो लो, होइलो पासान होइलो।
0: हाँ हाँ, चली लो। ठीक बात, अब गाना प्ले करता नहीं।
1: मैं एक बार सबसे पहले रहूंगा की मनोरमा दीदी के और पूजा रोडी एकदम झूल को सुनवाना है करिश्मा जी के।
0: तो गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रूम। ठीक बा,
2: बाय
0: बाय।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
1: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: हेलो
9: हेलो,
10: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: नमस्ते दीदी।
10: नमस्ते,
9: क्या हाल है?
10: हमारा हाल चाल ठीक बार हुआ, बताए रोबा कैसे बानी?
9: हम ठीक बानी, खराब ना होगा?
11: मछली बना कर जाके खा ले।
10: बिल्कुल, मछली तो लेकिन हम ना खानी।
9: ना खानी?
10: मछली ना खानी,
9: ठीक बा ना खानी तो हम छोड़ दे।
10: ना ना, जे खाला ओकरा खाए के चाहे, कोनो बात नहीं छे।
9: खा ली चिकन?
10: हाँ, वो सब चिकन थोड़ा खानी और खाने।
9: कौन जाइया?
10: अच्छा जी, बिल्कुल आते बानी।
9: आए, और सब ठीक बा?
10: और सब ठीक बा। तब हम
9: गाना चलिए बेरा,
10: गाना सुने
9: तो चलिए बेरा।
10: हाँ हाँ, सो चलिए। वैसे तो कहते हैं जल्दी से एक गाना बता दी, कौन सा गाना सुने?
9: हम गाना सुने रुकी गा के बता सही, थोड़ा देर रुक जाये, वेट करी बजा दी। कोनो भी होटल याद नहीं थी पड़ा, जब गीतिये गाय कर ला तो याद ना पड़े लगे। कमल सी के बजा दे, जो टिकट रहुआ कर रही और मनोरमा दीदी के, और जितना सुनते हैं सब।
10: चलिए ठीक बा।
9: बिट्टू भैया के हमरा
10: रही। ठीक बा जी, रेडियो में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
9: नमस्ते दीदी।
10: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। जी नमस्ते जी, हमारे का हाल चाल ठीक बार वो बताए तो वो कैसा बानी। हेलो,
1: अब आवाज साफ जाता थे
0: जी,
1: तो पहचान ले ली
0: ना जी आवाज तर और अभी नहीं है पहचान में आओ हम के रहो बता दी।
1: अब हम बताए।
0: हाँ बोली,
1: मेरा और छोटा भाई विकास।
0: अच्छा विकास जी, कैसन बानी?
1: बढ़िया बानी, हमारे फोनो में रिचार्ज खत्म हो गया नु, यही सब।
0: आवाज थोड़ा चेंज लगा था, तबियत ठीक बा ना?
1: अरे दो चार दिन से थोड़ा तबियत गड़बड़ हो गया ना मैडम।
0: वैसे न कहते नहीं, आवाज थोड़ा बदलल लगा था,
1: सर्दी खांसी बुखार उखार पूरा लग रहा एकदम।
0: मौसम चेंज भी तो होता,
1: मौसम भी चेंज होता थे,
0: ऐसे मौसम में ख्याल रखे तो पड़ेगा खुद को।
1: तब और सब गोपालगंज में बाढ़ और नानू आई
0: गोपालगंज में ना, मतलब और ये जौन नदी के साइड जौन बावे उन्हें और थोड़ा बहुत आयल बा।
1: अच्छा वो गंडक नदी जौन बाटे मंगलपुर मंगलपुर के तरफ ना, उन्हें सब लोग के।
0: हेलो
1: हेलो,
0: आज पता ना कह रहा हूँ आवाज कटकट के आओ तो थोड़ा।
1: हमारे तो के मोबाइल में नेटवर्क सला नेटवर्क के का प्रॉब्लम। हेलो,
0: हाँ
1: अब आवाज जाता ना क्लियर? अच्छा तो वही गंडक नदी में 3.5 लाख पानी और छोड़ दिला ना वो नए। तब खाना वाना हो गया मैडम?
0: हाँ खाना हो गया।
1: हमरो तरफ बारिश भइल तो थोड़ा ठंडा एकदम सुहाना मौसम भइल एकदम, काम करे में अब सही लागत है एकदम। गर्मी भी नहीं खेत पूरा ठंडा एकदम कूल, पूरा मस्ती से एकदम काम करो एकदम।
0: चले तब तो और बढ़िया हुआ,
1: लेकिन आपसे बात करे खतरा निकाल ले ना पहले की, जब तक मन थोड़ा उलझने में रही।
0: हेलो,
1: आज कौन सा गाना सुना हम अपने पसंद के?
0: रोवा बता दी रोवा कौन सा गाना सुने?
1: हम तो गाना हुए सुने तेरे ये सानो की बदला।
0: अगर मालूम ही पड़ जाता गाना कैसे सुनाई दी।
1: आवाज भी पड़ जाता थे।
0: अब बोलिए अब थोड़ा ठीक होता है।
1: तेरे ये सानो यही वाली हिंदी गाना है ना, यही पुराना सॉन्ग सुनवाइएगा
0: जी। और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
1: ना ये सुनवाइएगा, दूसरा सुनवाइएगा गाना हिंदी।
0: नहीं मतलब हम पूछ रहे हैं आप ये गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
1: ये गाना आप ही को सुनवाएंगे केवल आज
0: जी,
1: और कोई और किसी को नहीं सुनवाएंगे
0: जी। जी कोई बात
1: नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है ना जी, गादारी नहीं करना चाहिए, सब रेडियो रेंजियम को सुनने वाले को सुनवाएंगे
0: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
1: ठीक है मैडम,
0: सुनते रहिए रेडियो रेंजियम 90.4 एफएम।
1: ठीक है, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले चलेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
3: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमा जेड पर।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: सलामुअलैकुम
14: जी।
13: सलामुअलैकुम।
14: वालेकुम अस्सलाम।
13: कौन मैम बोल रहे हैं?
14: मैं तो भारती बोल रही हूँ। आप?
13: मैं अहमद सर, वार्ड नंबर है जी।
14: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
13: आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
14: हाँ जी,
13: तबीयत पानी अच्छा है ना?
14: जी, मेरा तबीयत तो सही है।
13: आज हमको सॉन्ग सुनाइए अवतार मूवी से, दिन महीने साल गुजर के जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मर के जाएंगे।
14: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
13: हाँ, सबसे पहले तो आपको और मुनर्मा जी को, अख्तरी को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
14: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम।
13: थैंक यू मैम। आज बच जाएगा क्या?
14: जी आज नहीं तो कल बच जाएगा एकदम।
13: ठीक, ओके मैम, शुक्रिया गाना सुनाने के लिए।
14: ओके ओके।

0: सबसे बिल्कुल
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी सलाम मैम, कैसन बानी?
2: कैसन बानी?
1: हम अच्छे बानी, अपन बताई।
2: हमने की सब क्यों ठीक बानी सर?
1: और मैम का बात बा, आज बानी और मनोरमा जी से बात नहीं हो पाओ?
2: हम तो रोज से कहले रहे की 12 बजे के बाद कॉल करी तो मनोरमा जी से बात हुई,
1: टाइम ना मिल रहा ये वजह से।
2: तो एने की रिकॉर्डिंग हम ही करे।
1: अच्छा मैम, अच्छा बात नहीं करे के चाहिए। और नाश्ता हो गए?
2: हाँ हाँ नाश्ता हो गया बा। आप बताए आपके हो गए?
1: जी हो गए बा। मैम तो बता दी हम कौन बोलता नहीं
2: सर? फ्रोज।
1: जी मैम
0: बोलता।
1: जी मैम तो हमारा के एगो गम वाला गाना सुनाई।
2: गम वाला?
1: जी मैम।
2: अच्छा तो बता दी कौन सा गम वाला गाना सुने एक बार।
1: जी मैम गाना के बोल कौन सी के आवाज में गाना बा और गाना के बोल बा आँख से आँख अब ना मिला पाइबू हो।
2: एक बार और ही बताए
1: मैम। ये वाला गाना बता नहीं ना, आँख से आँख अब ना मिला पाइबू हो।
2: अच्छा अच्छा, और गाना क्यों के सुनाहू के बाद?
1: आपके और सभी आरजे के अभी आज कौन दोस्त के ना सुना अकेले सुना।
2: अच्छा चलिए तब तो ठीक है बा।
1: और मैम और बताइए और वाइस चली?
2: हाँ तो चल रही करी।
1: भोजपुरी गाना फरमाइश बटन तो भोजपुरी में बोल दी, अच्छा लगी। अब इसका भी दोस्त कहा हम की कैसा लगी बताइए। हेलो
2: अच्छा भोजपुरी बोले नहीं
1: कोशिश करता नहीं।
2: अच्छा
1: जी मैम तो कौन नंबर में हमारे फरमाइश?
2: राउर तो 4-5 नंबर पे बावे।
1: बहुत लेट हो गई मैम, तो आज तो चली ना पक्का बा?
2: ना ना हमार केवल चली तो 16 को कॉल हम लेके हट जाए, तो हमार अगर आज चली तो चली या ना तो काल चली एक बार।
1: अच्छा काल के इंतजार हो?
2: आज ना तो मिलिए जाए सुनेंगे
1: मैम, लेकिन एक बात भाई इंतजार करके सुने में वाल कहीं मजा बा।
2: अच्छा हर के हुई ना समझ पावेला।
1: हाँ मैम हम समझाता नहीं की मतलब इंतजार करके सुने में वाल के मजा आवेला। जैसे आज रिकॉर्डिंग करनी काल बाजी वक्त के ना गवाते हुए प्ले करी और भी लोग।
2: चलिए ठीक है तब गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: बाय।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: हेलो,
8: हाँ नमस्ते मैडम
9: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: हमको गाना सुनना है।
9: बिल्कुल, नाम बता दीजिए अपना।
8: सुमन कुमारी बोलता नहीं था वैसे।
9: तो कौन सा गाना सुनना है सुमन जी आपको?
8: भोजपुरी गाना सुना सकते हैं?
9: बिल्कुल बता दीजिए।
8: जिंदगी जिए के मन बा बहिया तुहारे पकड़ के, यही गाना सुना है।
9: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
8: सबसे पहले आपको और जितना रेडियो सुनते हैं उन्हीं लोग को।
9: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
8: कब तक सुनाएंगे
9: ये आपको? आज शाम को नहीं तो कल शाम को मिलेगा सुनने को।
8: ठीक है,
9: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मनोरमा जी
0: ना भारती
1: भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: बोल रहे हैं तो पहचान रही है कि नहीं?
0: थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए।
1: धर्मेंद्र तिवारी को चंडीगढ़ से।
0: धर्मेंद्र तिवारी चंडीगढ़ से
1: जी।
0: अच्छा जी
1: और सब बताइए।
0: और सब बढ़िया है, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं?
1: हम लोग तो काम में लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है।
0: अच्छा चंडीगढ़ में भी बारिश हो रही है? चलिए बढ़िया है।
1: तो तबियत भी आपका खराब हो गया था ना
0: जी,
1: बीच में तबियत खराब हो गया था आपका ना?
0: थोड़ा तबियत खराब हो गया था,
1: अभी ठीक है ना?
0: अभी ठीक है।
1: चलिए खुशी है, सबका आदमी सही रहे सलामत रहे और क्या। मान लीजिए सही सलामत है तभी तो बात हो रहा है ना।
0: जी जी,
1: एक दूसरे से इसीलिए आदमी जुड़ जाता है, हाल चाल मिलता रहता है। आ रहे हैं अगला महीना हम भी घर से।
0: अच्छा
1: गाना सुना दीजिए, कौन सी है
0: बता दीजिए? कौन सा?
1: माई डोली चढ़कर चले गली पवा के घर आवा।
0: कौन सा?
1: कौन सी आवाज में माई डोली चढ़कर चले गली पवा के घर आवा? भक्ति सॉन्ग है दुर्गा जी का।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: रेडियो रिमझिम सुनता सुनेंगे सारे आदमी।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं
1: जी। नमस्कार,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे समय 9:33 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे, और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, मैं सन्नी पटेल संग प्यार के करो से मत करिया, पवन सिंह का स्वागत है। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या इस सप्ताह आपकी गाने हम नहीं सुनाए, कल का यदि नहीं सुनाएंगे तो पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, मैं अजीत कुमार निषाद देवरिया यूपी भटनी से, और मेरे को भी गाना सुनना है राज मूवी से कोई भी गाना। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार सोनू भैया, हम गोल्डन टेलर भी शो से जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, कहते हैं कि फरमाइश से नया, ओहो थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई है, चलिए आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रेडियो रमझिम मैसेज मस्ती, रात की चांदनी में यादों का पैगाम आया है, सोनू सर के शो ने फिर दिल को मुस्कुराया है। मैसेज मस्ती में जब दोस्तों की बातें आती है, सुनी रातें भी खुशियों के रंग में रंग जाती है। दोस्त वो नहीं जो हर पल साथ दिखाई दे, दोस्त वो हैं जो दूर होकर भी दिल में सुनाई दे। रेडियो रमझिम की इस प्यारी सी रात में हर दोस्त के नाम बस प्यार और मुस्कान रहे। सुनो सर, आपकी आवाज़ और दोस्तों के ये पैगाम रात को बना देते हैं यादगार और हसीन तमाम। ओम साई टेलर राघव जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मोहित गुप्ता जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और कल आपके गाने बाकी रह गए हैं तो आज आपके गाने हम सुनाएंगे। बिल्कुल फ़िलहाल हम बढ़ते हैं आगे और पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सनी पटेल की, और गाने के फरमाइश दिए हुए हैं प्यार की करो से मत करिया।

94 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो पुराने गाने की फरमाइश करें, चाहे भोजपुरी गाने क्यों ना हो। पुराने गाने की फरमाइश करते हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और अगले गाने की फरमाइश हम कल के बाकी लगे हुए श्रोता मोहित गुप्ता जी हैं और उनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज शामिल कर ले, फिर गाने प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय ब्रदर हाउ आर यू, मैं सुनीता, बहुत दिन के बाद मैं आपके शो से जुड़ चुकी हूँ, प्लीज़ फरमाइश प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल प्ले होगा और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू, हम भी जुड़ गए हैं, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं और हिट प्रोग्राम सुनते हैं और दिन भर का थकान मिटाते हैं। इसके लिए शुक्रिया वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल नेपाल बॉर्डर से, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं सन्नी पटेल, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हम सानिया सफ़ी चक हसना से, आज हमको भी सॉन्ग सुनना है एसएमएस फरमाइश में। नाइस सॉन्ग, बिल्कुल सुनाएंगे यदि आपके तरफ से फरमाइश की जाती है तो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और महानता मूवी से गाने की फरमाइश किए हुए हैं मोहित जी, तो आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं और अगले गाने के फरमाइश वाला मैसेज हम बता दें, अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है अजीत कुमार निषाद जी की तरफ से देवरिया यूपी भटनी से, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है राज मूवी से कोई भी शाम। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए शामिल कर ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शौंग है क्या हुआ तेरा वादा, डेडिकेट है सभी लिसनर को। तो बिल्कुल शानिया शफी आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज सुनो भाई, मेरे मैसेज आपके पास नहीं गया है क्या? तो बिल्कुल अभी तो यही मैसेज पहुंचा हुआ है जो हमने शामिल किए है, बाकी के मैसेज कोई नहीं पहुंचे हुए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ सर एक और भजवा दीजिए। तो एक और नहीं, इस सप्ताह में भी नहीं, क्योंकि इस सप्ताह में एक ही बार गाने फरमाइश करने का मौका मिलता है, बहुत कम समय का यह कार्यक्रम जिसके वजह से। आगे मैसेज बुलेट चौधरी जी बड़रिया थाना क्षेत्र 3 भेड़िया से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश साजन साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। बिल्कुल आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल बने रहे हमारे साथ और अगले गाने की फरमाइश अजीत जी की प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

करो। कमाल के शौक सुनने हम सभी रेडियो FM पे राज मुबीश है और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे ऑल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया मुचका गांव प्रखंड से। और लिखा गया है आगे इनके तरफ से, वाओ माय फेवरेट सॉन्ग एंड मूवी राज लाजवाब। इस मूवी के सारे सॉन्ग लाजवाब, ये मूवी भी कमाल की है। मुझे वो दिन भी आज याद है जब ये मूवी आया था, तब मैं छोटा मोबाइल में मेमोरी कार्ड में भरवा कर देखी थी। ओहो, बहुत पुरानी यादें याद आ गई। और चलिए हमारे साथ बने रहे, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर नमस्ते, मैं मेघनाथ माझी। सर आप मुझसे 2 हफ्ता से गाना नहीं सुना रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भाई साहब 9:14 बजे मैसेज भेजे हैं, आप देखें तो मेरे पास पहुंचे होते तो बिल्कुल हम शामिल करते, हमारा कार्य यही है। अब नहीं पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आज मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल प्ले होगा। और बने रहे हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे किए हुए हैं गोल्डन टेलर, अपना नाम तो नहीं बताए हुए, केवल संस्थान के नाम बताए हुए हैं। तो आप लोग संस्थान के नाम से ना जुड़े, अपना नाम भी बताए कि आप कौन हैं। और अभी आपकी फरमाइश को हम रुकते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम देखते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं पूरी शानिया शफी की चक हंसना से। और इनके तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, यदि पुराने गाने होंगे तो ही कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो बीच में ही रोकेंगे, फिर अगले श्रोता की फरमाइश हम प्ले करेंगे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-00 या 7070-7542-00 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: सुनने आप सब, और काफी प्यारा सॉन्ग अभी आपने सुना, और यहाँ पे इस गाने की फरमाइश करने वाली थी शानिया शफी, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सर, आपको धन्यवाद है, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं सुनीता की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, मेरा यार जो मुझसे दूर हुआ, गाने का बोल दिया गया है। आगे मैसेज है और मैसेज में लिखा गया है कि गुड नाइट सारी, और इस मैसेज को करते हैं राघव जी, तो बिल्कुल समाप्ति के समय मैसेज को फुल शामिल कर देंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ सर मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए, बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश प्ले करना है, हाँ जितना समय हमें मिला है उतना ही। फिलहाल हम सुनीता जी की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 90.4 FM पे।

रेडियो रिम झीम 94 FM सुन रहे आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और अभी सुनीता जी की फरमाइश अभी हम सभी सुन रहे हैं। आगे मैसेज इनकी तरफ से पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, माय फेवरेट सॉन्ग है। और चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिम झीम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं, अपना नाम पता कुछ नहीं दिए हुए हैं तो अपना नाम भी बताएं कि आप कौन कहाँ से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुंचाए हुए हैं बुलेट चौधरी जी, गाने की फरमाइश करते हैं साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के सॉन्ग काफ़ी प्यारा रेडियो रेम सेम 90.4 FM पे सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और समय जो है समाप्ति का हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। आरजू मूवी से गाने एंजॉय कर रहे हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं मेघनाथ माझी जी और इन्हीं के गाने के साथ ही इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। गाने का बोल दिए हुए हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले दो घड़ी, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश जी की आवाज़ों में, तो इन्हीं के गाने सुनेंगे अंतिम और कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, जैसे कल वाले श्रोता की फरमाइश आज पूरी की वैसे जो भी श्रोतागण आज छूट रहे हैं उनकी भी फरमाइश कल पूरी करेंगे और जितने जल्दी मैसेज पहुंचेंगे उतने जल्दी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश रहेगा मेरा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो रेम छीम 90.4 FM जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा

0: डॉक्टर से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे मैसेज पूछ गया, तो फरमाइश पूरी करने से पहले मैं आप सबके बीच एक अपने पसंद से ये प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ। तब तक एंजॉय कीजिए ये प्यारे से सॉन्ग को मेरे तरफ से।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि मेरे तरफ से था, और बताइए कैसा लगा सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो दीदी, और मैसेज करने वाली हैं जो कि लिख रहे हैं मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है जो कि लिख रहे हैं गुड़ छुके प्रणाम बा सब की होके बोल दी, तो बहुत बहुत स्वागत बराउ भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल चाल है मैम, गाना सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है नमस्ते भाई, ठीक है सब दोस्त कैसे हैं, सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले सविता चौहान भोज छपरा से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है गुड आफ्टरनून मैम, मेरा मैसेज सॉन्ग प्ले की सॉन्ग भेज दिए हैं, प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मनोरमा मैम, कैसी हैं, मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा। सिद्धार्थ पसवान बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है नमस्ते मैम, मैं संजय यादव, और मेरा भी गाना बजा दीजिए जो कि लिंक के माध्यम से है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, और गाने के बोल हैं तुम पर हम हैं अटके यारो, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहद ही तरीका से गाया है। तो चलिए गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजी मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुन रहे थे संजय यादव जी की तरफ से और उनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं भारती जी गुड आफ्टरनून कैसी हैं आप, मैं मनीष रजा फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं मैम जी नमस्कार हम लोग भी आपका कार्यक्रम को सुन रहे हैं उमा शंकर सिंह अविंतिका सिंह अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है हेलो दीदी गुड आफ्टरनून मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से का हलवा मनोरमा दीदी। तो बिल्कुल बढ़िया बा और बहुत बहुत स्वागत बा राउत भी और यही के साथ और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हाय गुड आफ्टरनून जी एक मेरा भी फरमाइश पूरा कर दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और मैसेज करने वाले हैं नसीब अंसारी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इससे पहले यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मनोरमा मैम आज मुझे भी गाना सुना दीजिए और राज मूवी का सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और गाने के बोल हैं मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि मैसेज पहुंच गया, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं सिद्धार्थ पासवान बरौली से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी पीपा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू। और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग मैम। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो मनोरमा जी, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इससे पहले और मैसेज करने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना नाम मेंशन करिए ताकि मुझे नाम बताने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय मनोरमा जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं नमस्ते नसीम अंसारी उत्तर प्रदेश कुशीनगर, जो कि लिख रहा है मेरा भी फरमाइश है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इन्होंने मैसेज किया कि रेडियो रिमझिम गोपालगंज वेरी वेरी नाइस, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, हमको कहीं जाना है। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी पिपरा नारायण से, तो चलिए करिश्मा जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और गाने के बोल हैं आई हैव पापा, तो चलिए आपके गाने को करिश्मा जी हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम का एक प्यारा सा सॉन्ग।
1: समय बीता देरी नहीं खेला, हमू बेटी के कर्ज से

0: हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे आहो पापा, और मैसेज पोस्ट किया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू दीदी गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा कुमारी की प्रणायण से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो मनोरमा जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग जितेंद्र बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो मेरा नाम किशन कुमार, मेरा गाना बजा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो मनोरमा जी, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैसेज करने वाले हैं राजू सोनी जी हारपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग नाइस चॉइस करिश्मा जी का, और मैसेज करने वाले हैं सिद्धार्थ पासवान जी बरौली से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं तूने वो रंगीला कैसा जादू किया, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और प्लीज़ आप अपना नाम मेंशन किया करिए लो ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फीडबैक।
6: मैम, हमारे गाने की डिमांड पूरा करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से।
5: हमारे पास मैसेज पहुंच गया और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि

जो कि लिख रहा है, मेरे प्रिय आरजे मनोरमा जी, ओपनिंग करने के लिए आपका स्वागत है, ऐसे ही लगे रहिए। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी मज़ेदार लाइन, जो कि बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। मज़ेदार जो, एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था, स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में गुजर गया। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था, स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में घुसकर गुजर गया। वहीं कुछ लड़कियां खड़ी थीं, उन्होंने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं किशन कुमार जी की, मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते मैम, हम रवि कुमार तिवारी दिल्ली से, और मनोरमा जी ये सॉन्ग धनेश कुमार मिश्रा जी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हेलो मनोरमा जी, मुझे सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग सुनना चाहते हैं कटी कटी, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और मैसेज करने वाले हैं राजू सोनी जी, और इनके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे 1100 सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और गाने की बोल थे कटी कटी बटी बटी। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, जी थैंक्स, हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं राजू सोनी हारपुर से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हेलो दीदी प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार की प्रणाम से, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, रानी मुखर्जी को नमस्कार, जुड़ गया है और मैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी, और आपने तो मेरा नया नाम रख दिया कि क्या ही बताऊँ, वैसे अच्छा लगता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि लिख रही हैं, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो प्यार ही जीने का वजह बन जाता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं करिश्मा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान से, पकवलिया टोला बलुआ से हूँ, और मेरे गाने की भी फरमाइश प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग है बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, रहीम आलम बेंगलोर मॉडर्न टेलर से, लेडीज टेलर से, और एमडी मीनू फूड मोतिहारी मीना बाजार से, फैशन टेलर, और लिख रहे हैं कि नरकटिया बाजार मोतिहारी जिला वार्ड नंबर 8 से, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और ये गाना सुनना चाहते जीत फिल्म का गाना सुनना चाहते, जो कि गाने के बोले, धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे खुशबू से पहचाने लूँगा। और जो लिख रहे हैं एमडी सजाद आलम बेंगलोर से, तो चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, और इन्जॉय करते हैं रेडियो 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिखना है गाना बजाने के लिए शुक्रिया थैंक यू थैंक यू। और मैसेज करने वाले हैं एमडी सजाद अलाम और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मेरा फरमाइश डिलीट हो गया है क्या जी, जो अपडेट नहीं हो रहा है तो आपके मैसेज आपका सॉन्ग डिलीट नहीं हुआ है, जरूर बजेंगे, बस कुछ देर वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहा है बहुत ही खूबसूरत गाना है और मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुमार जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा है जो कि लिख रहा हेलो भारती मैम, आपके लिए शायरी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाली है रेशमा पठानपट्टी जी जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम का हाल बात। तो बहुत बहुत स्वागत बा और भी, और हमारा हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताएंगे रहुआ कैसन वानी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनू कुमार की आवाज़ में मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट कीजिए, उसके बाद हम प्ले करते हैं। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो नमस्ते मैम, हम रवि कुमार तिवारी दिल्ली से, और मनोरमा जी ये सॉन्ग धनेश मिश्रा जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। और मैसेज करने वाले हैं रवि कुमार जी, तो चलिए रवि जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। ये प्यारा सा सॉन्ग
1: उनकर पिया जी उनका की औरत के भाव पर

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे रवि जी के तरफ से, और उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी, रवि जी का गाना बजाए मुझे सुनाए, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि

जो कि लिखना है, याद याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो। याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो। साथ उसका दो जो इरादे से पक्का हो। दिल उसको दो जो सूरत से नहीं, दिल से अच्छा हो। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई है करिश्मा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी की आवाज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगती है। नाम सगीर आलम अंसारी, फ्रॉम तेजपुर असम। और लिख रहे कि और गाना सुनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, क्यों ना करे याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार सिंह, जो कि जिला सिवान पकवलिया टोला बलुआ के रहने वाले हैं। तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, हेलो दीदी मेरा गाना बजा दीजिए। तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट कर लीजिए, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, मेरा सॉन्ग है कि आइए जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। और मेरा फरमाइश डिलीट हो गया है क्या? तो नहीं, आपके गाने आपकी फरमाइश डिलीट नहीं हुई है। चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और मैसेज करने वाले हैं नसीम अंसारी उत्तर प्रदेश से, और बहुत ही बेहद सॉन्ग के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम ऑल द बेस्ट आई लव यू रेडियो रिमझिम। और मैसेज करने वाले हैं नसीम अंसारी उत्तर प्रदेश से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हाय ऑल, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और प्लीज़ आप नाम अपना मेंशन करिए ना ताकि मुझे दिक्कत ना हो और बार बार ये बात ना बताना पड़े। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और बहुत ही मज़ेदार लाइन आई मीन बहुत ही खूबसूरत सा शहरी के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी शहरी। और बहुत ही बेहद और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ है जो कि लिख रहा है इश्क सभी को जीना सिखा देता है, वफा के नाम पर मरना सिखा देता है, इश्क नहीं किया तो करके देखना, जालिम हर दर्द सहना सिखा देता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है हेलो जी, मैं भी सुर से जुड़ गया हूँ और मेरा नाम अरसाद लुधनी दुनिया पंजाब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है नमस्ते, मैं जितेंद्र कुमार गुना जिला से और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं प्लीज़ दीदी गाना बजा दीजिए। और चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा।

अभी हम लोग बहुत ही बेहद सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि मैसेज पहुंच गया, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। लिख रहे हैं आपको कैसा लगा गीत बताइएगा ज़रूर। तो गाना तो ठीक था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा गणेश को। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है

आनंद प्रकाश और जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय हेलो नमस्ते मनोरमा जी, मैं भी जुड़ चुकी हूँ दही भाता से और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी प्ले करेंगे हम। और तो प्लीज़ आप लोग नाम मेंशन करिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो, एक ही बात बार बार आप लोग को बताना पड़ रहा है, प्लीज़ नाम मेंशन किया करिएगा ताकि मुझे भी दिक्कत ना होगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, आ रहा है मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिखा है मनोरमा जी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगती है, और मैसेज करने वाले हैं सगीर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से, और बोल रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और गाना डेडिकेट करना चाहते हैं दिलीप राम, बरजू देवेंदर, आजाद अंसारी, उमा शंकर जी, उत्तम सोनी जी और कमरान जी और शाहजहाँ जी को। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिंजन 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

0: छोटी से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं गाना सुनाने के लिए धन्यवाद, और मैसेज पहुंचा हुआ है सगीर आलम अंसारी जी की तरफ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि जो कि लिख रहा है मेरा सॉन्ग नहीं बजेगा क्या, मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए इंतजार कर रहे हैं, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ उन लोग की फरमाइश को पूरी कर देते हैं, उसके बाद आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहा है हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसे हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं ठहर जाऊं तुम्हारी गलियों में, तुझे देखकर तुम मुस्कुराओगे क्या, चलो रुक भी गए तुम्हारे घर के सामने तो अंदर बुला के एक कप चाय पिलाओगे क्या। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और उसके पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं मैडम जी मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए, मेरे सभी दोस्त वेट कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश, और फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची है, तो चलिए सुनते हैं।
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं आनंद प्रकाश लक्की दरगाह से, काफ़ी दिन बाद मैं अपना रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। गाने का बोल है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। सॉन्ग सुनाना चाहेंगे मेरे दोस्त हैं कुछ, पूरे रेडियो रिमझिम लिसनर को सुनाना चाहेंगे, आपको भी, और मेरे दोस्त हैं अभिषेक पंकज सोनू सरफराज एंड अंजलि। सो बजा दीजिए मैम।
0: चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, जो कि लिख रहे हैं सबका सॉन्ग बजा दिए और मेरा सॉन्ग नहीं बजाएं तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट कर लीजिए, उसके बाद आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और उससे पहले यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहा है, मैं नौसाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से, हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, 2 बजे से पहले गाने का लिंक भेज दिया हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आपके गाना ज़रूर प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई हूँ और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना सुनाने के लिए, मेरे सभी दोस्त सुन रहे हैं, अभिषेक, पंकज, निखिल, सोनू, सरफराज एंड अंजलि रोजपायल। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं मज़ेदार जोक्स, मास्टर जी खुशी का ठिकाना ना रहा, कोई इस मुहावरे का अर्थ बताओ। चिंटू, खुशी घर वाले से छिपकर हर रोज अपने दोस्त से मिलने जाती थी, फिर एक दिन उसके पापा ने उसे देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया, अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। यह जवाब सुनकर मास्टर जी अभी तक बेहोशी हैं। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हाय हेलो नमस्ते मनोरमा जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ दही भाता से, मुझे भी गाना सुनना है, क्या आप प्ले कर सकती हैं? तो जी बिल्कुल, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि सॉन्ग का बोल है, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे। और तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। मैं आपको पहले ही बोली कि प्लीज़ आप लोग नाम मेंशन करिए, अपना नाम नहीं मेंशन किया तो दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ नाम मेंशन करिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले हैं
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा दीदी, और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी पिपरा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग बा, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हाय मैं महेश पासवान, और लिख रहे हैं कि मैं महेश पासवान गिरदी झारखंड सरिया से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को भी हम प्ले करेंगे, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि जितेंद्र धाकड़, जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैं जितेंद्र धाकड़ गुना जिला से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है, जिला सिवान पकवली और टोला बलुआ से हूँ, मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कितनी हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर सवाब का रंग गहरा है, खुदा को यकीन ना था वफा पर, तभी तो एक चांद पर हजारों तारों का पारा है। और बहुत ही बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय जी। और तो चलिए धनंजय जी, आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं, जो कि लिख रहे हैं सोनू कुमार की आवाज़ में है दर्द करार, हिंदी सॉन्ग बजा दीजिएगा, मेरा सॉन्ग बजा दीजिएगा, दुबई में सुन रहे हैं हम सब। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुंचे हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैम हम लोग जा रहे हैं लोग खाना खाने खा कर आएंगे लोग तब गाना प्ले कीजिएगा। तो जी बिल्कुल। और किसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय मैम महेश पासवान कीर्ति झारखंड सारिया से। तो और लिख रहे हैं कि गाना बजेगा तो मैम मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़। तो जी बिल्कुल आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि ठीक बा गाना बाजी की ना बाजी रेशमा जी पठानपटी से बोलते नहीं प्लीज़ बता दी कि बाजी की ना। तो जरूर बाजी रहा और गाना बस कुछ देर वेट करें। और इससे पहले यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी जो कि लिख रहे हैं मैं और मेरा मोबाइल एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं लेकिन हमारे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी ये बताइए क्या किया जाए, जो भी किया जाए आप ही बताइए कि क्या किया जाए, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे आ रहे हैं पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैम गाना प्ले करने के लिए। और ये भी बहुत ही बेहद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं आँखों में दोस्तों जो पानी है, आँखों में दोस्तों जो पानी है कृष्ण वाले की ये मेहरबानी है, क्या आप क्यों सर झुकाए बैठे हैं, क्या आपकी भी यही कहानी है। और बहुत ही बेहद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं आप 10 मिनट रुक जाएं नमाज पढ़कर आएंगे मैम तो गाना प्ले कीजिएगा। तो चलिए आपका गाना न्यूज़ के बाद ही हम प्ले करेंगे, इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से आपका रेडियो रिमझिम में बहुत बड़ा स्वागत है बोल रहा हूँ। और आप जिस समय मैसेज पढ़ रहे हैं उस समय म्यूजिक जो बोल रहे हैं उससे म्यूजिक को बंद करके मैसेज पढ़िए। तो जी बिल्कुल। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि हेलो हाय मैम कैसे हैं, हमारा भी एक गाना है प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को कल ही प्ले किया गया था तो एक सप्ताह बाद ही आपके गाने को हम प्ले कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मैम कल का मेरा गाना नहीं बजा था कृपया बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैम मनोरमा मैम हम भी जुड़ गया हूँ कृपया हमको भी गाना सुना दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम से। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और शिल्पी राज की आवाज़ में ये सुनना चाहते हैं कोई भी सॉन्ग। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि मैसेज पहुंच गया, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम राधे राधे। और मैसेज करने वाले हैं मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे बहुत ही मजेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, जालिम ने दिल उस वक्त तोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप राम दिल्ली से, जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी नमस्कार। तो नमस्कार आपको भी, और बहुत ही अच्छा लगा आपकी शायरी, और बहुत ही बेहद था और बहुत खूबसूरत था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे धनंजय जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे रेडियो बिना सुनाए ये जब उनका जवाब था। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैं जितेंद्र कुमार गुना जिला, और गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं। और गाने के बोल रहे हैं पहली बार मोहब्बत की है, और जो कि लिख रहे हैं मैडम जी मेरा गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.5 प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है कि भारती दीदी कहाँ है, और मैसेज करने वाले हैं दिनेश कुमार पीपल नारायण से। तो भारती दीदी आपकी हैं और वो भी काम में लगी हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं गम ना करे जिंदगी बहुत बड़ी, जो कि लिख रहे हैं गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए ही सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझे मिलने से मिलने बाहर खड़ी है। और बहुत ही बेहद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी जो कि जिला सिवान के रहने वाले हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले करने के लिए, और इन्होंने मैं आपको बता दूं जो आप जो गाना बताएं वही बजाई हूं मैं, और आप दूसरा गाना बोले रहते तो दूसरा ही मैं बजाती। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी लंच कर लीजिए भूख लग गया होगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। तो क्या पता चल रहा है कि मेरे को भूख लगा है, लेकिन आप लोग से बात करके और आप लोग के गाने की फरमाइश पूरी करने के बाद ही मुझे लंच करने की करूँगी तो सही रहेगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ

0: जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा गाना भेजिए ताकि मैं बजा सकूं। तो प्लीज़ आप कृपया दूसरा गाना भेजिए, हम मैं आपका गाना ज़रूर प्ले करूंगी। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय मैं मोना गोपालगंज से, और मुझे भी गाना सुनना और गाने के बोल हैं सा समुंदर पार ना तेरी। तो चलिए मोना जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। प्यारा सॉन्ग
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन।

और इसी गाने के साथ हम लोग बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ, और दोपहर न्यूज़ के बाद फिर से जुड़ते हैं हम लोग। तो तब तक एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
6: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: century and one in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में हैं। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। SIT से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
4: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
5: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह के कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष, यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं, तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
6: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है, गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिन्द्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
7: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंदाउते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
8: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग से देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
7: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
9: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
7: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
10: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
16: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
17: मैं बनूंगा।
18: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
16: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
18: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
16: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
19: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
20: रेडियो रमझिम।
19: सुनो दिल से।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं मोहम्मद सदाम मुंबई से, और लिख रहे हैं यहाँ गाने की भूल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय, बस यहाँ हाय का मैसेज आया है, और अपना नाम मेंशन करें तो मुझे पता चले आप कौन हैं और कहाँ से, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे प्रिय आरजे भारती जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं हाय भारती दी का हाल बा, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और सब बढ़िया बा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं मेरा गाना आज बजा दीजिए, कल भी नहीं बजा था। तो जी बहुत बहुत स्वागत है परवीन कुमार, मैसेज करने वाले हैं जिला सिवान से, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रही हैं कि भारती मैम का लंच हो गया आपका। तो जी मेरा तो लंच हो गया, और आप सबका हुआ या नहीं बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते भारती दी, मैं श्याम सुंदर से ग्रामपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, जो कि गाने की फरमाइश हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।

0: हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पुणे से सद्दाम अंसारी बोल रहा हूँ। मेरे साथ मेरे गांव का भुगरा है, वो गाना बोल रहा है, बजवाओ। तो गाना भेज रहा हूँ, बजा दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद भेज रहा हूँ।
1: तो यहाँ पे लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने की बोल है कहो ना कहो, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, मर्डर मूवी का गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजम 91.4 FM में।

0: सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना कहो ना कहो और मर्डर मूवी का गाना था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है, वॉइस के माध्यम से फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: गाना बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारा दोस्त खुश हो गया गाना सुन के।
0: जी चलिए, आपको खुशी मिली ये जान के मुझे भी खुशी मिली। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्राम पंचायत जई छपरा, जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि 3 दिन से मेरा गाना नहीं बज रहा है, तो जी आज आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोड़ देगा। और मैसेज करने वाले हैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है कॉल के फरमाइश पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
2: सदा दूर रहो गम के परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से। सदा दूर रहो गम के परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से। हर अरमान और हर ख्वाहिश पूरी हो तुम्हारी, ये दुआ है मेरी दिल की गहराइयों से। नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में।
2: मैं कमरान नबी देश पब्लिक सुल्तान से फिलहाल दिल्ली में।
0: जी जी,
2: और आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए। आज उमर शंकर भाई का लड़का का बर्थडे है, अजीत सिंह को।
0: जी जी,
2: हमारे तरफ से हैप्पी बर्थडे।
0: जी, रेडियो रमजिम के पूरे परिवार की तरफ से भी अर्जित बाबू को हैप्पी बर्थडे।
2: और खुद रहे पढ़ाई लिखाई करे बढ़िया से।
0: जी जी,
2: मम्मी पापा का नाम रोशन करे और बड़े होकर अच्छा कमाए और मम्मी पापा का सेवा करे। अभी जब उसी का सेवा हो रहा है अभी बर्थडे वाला सॉन्ग सुना दिया है हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: जी जी, तो ओके आपका गाना प्ले करते हैं।
2: नमस्कार,
0: नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:05 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उमा शंकर जी की। कमरान जी ने आज सुबह ही बधाई दी है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की तरफ से। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मेरा गाना कब बजेगा। तो आपको बता दूं आपके गाने को थर्सडे के दिन पूरा किया जाता है यानी बृहस्पतिवार को, और आपके गाने को उसी दिन पूरा किया जाएगा। और मैसेज करने वाले हैं महेश पासवान। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं गणेश कुमार की हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा अर्चित बाबू को। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं सच्ची है मेरी दोस्ती आजमा के देख लो, करके यकीन मुझ पे मेरे पास आके देख लो, बदलता नहीं कभी सोना अपना रंग, जितनी बार दिल करे आग लगा कर देख लो। और पाजी यूपी 54 से हाजिरी लगा दीजिएगा मैम जी और सॉन्ग भेज दूँ आज टाइम है तो। बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी सॉन्ग आज प्ले हो जाएगा और आज आपका काफ़ी दिन हो गया है सॉन्ग प्ले किए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बजा दीजिए भारती मैम मेरा गाना। तो आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी पर उससे पहले यहाँ गाने की फरमाइश जो कि पहुँच हुई है हमारे पास और गाना सुनना चाहती हैं, लिख रही हैं कि गाना मुझे सुनना है और आपको सुनवाना है भारती मैम को और मनोरमा जी को। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है रेशमा पठानपति से जुड़ी हुई हैं और लिख रही हैं कि नसीब मूवी का गाना है और गाने की बोल है सिकवा नहीं किसी से और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: अगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे रेशमा जी की तरफ से काफी बेहद खूबसूरत सा गाना सिखवा नहीं किसी को, और नसीब मूवी का गाना है कुमार शानू की आवाज़ में। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी हम दिल्ली से अनीस, हमें भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, उसे प्ले करूँगी। और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: मैं मुझे अपने भाई के लिए हैप्पी बर्थडे वाला गीत सुनना है। मेरा नाम अवंतिका सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ। भोजपुरी में कोई भी गीत बर्थडे वाला।
0: तो चलिए आपके लिए भोजपुरी में हैप्पी बर्थडे वाला आपके भाई के लिए गाना प्ले करती हूँ, और आपके अर्जित भाई को एक बार फिर से रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिना देरी के ये गाना प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। और जी, मैं आपको बता दूँ कि मंडे को ही आपके गाने को प्ले किया गया था, इसीलिए आज मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि धनेश जी की तरफ से लिख रहे हैं कि अर्चित बाबू के हमरा तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से किशोर सावलिनिया, सावित्री सावलिनिया, सुमन सावलिनिया, सबलानिया और बेटी अंशु रानी लिख रहे हैं, कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं। और नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर हमें भी, मैंने भी मैसेज कर दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशेर मुंबई से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ जो कि यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उमा शंकर जी की दोनों कोचिंग को चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, आप गाना सुन लिए और वो भी कभी सुन ही लेंगे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है। और लिख रहे हैं, नमस्ते भाई, ठीक हैं सभी दोस्त, कैसे हैं? ठीक है, सुपर गाना चल रहा है। सविता चौहान भोज छापर से जुड़ी हुई हैं, और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
8: नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक है, नाम सविता चौहान भोचर से बोल रहे हूँ। मुझे गाना सुनना है जिंदगी की राहों में। भैया, सबसे पहले आपको प्लीज भैया सुना दीजिएगा जल्दी, बहुत दिन के बाद जुड़े हैं सभी दोस्त के साथ।
7: जी मैं आपके तो गाने को प्ले कर दूंगी, पर मैं भैया नहीं, मैं बहन हूँ। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे सविता चौहान जो भोज छापड़ से जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, और गाने की बोल थे जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जय किशोर प्रसाद जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को मैंने परसों ही प्ले किया था, फिर दोबारा प्ले नहीं कर सकती, और आपको रोज तो पता ही होगा कि एक हफ्ते में एक बार गाने को प्ले किया जाता है, और जुड़ने को तो आप रोज़ जुड़ सकते हैं और सभी के द्वारा की गई फरमाइश को भी सुन सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और मैसेज करने वाले हैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से भी वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: सोना सोना सोड़िए रूप दा नजारा, यही सॉन्ग सुनी देओल का।
0: तो काफी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: जी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
0: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:35 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि धनेश कुमार जी की तरफ से काफ़ी मज़ेदार जोक पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि पति पत्नी में कई दिनों से बोलचाल बंद थी। एक दिन पति दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने की अदाकारी करने लगा। बीवी से रहा नहीं गया, तंग आकर पूछने लगे क्या ढूंढ रहे हो? पति, पति बोला तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा हूँ, शुक्र है मिल गई। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं जय किशोर प्रसाद जी। और मैं आपको बता दूँ आपके गाने को मैंने अभी बताया कि मैंने प्ले किया था, परसों ही, और आज आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
10: थैंक यू भारती दीदी, गाना बजाने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप गाना बजा रहे हैं, गाना सुन भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, काम भी कर रहे हैं, रेडियो इंजन से जुड़ने का कुछ अलग ही मजा है।
9: तो काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइंस पहुंची हुई है श्याम सुंदर जी की तरफ से, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई थी और गाना सुनना चाहते हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्राम पंचायत जय छपरा, जिला से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है तुम्हें देखे मेरी आँखें इसमें क्या मेरी खता है, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में बेहद खूबसूरत सा गाना तुम्हें देखे मेरी आंखें। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि अमोद कुमार कुशवाहा जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास रवि जी की तरफ से जो कि मज़ेदार जोक पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि पत्नी मैं रात भर से सोई नहीं हूँ। पति क्यों क्या हुआ? पत्नी रात भर आपके खर्राटे ने मुझे सोने नहीं दिया। पति तूने खुद को सोते हुए कभी देखा है? तू तो खर्राटों के साथ साथ सीटी भी बजाती हो। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है रवि जी की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि इससे पहले मेरा गाना फरमाइश था मेरा नहीं बजा तो जी मैं आपको बता दूं। और मोहम्मद सदाम जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि मुंबई से सुन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को मैंने सैटरडे को ही प्ले किया था इसीलिए मैं आज प्ले नहीं कर रही हूं। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना प्ले नहीं कीजिएगा। और आपको भी बता दूं कि आपके गाने को मैंने गुरुवार को प्ले किया था इसीलिए मैं आज फिर से प्ले नहीं कर रही हूं। और यहां पे जो कि हमारे पास जो आज के जो बुधवार को जुड़ते हैं उनके गाने की भी फरमाइश पूरी नहीं हुई है। और जो कि गाने की फरमाइश पहुंची हुई है हमारे पास लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है और क्या हुआ गाना कब तक बजेगा। और प्रवीण कुमार जिला सिवान के रहने वाले हैं और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बोल है मन की संवरिया बन गई लो तुम। और काफ़ी बढ़िया गाना पहुंचा हुआ है इनके तरफ से। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैंने एक जादू सीखा है, सुबह 5 बजे उठकर 5 मिनट के लिए आंख बंद करो तो 8 बज जाता है। और रोहित जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं प्रवीण कुमार, जो कि थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए। और अगला मैसेज यहाँ मिथिलेश कुमार शर्मा और लिख रहे हैं मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, शिमला से सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं नौशाद मोबाइल विक्रम रोहता विक्रमगंज रोहतास बिहार से जुड़े हुए हैं, और गाने की लिंक यहाँ पहुँची हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो चलिए आपके लिए आपके गाने को प्ले करते हैं, और गाने की बोल है दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, और बरसात मूवी का गाना है कुमार शानू की आवाज़ में। तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बरसात मूवी का काफ़ी प्यारा सा सॉन्ग दिल पागल दीवाना है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, हम दिल्ली से अनीस हैं और हमें भी ये गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुँची हुई है और गाने की बोल है राजू प्यार ना करियो। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी बेहद खूबसूरत सा गाना ओए राजू प्यार ना करियो, और मूवी है हद कर दी आपने। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच गए हैं जो कि लिख रहे हैं बाय बाय गाना प्ले करने गाना बाय बाय आपको और शो की समाप्ति होने वाली है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बस आज के लिए बाय बाय, और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं बाय बाय भारती जी, बाय बाय मनोरमा दी, कल मिलेंगे, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश शर्मा घर गोपालपुर कोठी से, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और अभी हम शिमला से सुन रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और अभी तो समय हुआ है बाय बाय करने का। और जो कि इधर गाने की फरमाइश काफ़ी सारी हमारे पास बची हुई है, और जिनके भी गाने की

नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो हमारे पास फरमाइश पहुंची हुई है, शमशेर मुंबई से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं खेसारी लाल की आवाज़ में और शिल्पी राज की आवाज़ में, और गाने की बोल है कमर में दागी भैलबा। तो गाना प्ले करते हुए आज लूँगी आप सभी से विदा। तब तक आप सभी इंजॉय करते रहें इस गाने को। फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
1: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
2: रेडियो एमजेम,
1: सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065775।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम।
10: सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।
6: कोई एक्टर है आपकी नजर में?
7: अरे हीरो, जो पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो, आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में घिस रहा है।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन,

0: 8002994। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत सर रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू, नमस्ते आपको।
2: जी नमस्ते,
1: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
2: जी अनिल जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
2: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: गाना सुना दीजिएगा पवन सिंह का।
2: कौन सा बता दीजिए?
1: चांदना सुनर लागेला।
2: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते है?
1: आपकी पूरी टीम को और जितने लिसनर सुन रहे हैं सबको।
2: अनिल जी वैसे क्या हो रहा था अभी?
1: काम पे है।
2: क्या करते हैं वैसे आप?
1: दवा दुकान में जॉब करते हैं।
2: अच्छा, मेडिसिन लाइन में है। चलिए बहुत अच्छी की बात है।
1: ठीक है,
2: चलिए अनिल जी तो आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
1: जी धन्यवाद
2: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम, मिथुन शर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्ते, कैसे हैं?
1: अच्छे हैं मैम, गाना सुनना चाहते हैं मैम।
0: जी जी बिल्कुल, गाना सुनवाएंगे। पहले ये बता दीजिए कि कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बेंगलोर से बोल रहे हैं मैम।
0: अच्छा जी, तो और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?
1: ठहरे हुए पानी में कंकर हमारे सावरी।
0: ओके, तो ये क्या आप हेलो माय चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं मैम, पहले भी किए।
0: अभी वैसे अपना नाम क्या बताया है?
1: मिथुन शर्मा।
0: अच्छा जी,
1: बेंगलोर से जुड़े हैं।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। वैसे क्या करते हैं आप?
1: फर्नीचर का काम करते हैं मैम, और हम बराबर रेडियो सुनते रहते हैं। हमारा रोज रेडियो 9 बजे से 9 बजे रात तक चलते रहता है। आपका सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।

0: के माध्यम से?
1: ऐप के माध्यम से, मोबाइल से सुनते हैं मैम।
0: अच्छा जी।
1: हाँ अभी रेडियो तो इधर नहीं है, मोबाइल के ऐप से सुनते हैं। गाँव में रहते हैं तो रेडियो पे तो आपका रेडियो नहीं, हमारे उधर चलता है।
0: जी जी।
1: तो मोबाइल से ही सुनते हैं ऐप से।
0: चलिए ठीक ही बात है। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगता है रेडियो रिमझिम का?
1: अच्छा लगता है मैम। नेम हेलो माई चॉइस में मैं कॉल कितने बार किए तो आप, जब मैम भारती मैम चेंज हो जाता है तो आपने मेरा गाना बजाते ही नहीं।
0: अच्छा जी, ऐसा नहीं है।
1: दो तीन दिन में भेजा मैसेज आपको गाना, सप्ताह में एक ही बार हम जुड़ते हैं मैम, फिर भी हमारा गाना नहीं बजा। आज भी मैं भेजा हूँ, आज भी बजेगा कि नहीं पता मैं।
0: नहीं नहीं, बारी बारी से सबका बजता है।
1: जी मैम, हेलो।
0: हाँ जी, जी जी बोल रहे हैं कि बारी बारी से सबका गाना बजता है।
1: 12 बजे से शो चालू होता है मैम, 12:05 तक भेजते हैं तो 2:30 बजे 3 बजे तक तो बजना मांगता है ना, 2-3 घंटे में, तो उतने में भी नहीं बज पाता है ना। जब मैम चेंज हो जाता है, आप आ जाते हैं तो फिर आप आगे पीछे हो जाता है मैसेज, तो देख नहीं पाते हैं, बजा भी नहीं पाते हैं। जो जुटता है उसको बजा देते हैं, जो पहले से जुटा रहता है उसको बजा रहे हैं। मेरा नाम मैम मिथुन शर्मा है, बिहार के रहने वाले हैं।
0: अच्छा, तो अभी आप मैसेज किए?
1: जी मैम, आपका आवाज आने में, बोलिए।
0: जी जी, तो अभी आप फरमाइश किए हैं? फरमाइश,
1: हाँ हम हेलो मैं चॉइस में फरमाइश किए हैं।
0: अच्छा जी, चलिए।
1: तो अभी हमको बताया रिकॉर्ड हो रहा है, तभी मैं फिर कॉल लगाया, तो अभी एक ही बार में लग गया। उस दिन में लगाते रहा तो आधा घंटे से लग भी नहीं किया।
0: चलिए, और ये गाना जो बताया वो डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: मेरा दोस्त है यहाँ पे, सभी दोस्त और जितना सुनने वाले हैं सभी दोस्तों के लिए।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं आपके गाने को।
1: ओके मैम
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: Now pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम।
9: जी हम जाकिर हुसैन बिहार गोपालगंज जादवपुर से।
7: जी जी कैसे हैं आप?
9: मैं ठीक हूँ, अपना बताइए मैम।
7: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
9: जी मैम, तो गाना सुनना चाहते हैं मैम?
7: जी बिल्कुल बता दीजिए।
9: मैम बहुत देर से कॉल लगा रहे थे, कॉल नहीं लगा।
7: जी जी वो क्या है ना कि एक कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
9: अभी अभी कॉल किया है तब फिर भी कॉल आप नहीं उठाए।
7: चलिए कोई बात ना, अब लग गया ना, आज कॉल भी उठी है।
9: हाँ मैम, गाना सुनना चाहते हैं बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया अपना नाजुक है मेरा दिल तूने रिश्ता।
7: तो जाके जी गा के मुझे बताते दो लाइन तो बहुत ही अच्छा होता।
9: उतना तो मैम हमारा भी याद नहीं है, हिंदी गाना है, गा सकते हैं।
7: चलिए कोई बात नहीं, जितना याद है

0: को तो याद नहीं है। ठीक है
1: दीदी, आप तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं।
0: अरे मैम दूसरा गाना भूलिएगा तो सुना सकते हैं, मेरी गाना वो तो याद नहीं
1: है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप गाना बहुत ही अच्छा गाते हैं।
0: गाना तो मैम गाते हैं मगर संगीत उंगीत सब कर रहे हैं। मैम हम कहा दोनों आँख से तो ब्लाइंड है, कहाँ हमको दिखाई पड़ता है। दोनों आँख से 100% ब्लाइंड है। तो क्या कर सकते हैं, मेरा दोस्त का नाम लेना चाहते हैं, मैं गाना सुना दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल बता दीजिए।
0: सोफी आलम है, यूसुफ अली है, मुन्ना अंसारी है, मेराज आलम और जितनेश शर्मा, गोविंदा और इसमें हमारा जितना भी आपको रेडियो रंजीम से जितना परिवार है उसको भी सबको सुनाना चाहते हैं। गाना कोई बात नहीं है, और अगली बार फिर भी हम सुना देंगे दूसरा आपको।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ठीक है
1: चलिए जाके भी आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम मैम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: रेखा बोलतन पठान पठिए
0: जी, कैसन बनी?
1: ठीक बनी, अपन बताई
0: जी। हमरो ठीक बा। का जी कितना लेट से फोन करते नहीं, का हो गई बा?
1: चले गए जी, लाटते नहीं का करी बताई।
0: अच्छा चली, इतना टाइम हो गई, हम तो कनिया कर देले बनी फोन।
1: ना नहीं कैले बाकी रहनी
0: है। जी बढ़िया बा,
1: बनी दो।
0: हाँ ठीक बनी, अपन बताई की रहुआ कैसन बनी?
1: हम ठीक बनी, आधे लेट होगा ना मैम।
0: तो और बताई, बता दी फरमाइश, वैसे भी टाइम भी ओवर होता।
1: हाँ टाइम तो ज्यादा ओवर होता, हम तो कहने का बात ना हो, टाइम खत्म होके वाला बा, लेकिन तो लगाओ नहीं, बिजी बताओ लगा लेकिन बात हो जाए। कल फोन ना उठाई हमारा,
0: कल फोन, अरे मैसेज इतना देते ना कि कॉल
1: रहुआ आए तब लगाई, चीज भाटी में रहे तब लगाई, लेकिन केव जन उठेबे ना कैल हमारे फोन।
0: अच्छा अच्छा, और नंबर वही याद करके रख ले, ताकि जब भी एनु तो उठा ले।
1: हाँ ठीक है, खाली दिल से याद करी, फोन पे ना याद करी ना।
0: हाँ पता नहीं,
1: मैसेजो कैल कल पर कहा मैम देख ले मैसेजो, ऐसे मैसेज मोबाइल हम लगा ना रहे जानी, कल हमारी साइड को लग रहा है तो कभी कभी बोल रहे घर तो मुझसे मैसेज कर देनी।
0: हाँ
1: तो कहाँ देख ले बनी?
0: हाँ
1: ठीक बनी।
0: हाँ हाँ ठीक बनी, तो बता दी फरमाइश, टाइम बहुत कम बाप को।
1: हाँ बता दे तनी, आज का दिन का रात है, पल भर के साथ है, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। हिंदी गाय नहीं वे बजा दे,
0: यही बात पे तेने दूल्हा गा के सुना दी ना।
1: गा के सुना दी।
0: हाँ हाँ,
1: का दिन का रात है।

0: अपना बना लो।
1: सुना नहीं?
2: बहुत अच्छा बा, सुनवाई के भी चाहते नहीं क्योंकि
0: हाँ सुने मैम सुने लो और रानी बाड़ी से सुनियो कल देख सुन के फोन कैले रही वो सुनियो न सीवान से जरवान वो सुनियो
2: जी जी
0: हाँ बताई रहो नाम पता पूछ के सब प्रचार कर दी
2: ना ना ऐसा मत ना वो फेमस होता नहीं हमनी के साथ ही साथ
0: ठीक है कह दी हाँ सुने नी छोड़ा बंद कर देने आज के टाइम हो जाला हाँ तो फिर जितना बाकी रहो उतना सुबह सुन लेनी तो चालू बा मैं
2: हाँ चालू बा चलिए तो फिर और गाना प्ले करते नहीं
0: हाँ ठीक बापा बजा दी
2: जी सुनते सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: हेलो
11: जी, जी नाम बता दीजिए अपना।
12: परमात्मा कुमार गोपालगंज।
11: जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
12: गोपालगंज से।
11: गोपालगंज में कहाँ?
12: कलामठिनिया।
11: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है अभी?
12: काम कर रहा है, बारिश आ रहा है बस।
11: अच्छा जी, बारिश हो रहा है इधर?
12: बारिश हो रहा है इधर भी पंजाब में।
11: अच्छा, तो अभी आप पंजाब में हैं?
12: हाँ जी, सोमवार को कॉल लगा था, आज सोमवार को फिर एक हफ्ते बाद।
11: अच्छा, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
12: फरमाइश हमारा है
11: रेलिया वाला।
12: हाँ जी हाँ जी, वो बजा दो।
11: अच्छा अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
12: सब जितना रेडियो सुनते हैं उनको, सबको, और आपको भी, और जितना है सब।
11: ओके परमात्मा जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
12: हाँ जी
11: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: जी नमस्ते। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: तो नेहा जी क्या हो रहा है?
0: आपका इंतजार पहचान गई मैडम जी।
1: हाँ जी,
0: और समाचार बताएं, तबियत कैसा है आपका?
1: सब ठीक बात। हाँ जी, ऐसे नेहा जी कहाँ से बोला था? नहीं भोरे चली तो, और बताए खाना पीना रहा भैया?
0: हाँ खाना बन गया, अब दोबारा खाना है।
1: अच्छा चली बढ़िया बात, तो फिर बता दी आज की फरमाइश।
0: सारे नल के मेहरारू से के होना जीतल बा।
1: हाँ हाँ, ये तो गाना तो बताइले वानी है भी। नेहा जी गाना रुआ गा के बता सको? तनी हम
0: गाना ना गाइले,
1: दो लाइन गाती थी तो ठीक रही,
0: थोड़ा लाइन गा गाने तो नो।
1: अच्छा तो नहीं सुना गाया, लेकिन तो हम के गा के सुन ले रहे रुआ।
0: गाना हम नहीं गा ले कोई फरमाइश दे ले वानी।
1: अच्छा चले कोनो बात नहीं के, और ये गाना क्यों के सुनवाए के भी चाहता नहीं?
0: सबसे पहले आपको जितना रेडियो रंजन खाते हैं उसका रेडियो रंजन 200 सुनता है सबके साथ।
1: ओके नेहा जी, तो फिर प्ले करते नहीं गाना?
0: जी मैडम जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं,
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
8: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
7: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
8: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
7: कहाँ?
8: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
9: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
9: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ, डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
9: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-023-3586 या 95-999-27-982।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
10: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: तो
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
13: और जी रोवा के नमस्ते, प्रणाम और राधे राधे। और कैसी सुनवानी जी रोवा?
14: जी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। हम ठीक बानी, रोवा बताई रोवा कैसी सुनवानी?
13: और रोवा हमारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक बानी।
14: जी बिल्कुल।
13: और बताई रोवा, नाश्ता वास्ता कर ले वानी?
14: हाँ हाँ, नाश्ता तो हो गई वहाँ।
13: और बताई ठीक बानी न रोवा?
14: जी बिल्कुल। रोवा बताई की रोवा कैसी सुनवानी?
13: जी जी, हम ये के रोवा के सुनते हुए और आवाज इतना अच्छा अच्छा सुनते हुए सब कोई झकास वानी, सब कुछ एकदम मस्त जबरदस्त अपूचित झकास। अब रहुआ बताई रहुआ कैसन वानी? और भारती दी कैसन वानी?
14: ठीक वानी
13: जी। अब आगे शो शुरू हुई की ना, बुलाओ बोलो, दुनिया भी बुलाई तो हम जरूर आए।
14: हम तो मैंने कहते वानी के बोला था कि कहीं रानी जी के शो में जुड़े के।
13: अच्छा, और दी पता बा एक बार गुड न्यूज बा, आज में बड़का फोन खरीदा जाये तब हम पर डे रोलो के बीच में जुड़े।
14: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। पार्टी बना था
13: और रोवा कहती तो पूरा पार्टी बना था दोनों आदमी कहते।
14: जी जी।
13: और रोवा नाश्ता पूरा दोनों आदमी भरपूर करे, हम लोग ऐसे खाए सभी कोई रोवा लोग से बेकरार रहेला बात करे खाती।
14: जी तो और बताएं, घर परिवार में सबके ठीक बानो?
13: जी जी, सब कोई ठीक बा, रोवा लोग के दुआ बा। और दी एक बात बोली?
14: हाँ जी बोलो।
13: और रवानो, जब भी कोई लिसनर अगर गाना बीच में से फरमाइश करे मिलो तो रवा डायरेक्ट पूछल करे कि कौना मूवी से गाना बा, और रवा कभी ऑन एयर माफी नत मांगे हम अच्छा ना लागेला। और देखी रवा से बताओ तनी, सबसे ज्यादा गलतियां हरकत हम लिसनर सब में होला, ठीक बा? कभी कभी हमने क्या करे नी, सब बीच में मैच कर देनी सा। कभी कभी अगर हम कहते नी, जब हम मूवी के नाम देख ले बानी और जान पानी तो हम कहे ना वो मूवी के नाम धा के अगला के हम गाना बता दे कि दी हम रहे मूवी से गाना सुनने के बारे, वो लोग के दिक्कत ना हो। रवा ऑन एयर कभी भी माफी न मांगे हम, उतना मायूस न तो के। और खास करके वो अंकल जी जो गाना खिलाफ मूवी से सुने के कहले रही, मतलब वो जाना तरीका से बतैले रही गलत अतरल में के, तो हमें केहू के मिस्टेक खा जाये। और जीते बतैले रही रवा में कोनो भी गलती नहीं के, रवा वही सोच के गाना बजैले रही। बाकी जौन बिहान भैले वो गाना बतैले रही के खिलाफ मूवी से गाना सुने के बाद, वे काम वो दिन कैले रहती रवा भी दिक्कत न हो। रवा ऑन एयर कभी माफी न मांगे और रवा लो में। और देखिए स्टार्ट में सब कोई के थोड़ा बहुत दिक्कत होला दी, और अच्छा ना लगे थोड़ा सा रुवा, वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा जो माफी मांगे था हमके और अच्छा ना लगे।
14: अच्छा जी।
13: और देखिए, और बार बार कहनी लो जी हमारा गाना कहिए बाजी, हमारा गाना कहिए चली। कभी भी रोवो से चाहे भारती दी से भी बात भरी बात, हम कभी भी हम अपन गाना नहीं की खेले, हमेशा सुनते आई वानी। और आज ना तो कल तो बाजिए जला एक दो दिन आगे देखा। और सबसे अच्छा तो रोवो शो में ये जो जरिया बा, हमनी अगर सुबह में ना सुनी सा तो शाम के सुन सकत नहीं सा, अगर शाम में ना सुन सको तनी सा तो सुबह में सुन सकते नहीं सा। और रोवा में कोनो गलती नहीं की दी। और हमने और पता बा, ये हम खुद एक लिसनर होकर हम बहुत जगह अगर चैनल से बात करेंगे तो हम बीच में से गाना बता देनी, तो वो तो आरजी पूरा कंप्लीट बानी लो, ढेर दिन से शो करता नहीं लो, तो वहाँ लोग पता चल जाला। और चाहे गाना भी बतावे नहीं तो हम क्लियर बता देनी। और रोवा में कोनो गलती नहीं की दी, और उतना मायूस न तो क्या अभी नया बानी रोवा। और हमने की फर्ज बांधता रोवा के पूरा सुहूर बिटोर के रोवा के ओर से आगे लेके चली। और रोवा इतने दिन में बहुत सारी आई बानी रोवा लो, दोनों आदमी के अगर जितने आदमी के तारीफ करी तो बहुत कम पड़ जाये। और जो वो जी गाना बीच में का वो मूवी के नाम पता बा, अगर रख दे वहाँ लोग का दिक्कत बा। और सबसे ज्यादा गलती है हम ये करनी सब लिसनर सब, ठीक बा? रोवा में कोई दिक्कत नहीं क्या, रोवा कभी मायूस न चुके। रोवा अपनी आवाज से जितने हमने के रोवा के आवाज से अगर हमने के तारीफ करी सब बहुत कम पड़ गई। और सुबह में डायरेक्टर सर के द्वारा कुछ लिसनर रोवा लोग के दोनों आदमी के बीच में मैसेज कई रही है, काफी अच्छा अच्छा होने से रिप्लाई मिला रहा। और डायरेक्टर सर ऊपर बहुत अच्छा अपने विचार रख ले बनी।
14: जी जी साहब, हम ये कार्यक्रम चलाए
13: जी जी। और देखिए, और कभी भी अगर हम कहते नहीं, हम तो बहुत ज्यादा मूवी देख ले बनी हिंदी में, अगर बात करी तो हम डायरेक्ट नाव रख देने के लिए मूवी के गाना बजा दे, फिर वो आसान भी हुई सामने वाला भी आसान हुई, हम ही आसान हुई सुनने में। और बाकी वो मेरे वो माफी मांगत रही तो थोड़ा सा बुरा हमके भी लागू भले बुरा के लागू चाहना बाकी सोचत रही कोई मेरा फोन रही एक दिन और शो करत रही हूँ माफी मांग रही ऑनलाइन वाला शो में पूरा शो अंति पड़ाव पर हुए हम कहीं अच्छा कभी बात हुई तो बोले की इतना टेंशन न थे अब चली और दिल वाले मूवी में देखी बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बात तो होती रहता है
14: जी जी लेकिन
13: और वह जो करी बहुत अच्छे से करी और वह आयुष आगे जाए भी बहुत आगे जाए और सारी और रेशमा दी जन पहचान पुलिस से कॉल करे काफी कुछ हमारे बारे में बोल ले रहे कई की तारीफ बोला तो दिल बड़ा गदगद बोला तो वहाँ के दिल से शुक्रिया रानी की तरफ से और हम बात कहीं एक दिन हम अपने दृष्टि डाल के देखिए हम अपना नजरिया से हमारी जितना लिस्नर बानी लोन अपना जगह पर सबको एक से एक बढ़ के तो एक अगर तारीफ नाम डाल के नहीं कर सको शब्द नहीं के वो सब कोई के और सबसे अच्छा हमारा लगेगा हमारा अपना कॉल से ज्यादा लोग के कॉल सुने में बहुत अच्छा लगेगा उनको के कम नहीं की जब गाना गावे नहीं ना काफी अच्छा लगेगा
14: जी जी
13: जी चलिए आज बिना देरी की आज सॉन्ग बजा दी रोवा के हम पूरा थोड़ा सा हिट दे देता है
14: बता दे।
13: और भोजपुरी में बात बोलूंगा बाकी हिंदी गाना सुना दी
14: बता दी
13: जी मूवी के नाम बा बेटा अनिल कपूर के हाँ और ये गाना बा धक धक करने लगा हाँ गाना काफी खूबसूरत बा और ये गाना रोवा दोनों आदमी के हमारा तरफ से रानी के तरफ से और जितना रेडियो दोस्त बानी लो सबको के और रेशमा जी बानी पठानपति से उनके कैचा भर के हमने दोनों आदमी के हिसाब बरूबर रोवा कभी अपन लगन और मेहनत और इसीदत और विचार और सबसे बढ़कर रोवा लो में दो आदमी में अर्जी तो बहुत लोग आई अगर एक नजरिया से हम देखी था बाकी जॉन रोवा लो की नेचर बा जॉन रोवा लो की विचार बा दोनों आदमी के बहुत अलग बा हम सौ लोग के बीच में ही बात बोल सकते हैं रोवा लो हाँ हाँ बहुत ज्यादा बाजी और देखिए सारी बात एक तरफ है कभी भी इंसान के अंदर ही इतना रखे के चाहिए लिस्नर और अगर सामने वाला व्यक्ति बात करे तो दोनों आदमी फर्क ना पड़ोगी हम एक आरजे से बात करता नहीं क्योंकि दोनों आदमी के लागू हम एक रिश्नर विश्नर से बात करता इन्वेस्ट करे के चाहिए
14: जी जी
13: जी जी जी
14: हाँ
13: जी जी और गाना प्ले करी और लोग भी लागल वही लाइन में
14: जी

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9554।

0: 9644 Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
1: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: जी, साथ में आपका भी स्वागत है कि हमको गाना सुनाइए।
2: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। नाम बता दीजिए अपना।
3: नाम बता दे, आप कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं मनोरमा।
3: अच्छा जी मनोरमा, तो बहुत दिनों के बाद आज मिली है।
2: जी जी,
3: मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरा से। मनोरमा जी, आपसे शिकायत है।
2: हाँ जी।
3: एक बार हमने फोन किया था तो आप गाना हमारा बजाई नहीं, है ना? बहुत इंतजार किया, उसके बाद आपके ये जो है आरती जी, उनके बाद उनका नंबर आया तो उनके ना, जब गाना का उनसे हम रिक्वेस्ट किए तो उनका तो बजाया हुआ गाना सुन लिए, लेकिन उनसे एक दिन पहले आपका कॉल हमने किया था, वो गाना नहीं बजा। मेरा
2: गाना आज बजेगा, वो सबका कॉल जिन लोग का छूटा हुआ है वो बारी बारी सबका बजता है।
3: वो गाना था मेरा, वो कैसा तो गाना था लेकिन वो बजा नहीं है। आज गाना तो सुना था मैडम, वो पवन झकोरा मेरे संग गाए के गुनगुन गुनगुन हवा चले, लता जी का गाना है।
2: जी जी,
3: है ना? तो वो गाना अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा गाना हमने रिक्वेस्ट किया था ना, बहुत अच्छा गाना था।
2: जी जी, गाना बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कॉल बाकी है और आज बजेंगे आपके कॉल।
3: आज वाला
2: और आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो तो कल या तो परसों ही बजेगा।
3: आपके पहले से कितना रखती हैं जी?
2: वो क्या है ना, बीच में भारती जी भी रिकॉर्ड करती है ना, तो पहले वो रिकॉर्ड किए तो उनका चलता है, उसके बाद मेरा चलता है।
3: जी, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिकॉर्डिंग आपका चल जाए तो भारती जी का चले, ऐसा नहीं है?
2: ऐसा ही है, तो पहले भारती जी रिकॉर्ड करती है, उसके बाद उनका चल जाता है, उसके बाद मेरा होता है।
3: तो नहीं, तो अपना खत्म कर देना चाहिए उनको, है ना? तो आप मनोरमा जी आ जाती तो मनोरमा जी खत्म करती तो भारती जी आ जाती।
2: ऐसी कॉल मतलब अलग अलग करके ही चलाते हैं लोग, अब एक साथ तो होगा नहीं।
3: और बताइए मनोरमा जी, कैसे खरीदे तो है ना?
2: जी जी, सब बढ़िया है। और आप बताइए कि आप ठीक ठाक है ना?
3: हाँ हम तो ठीक है, पर अभी मौसम थोड़ा बेईमान हुआ था, आज मौसम थोड़ा सही हुआ है, कल भी सही हुआ था। दो दिन तो ऐसा हुआ था कि मतलब मार्केट जाना एकदम पूरा बंद हो गया था ना।
2: बारिश हो रहा था ना?
3: हाँ बारिश हो रहा था, तो आपके यहाँ नहीं हो रहा होगा? और गोपालगंज में कितना दूरी का फर्क है?
2: जी जी,
3: आपसे हम ज्यादा दूर है, मीरगंज तो 16 किलोमीटर है।
2: जी,
3: आपको गोपालगंज जो चौक जो है हॉस्पिटल का, वहाँ से आपका रेडियो स्टेशन 2 किलोमीटर पड़ेगा।
2: हाँ जी,
3: और मीरगंज से हम इधर 1 किलोमीटर, 16 और 3 कितना हो गया, 19 किलोमीटर का फर्क है आपके और मेरे बीच।
2: जी जी,
3: हाँ तो बारिश तो सब तरफ हुआ था, लेकिन बहुत ठंडा भी लगा।
2: बारिश हो रहा था तो बीच में ठंडा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ठंड का मौसम आ गया।
3: हाँ तो हम तो एक रात तो ऐसे ही कपड़ा वपड़ा पहन के हम सोए, बहुत ठंड लग रहा था। क्या बताया जाए, और सब ठीक है मनोरमा जी?
2: हाँ जी सब बढ़िया।
3: तो जो मेरा गाना आया ना, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो है मेरा सुनाया कीजिए मैडम जी।
2: जी जी, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपका गाना बजे।
3: आप पूछती है ना कि आप रेडियो में गाना कब से सुनते हैं, आप गाना गाते हैं या नहीं है, है ना? ऐसा बात पूछती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना?
2: जी,
3: कोई भी कंज्यूमर से आप जैसे बात करती है ना तो हमको अच्छा लगता है। तो उसमें कोई कोई अलग अलग और भी टॉपिक जो है ना जोड़ कर पूछा कीजिए, ताकि भारती जी भी समझे कि हाँ मनोरमा जी क्या बातें कर रही है ना। जैसे होता है ना, लोग पूछते हैं खाना खाए हैं, मौसम का कैसा है, यही लोग ना पूछते हैं ज्यादातर।
2: हाँ।
3: तो आप तो पूछते हैं कि आप गाना गाते हैं या कब से सुन रहे हैं आपको, कि रेडियो रिमझिम कैसे लग रहा है ना, इसका सभी प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इसी का सवाल को लेकर के एक टॉपिक बनाइए ताकि सारे आदमी से पूछा कि ये तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और भी जो भी सुनेगा सुन लोग कहेंगे मनोरमा जी अच्छा अच्छा सवाल करती है,
2: ऐसा
3: ही बनाइए। चलिए तो मैडम बहुत बात हो गया, आप गाना हो सुनवा दीजिए, पवन झकोरा मेरा संग आए गुनगुन गुनगुन हवा चले, लता जी का गाना है।
2: जी जी, और डेडिकेट भी है?
3: डेडिकेट आप ही को नाम में रहेगा और किसी का नाम में नहीं रहेगा।
2: चलिए चलिए, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
3: ओके जी।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
10: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: हेलो मैम, नमस्ते।
13: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
14: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं MP से।
13: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
14: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं अभी फोन लगाते हुए मैम।
13: अच्छा जी,
14: जी मैम, आओ, वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम आपके यहाँ?
13: यहाँ पे मौसम बता दूँ आपको तो धूप निकला हुआ है।
14: जी जी जी मैम
13: जी, और आपकी तरफ?
14: जी मैम, अभी तो 2-3 दिन पहले अच्छा बारिश हुआ था, आज तो थोड़ा धूप कड़ाके का है मैम, लग रहा है तो गर्मी से चालू हो गई मैम।
13: जी
14: मैम,
13: तो सुनील जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?
14: जी फिल्म फूल और कांटे का, और गाने के बोला जिसे देख मेरा दिल धड़का, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंजन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
13: ओके सुनील जी, वैसे क्या कर रहे हैं अभी आप?
14: अभी तो मैम बस बैठे हैं रेडियो रेंजन सुनते हुए मैम, और फोन लगा रहे थे और इससे पहले मशीन चला रहे थे मैम।
13: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं आप?
14: जैसे भी मशीन चलाते हैं मैम।
13: अच्छा जी, जेसीबी मशीन, चलिए बहुत बढ़िया।
14: जी जी जी, अभी तो खाली बैठे थे, हम सोचे अभी टाइम हो गया है तो अभी फोन लगाते, नहीं तो शो का रिकॉर्डिंग का टाइम समाप्त हो जाएगा तो फिर फोन नहीं लगेगा मैम, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अभी शो में जुड़े हैं मैम। बाकी बहुत अच्छा लगता है रेडियो, रिमझिम सुनते हैं दोस्तों के फरमाई का, अपनी फरमाई दोनों शामिल हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है।
13: जी चलिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
14: जी जी धन्यवाद।
13: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
14: ओके मैम, धन्यवाद।

0: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिविजन 90.4 एफएम में।
0: तो हम सुनना है, सुना दीजिएगा
1: जी। बिल्कुल बता दीजिए।
0: अजूबा पिक्चर का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: और गाने के बोल,
0: तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया
1: जी। ये गाना आप गा के बताएंगे दो लाइन?
0: ये तो मैम थोड़ा याद नहीं है।
1: चलिए कोई बात नहीं है।
0: हम ओम साइकिल बोल रहे हैं, बंजारी रोड पुलिस के सामने, गोपालगंज से। राघो जी
1: जी, श्री राघो जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, आप लोग के दुआ से आशीर्वाद चल रहा है
1: जी। जी बहुत लेट से फोन
0: किया, कॉल 365 कॉल लगा दिए हैं एक साल का।
1: अच्छा
0: सोचे कि आज बात नहीं हो पाएगी।
1: नहीं नहीं, देखिए बात हो गया ना, लेट से हुआ लेकिन हुआ।
0: एक दो कस्टमर भी छूट गए हैं फोन लगाने के चक्कर में।
1: अच्छा
0: क्या बताएं, एक रेडियो रिव्यू से ऐसा आदमी जुड़ा है कि
1: जी जी। वो क्या ना, हम लोग को भी आदत हो गई आप लोगों से बातें करके। अब कॉल नहीं आता है तो लगता है कि हाँ नहीं जी। आलो
0: आइए कभी हमारे शॉप
1: जी, बिल्कुल आएंगे,
0: आप लोग का स्वागत है
1: जी। जी जरूर आएंगे लो, जब आपने बोल दिया तो जरूर आएंगे लो हम लोग। तो फिर चलिए इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। और डेडिकेट भी करना चाहेंगे
0: पहले तो आपको और मैम को और जितना रेडियो रिमझिम तो सुन रहे हैं उन सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि नाम रखने में ना कोई आदमी नाराज होते हैं, हमारा नाम नहीं रखते हैं, उनका नाम रखते हैं, इसकी वजह से सब आ रही है, सब आदमी को सुनाना चाहता हूँ
1: जी। जी चलिए तो इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं,
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
11: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: हम खालो से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद
13: जी। जी क्या हाल चाल बा?
12: हाल चाल ठीक बा, भगवान जरा वो दिन दिन बना रहे काल से, आज बहुत बढ़िया दिन भज बा।
13: हाँ हाँ दिन तो बहुत ही अच्छा भज बा।
12: तो जाना सुना बा
13: बता दी,
12: चट न मार डाली घींच के तमाचा, किसी किसी हंसा लगा प्रिंकिया का साफ।
13: हाँ हाँ गाना तो बहुत ही अच्छा बा जी। और ये गाना खेल के सुनाए के विचार करनी?
12: शाली सुनिए, सुशीला देवी, सरल सुनिए, गीता देवी, रीता देवी, हम सुने, रुआ सुने, जितना रेडियो रिमझिम सुनते सब कुछ सुने।
13: चली तो रुआ ठीक बानी?
12: हाँ हम ठीक बने, सब भगवान का दया बा
13: जी। जी चली तो बढ़िया बात, तो गाना सब प्ले करते
12: हैं। अपन नाम बता दी
13: जी? हमारा नाम मनोरमा।
12: चलिए ठीक बात, नमस्कार
13: जी।

0: हेलो मुन्ना जी प्रणाम।
1: जी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत बार रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी ठीक बानी, अपन बताई।
0: ठीक है बानी, सोचा नहीं दो दो मिनट बाद तक तो फोन लगाई, लागत है कि नीचे लागत।
1: अच्छा और देखी किस्मत लाग बेल में
0: लगावे के सुना रहा, लेकिन मानत नहीं के दिलवे नहीं के मानत।
1: अच्छा तो काहे नहीं लगावे के मन करत, का हो गई बा?
0: ऐसो ही
1: चार वो तो बराबर करत रहनी है, अभी बीच में ऐसा का हो गई बा जे फोन करे के मन नहीं करत रहुआ के।
0: पता ना रिमझिम से का हो गई बा,
1: पहले खाली दिल लगाई अच्छा लगी थी।
0: वे तो आदमी कोशिश कर नाइये कर, लेकिन फिर दिल ना मानल तो कहीं चार मिनट बाकी रहो तो कहीं रुको तनी करी लागत है कि ना भैया तक लास्ट कॉल बा।
1: और
0: सुनाई
1: और सब तो ठीक बा? रहुआ ठीक बानी
0: ना? ठीक है बानी, आज छुट्टी बानी। छुट्टी बा तो कहनी की फोन कर दी ना तो खानो ना खाइए।
1: अच्छा
0: बहुत भीड़ चलत है गरीब जिम में। यही से हम सोचे थे की अब ज्यादा भीड़ होते तो भीड़ में ज्यादा धपियावला के जरूरी नहीं है। टेंशन फ्री रहे।
1: अच्छा बात नहीं के रहो, फरमाइश करी रहो पूरा करे।
0: तो अनु दुबे के बाद तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे।
1: जी जाना तो बहुत ही अच्छा हुआ।
0: तो तनी बजा दे।
1: जी बिल्कुल,
0: ये रिक्वेस्ट बार के तो रौड़ा के कार्तिक जी के और जितना हमारे नाम से जाने वाला है सबके, हम दानेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले कर देना और गाना
0: इंतजार है। चले चले फिर ठीक
1: है, ठीक है तो प्ले कर देना सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: Hello. हेलो।
5: हाँ जी, बहुत स्वागत है जी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी वालेकुम अस्सलाम,
6: मैं हैदराबाद कर रही हूँ सूरत से।
5: जी जी, कैसी हैं आप?
6: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
5: जी मेरा भी बढ़िया।
6: नाश्ता पानी सब हो गया है ना?
5: हाँ जी हो गया, और आपका हुआ?
6: जी मेरा भी हो गया है, और रेडियो रिमझिम का पूरा टीम अच्छा है ना?
5: जी जी, सबको बढ़िया।
6: अच्छी है,
5: बढ़िया है। जी ऐसा लगता है आपसे मुझे पहली बार बात हो रही है।
6: हाँ लग तो रहा है पहली बार बात हो रही है, लेकिन हम तो कॉल किए हैं, पहले ज्यादा कॉल करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से मतलब शादी जब से हुआ तो हम जरा कम कर दिए हैं।
5: अच्छा जी।
6: हाँ तो अब थोड़ा बहुत ये 3-4 बार हो गया है लगातार हमको कॉल किए हुए।
5: अच्छा जी, तो इससे पहले भारती जी से बात हुई होगी?
6: हाँ वो एक महीना से लगातार हम 4 बार कॉल किए हैं।
5: अच्छा,
6: 4 बार में 2 ही बार अपना सॉन्ग सुने हैं, 2 बार नहीं सुने।
5: तो जो रिकॉर्डिंग कराई होंगी तो जरूर बजा होगा।
6: बजा होगा, लेकिन हम ना नहीं सुन पाए हैं, मतलब बजा नहीं है, मतलब हम रेडियो नहीं सुन पाए हैं।
5: जी जी,
6: सॉन्ग तो बजा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बजा होगा। एक बार नहीं बैठा है तो दोबारा कोई सुन लेता है, दोबारा ऑप्शन मिलता है सुनने को सुबह में।
5: हाँ सुबह में
6: नहीं, 9 से 10 के बीच।
5: 9 से 10 के बीच? हाँ शायद
6: 9 से 10 बजे तक होता है, और 11 से 10 के बाद 11 चलता है SMS फरमाइश, उसके बाद ये वाला चलता है।
5: जी जी,
6: तो आज सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम।
5: जी तो ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे?
6: ये मैं दूसरा गाना गा सकते हैं, ये सॉन्ग है हमको दीवाना कर गए मूवी का, मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम, दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं।
5: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं है।
6: तो आप कहिएगा तो दूसरा सॉन्ग आपको सुना सकते हैं।
5: जी बिल्कुल सुना दीजिए।

0: इतना ही मैं
1: जी। आप तो बहुत ही अच्छा गाती हैं
0: जी, थैंक यू। आगे आगे का लाइन भूल गई इसीलिए नहीं सुना पाए।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: बात करेंगे तो सुना देंगे।
1: जी जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा गा रही थी आपने,
0: थोड़ा बहुत गा लेते हैं।
1: जी जी बहुत ही अच्छा। और जो गाना बताई है वो गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
0: जी जी आपको और नासबेन जी को और कुछ रेडियो दोस्त हैं, महीना जी हैं, सफार जी हैं, सलेहा जी हैं, सजा है, ब्यूटी फरमीन, रोमीना नाज, अख्तरी जी और रानी जी और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, दिलीप राम दिल्ली से, और वीरेंद्र गुप्ता और समीर भाई और जितने जाने पहचानने वाले हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: प्रसाद क्लिनिक
10: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।

परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी रेवरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा छोटे वर्जा भार रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुँचे की कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बतावी कैसे नया सौगात बाटे।

0: सोटी मिर्जा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रोड़ा साथ है दोस्त अमरीश और उम्मीद बा कि आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं, कार्यक्रम में सोटी मिर्जा भार में स्वर बांटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लफ्ट उठावल जाओ सोटी मिर्जा भार के।
1: ए खुश मोहम्मद जी,
2: हाँ
1: ए ओकार बा, हे जमाना जुला एक तनी अगर वो कहानी कोई का सुनाई।
2: ठीक बा, हम सुनाओ जा रहा।
1: चिटकुला चिटकुला,
2: हाँ हाँ सुनाओ तनी।
1: हाँ सुनाई।
2: एक जने धोबी रहले हमरे गांव में।
1: अच्छा
2: ठीक नू।
1: हाँ हाँ
2: उ रोज कपड़ा धोवे।
1: हाँ
2: एक दिन के बात हो गई कपड़ा धोए खातिर नदी में।
1: हाँ
2: तो लगले धोए कपड़ा तो धोते धोते।
1: हाँ
2: जब कपड़ा ना फींच रहा जला पनिया में खूब हेतर हिंडकोर के धोल जला।
1: हाँ
2: वो धो के जैसे फेंको तारे कपड़ा तैसे एक ठो।
1: हाँ
2: उनकरा के हीरा मिल गए।
1: हीरा
2: हीरा। हाँ
1: अच्छा अच्छा
2: पनिया में दहत रहे।
1: हाँ हाँ
2: बस ओकरा के वो पकड़ ले। आ समझ ले तो कहले कि रे है ये हीरा हुए।
1: हाँ
2: लेकिन कहले कि हीरा तो जरूर है लेकिन इमे कानो माटी लाग गई बा।
1: हाँ
2: रुक है मन एकरा के पानी में धो दी।
1: हाँ
2: ताकि साफ हो जा।
1: हाँ
2: बस ये ब्याह जी।
1: हाँ
2: अब तो पानी में वो हीरा मुठी में लेके बांध के मुठी।
1: हाँ
2: लगले पनिया में है तरह धोवे।
1: हाँ
2: वो धोते में गायब हो गए
1: हीरा।
2: हीरानी वही में बिला गए।
1: धोबिया चौपट नान रहे हो।
2: चौपटे रहे अब तो वही जा धोबिया के।
1: हाँ
2: एगो स्क्रूप थोड़ा सा ढील हो गए।
1: आय आय
2: जब ढील हो गए तब लागल कोहे का।
1: हाँ
2: ओह धोते धोते गायब। धोते धोते गायब।
1: अच्छा
2: अभी रोट लहलस। अभी सोचलस कि दादा अगर हीरा बिलाइल ना रही तो हम कोनो राजा हो गए रहती।
1: हाँ ये बात
2: ठीक हो गए रहती घर के।
1: हाँ
2: आ ना धोले रहती ना ये गायब भई रही।
1: हाँ
2: बस ओकरे दिमाग में बात ढुक गई कि ओह धोले ना रहती तो आज हमारे घरे चल गए रही।
1: हाँ
2: पानी में खड़ा होके कहे का कि धोते धोते गायब।
1: हाँ
2: धोते धोते गायब।
1: हाँ
2: तले संजोग से ओकर माई।
1: हाँ
2: कपार पर खाना धोले।
1: हाँ
2: दौरी में लेके चली आवतै।
1: अच्छा
2: जब अली घाटे के किनारे।
1: हाँ
2: तो देखो तड़ी कि लड़का हमार रोट रहल बा कि धोते धोते गायब।
1: हाँ
2: तो खाना रोक के कह तड़ी का ए बाबू।
1: हाँ
2: तो कहता का धोते धोते गायब।
1: अच्छा
2: कहली का कि निकल के है नहीं आई बो।
1: हाँ
2: आ तो धोते धोते गायब।
1: हाँ
2: ओकर महतरिया सोचलस कि दादा बुझाता हमार लड़का।
1: हाँ
2: के कुछ हो गई बा तबे नहीं तबे से रोटता धोते धोते गायब धोते धोते गायब।
1: हाँ
2: गोली जाके पानी में से जब बाह पकड़ ली ओकर।
1: हाँ
2: तब वो कहे कि धोते धोते गायब पकड़ के बाहर निकल ली।
1: हाँ
2: कहली कि बुझाता हमार लड़का कुछ देख के डेरा गई बा तबे ये तरह कहत लेके के चली अस्पताल में।
1: हाँ
2: यानी कोनो डॉक्टरी में ले चली।
1: हाँ
2: अब लेके गई एगो डॉक्टर साहब के यहाँ।
1: अच्छा
2: जाके कहली डॉक्टर साहब देखी ना हमार लड़का थोड़ा सा एने ओने हो गई बा एकर जल्दी एकर दवाई करा दी यानी क्रेक माइंड के हो गई बा बुझाता।
1: हाँ
2: डॉक्टर साहब समझले कहले कि बाबू तारा का हो गई बा।
1: हाँ
2: तो ये कहे कि धोते धोते गाय।
1: अच्छा
2: धोते धोते गाये।
1: हाँ
2: डॉक्टर साहब बुझलक शायद सही पागल हो गए बा रुको एकरा के हम एगो सुई दे दें ताकि बेहोश हो जाये तो एकरा भूला जाये।
1: हाँ
2: बस डॉक्टर साहब एगो सुई दे दहनी।
1: हाँ
2: ओकरा लइकवा के।
1: अच्छा
2: बस वो जाऊ बेहोश हो गई।
1: हाँ
2: आ मने सुत गई।
1: हाँ
2: तो कहनी डॉक्टर साहब की तब अब तो लड़का तार सुत गए लेके घर लेके जा हमार पैसा दे द फीस उस जौन बा।
1: हाँ
2: तो लड़कवा के महतरिया पूछलस कि कितना भई।
1: हाँ
2: आ तो 100 रुपया भइल।
1: हाँ
2: आ तो एक डॉक्टर साहब 50 रुपया बा ले जाई या 50 बिहने ले आके दे दे।
1: हाँ
2: कहले डॉक्टर साहब को बाकी बिहने ले आके दे दी।
1: अच्छा
2: हाँ हाँ दे दे।
1: हाँ
2: अब तो लड़का के उठा लिया लेके घरे चल अली।
1: हाँ
2: घरे ले अली तो रात भर उ लड़का सुतल।
1: अच्छा
2: बिहान जब होल तो यह अपने मन में सोचली कि रे लड़कवा हमार 8 बजे सुतल बा आ एक के जगा के पूछे कि बाबू तहार का कलिया भिला गई रहुए।
1: हाँ
2: कि कोहत
1: इतना रोटत रहुए।
2: हाँ कि कोहत रहुए कि धोते धोते गाए।
1: हाँ
2: तले ओकरा के जब जगाओ तड़ी लइकवा के।
1: हाँ
2: आ पूछे तड़ी कि बाबू।
1: हाँ
2: रतिया कलिया कोहत रहुए कि धोते धोते गाए बस फिर शुरू हो जाता।
1: अच्छा
2: कि धोते धोते गाए।
1: हाँ
2: धोते धोते गाए।
1: हाँ
2: तब तब ओकर बात सुना सुना इहो अभी नहु के इसको रूप ढील होल सुर भलवा।
1: हाँ
2: तब ई का कोहत तड़ी तते काहे ने हमरा से बतौले।
1: अच्छा
2: लइकवा कहे कि धोते धोते गाये।
1: हाँ।
2: आ ओकर माई कहे कि काहे न ते हमरा से बतौले।
1: अच्छा
2: काहे न हमरा से बतौले।
1: हाँ।
2: अब त गांव के लोग जुटल कहल दादा एकरे घर भर के पगलिया गइल सन।
3: बा।
2: और दोनों गोलन के बाह पकड़ के ले गए वही डॉक्टर की जिनके की दवाइया भई रहे। और डॉक्टर साहब देखले तने लइकवा कहे की धोते धोते गायब। आने वो लइकवा के माई कहे की काहे न ते हमरा से बतावली, काहे न ते हमरा से बतावली। तने डॉक्टर साहब देखो तने तो उ देख के चिन्ह गए तो उ का कहतने आ 100 में से 50 गायब, 100 में से 50 गायब, 100 में से 50 गायब।
3: अच्छा अब यहाँ से कहानी पर ध्यान दी। अब जू पहुँच गए वालो आ अपने मामी से का कह तारी। हे मामी।
2: हाँ कह हेमंती।
3: देख हमली के तो चल नहीं जा हेवलपुर में, लेकिन अब एक सोच कल उपाय पहले चल के देखा जे हमारे पति जी कहीं बाड़े की नहीं खन।
2: रुक जा हेमंती हमके देखे दो।
3: हाँ देख ला
2: चारू घूमता अगर एको हड्डी हमारा मिल जाये तो हम अपने भगना बिरजा भार के जिया ले। लेकिन कहीं कुछ नहीं देखत हो अब हम का करें। ए हेमंती
3: हाँ
2: चलो
3: चले के नदिया के किनारे
2: जौन हो इनार लौकता हो पोखरा लौकता ओहू जा चल के तनी देख लहल जा।
3: देख ला
2: कुछ अगर बिरजा भार के मिल जाये तो हम अपने भगना के जिंदा कर ले।
3: चला मामी चल देख तनी नदी के किनारे देख ला कहाँ जरौले वाली सब तनी हूँ तो देख लहल जा।
2: देख ना
3: जाबो जी पहुँचल वाली हेमंती तो देखा तारी कि हमरे पति के जरा के सारा राख पाक फेंक दल वाले सब तब वो जू बेआसा होकर के अक्का अपनी मामी से कह तारी

0: मामी देखो अब ले ते आसा ही रोला कि वो गंगा जी के किनारे ना खुश ते एक को हड्डी बचल होई तो अपने पति के जिंदा को लहल जाई। लेकिन मामी अब कोनो सोर्स नहीं थे जो कि हमार पति देव मिल है।
1: सुन लो हेमंती,
0: हाँ
1: तू कहे के जा रुक के अपन जान देबू कहे खातिर भीख मांगबू पता हम लगाए। हमरे नाव सती सांवरी हो, हमरे नाव सती सांवरी हो, हमरे नाव सती सांवरी हो, पता जरूर लगाए।
0: हे मावी
1: सुन लो, अब तक तो हमने के ऊपर देखत रहनी है जा।
0: हाँ जरूर घूमनी
1: है, इनार में झांकत रहनी है जा।
0: हाँ
1: पोखरा के आटे आटे घूमत रहनी है जा, नदी के तीरे तीरे देखत रहनी है जा, हड्डी के पता लगावत रहनी है जा। लेकिन तू अब हमरे संगे ए पानी में ढुको, हम पतलपुरी ले पता लगाए तबे जैसे घरे अपने वापस जाए।
0: काम अभी
1: आज हिरिया जिरिया के आज हम बता के तबे छोड़म।
0: मामी
1: हमरे नाव सती सांवरी हवे,
0: हेवली केवली के इतना आसान बात नहीं खे।
1: सुन लो,
0: हाँ
1: ओकनी के ना बात बुझाइल हो कि केकर भगनाई हमन।
0: हाँ
1: ओकनी के ना बुझाइल हो।
0: अच्छा। चलो मामी हमने के चले के पतलपुरी में कूदल जा,
1: ए पानी में ढुको, कूदा ये गंगा जी में कूदा। एक दो और के तीन,
0: जब ही दोनों जने पतलपुरी में पहुंचता लो आज अब घूमता लो तो का देखता लो कि वही पतलपुरी में जौन मंदिर बा वही जू बिरजा भार के मरी दग दग दग दग जरता। आ बेजू सातो सौरी कहतरी कि देख देख भगनी अब हमनी के जिंदा कर देब जा बिरजा भार के, देख बिरजा भार के मरी वही मंदिर में जल रहल बा, हमहू तो बारे साल आग बारे छत पास जानी ले, चल जल्दी लेकिन ए तरह से मरी ना लिहल जाई, चल के बाबा से चिरौरी कके मिनती कके मोड़ी मांग लहल जा। चल अब जो पहुँचा तलो बाबा के लगे, अब जाके कौने तरह से का कह तरी हेमंती

0: अब जो महात्मा जी कहते रखे बेटी दे।
1: ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। कौन है इस रेते
0: बाबा? बहुत हम मुसीबत के मारल बड़ी बाबा।
1: मुसीबत के मारल बड़े?
0: हाँ।
1: तब ये पतलपुरी में आयल बड़े। बोल
0: हाँ।
1: तोरे पीछे हाउ कौन हा?
0: हाउ हमार मामी है।
1: तोर मामी है?
0: उहन सा तो सौरी है।
1: कहल का चाहतड़े?
0: देखी
1: तानी के भजन भाव से त हम बहुत प्रसन्न बानी, लेकिन का कहतड़ सन
0: ए बाबा
1: बताओ सन।
0: ए बाबा उ हमरे पति के मरी है।
1: का
0: हमरे पति के जन है बारी सा डाइन हेवली केवली।
1: एक मिनट सन।
0: हाँ।
1: तोरे पति के मरी है?
0: हाँ।
1: हाँ जौन हमरे मंदिर के अंदर जर रहल बा।
0: हाँ।
1: वो पूछले हमसे कि कैसे आ गइल बा।
0: हाँ कैसे आ गइल बा
1: सुन ले। हरि हरि ओम नारायण श्री हरि नारायण गोविंदे के मर्जी से एगो राघवा मछली रहे।
0: हाँ।
1: वो राघवा मछली ए मरी के घोंट लल रहे।
0: अच्छा।
1: घोंट के आयल हमरी मंदिर के सामने ए जा छपटियात रहे तड़फड़ात रहे। हम पूजा पर बैठा रहनी, पूजा से जब उठनी एकर तड़फड़ाइल देखनी तेकरी लगे पहुँचनी। जे ही लगे पहुँचनी तब तक तो हम सोच लहनी कि ई मड़ी घोंट ले बिया, बेचैन हो गए बिया, भाग के हमरे कुटी के लगे आयल बिया। इतने बात सोचनी तब तक वो मछली राघवा मछली ऊजा मर गए। राघवा मछली के जब पेट चिरनी
0: हाँ।
1: तब ही मड़ी निकला।
0: अच्छा।
1: तब ले आके हम अपने मंदिर में रख दहनी। अब बता कि ते का कहल चाहत रे।
0: हे बाबा देखी हमनी के दोनों आदमी आयल बन जा, बहुत पता लगौनी हजा, लेकिन कोनो पता ना लगल हो तो हमनी कनी हजा चले के पतलपुरी में हो सके हमरे पति के पता लाग सकेला। तेज वे नहीं हजा।
1: हम बात नहीं बुझत।
0: ई हमार पति देव हौ।
1: तोर पति देव हौ?
0: हाँ।
1: तोरे पति के ई मरी हुए?
0: हाँ।
1: एक मिनट सुन ले, ते त अपने पति के नाव ना बता सकीले
0: ना,
1: लेकिन हौ जौन तोर मामी बाड़ी उनसे हमसे बात करवा।
0: ए मामी
1: का हा?
0: आ त बात कली
1: कहो।
0: हाँ।
1: तू आज बड़ू जा एकरे पीछे पीछे।
0: हाँ हाँ।
1: एकरे पति के नाव बता सकतरू?
0: हाँ।
1: का नाव हो?
0: अरे एकरे पति के नाव बिरजभार हा।
1: ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। का ये बिरजभार के मरी हा?
0: हाँ।
1: बहुत रनी है कि कहे इतना जरूरत आई। अब बताओ ते का कहल चाहत रे?
0: हमरा के ये मरी मिल जाए तो हम अपने पति के जिंदा कर ले।
1: ऐसन कब्बो ना हो सकेला।
0: काहे?
1: ई हमरे मंदिर के चिराग है, हमरे मंदिर के ज्योति है, हमरे दिल के संतोष है। हम कैसे ई मड़ी दे दी?
0: ए बाबा
1: ई मड़ी अगर तोरा के देता नहीं तो हमार मंदिर अंधेरा के अंधेरा रह जाई।
0: हाय बाबा आखिर और मंदिर अंधेरा रही? हमार पति देव हम लग देखा तो हमरा अंधेरा ना रही।
1: तब बता कि हम तोर अंधेरा देखी कि आपन देखी?
0: अब रौरे बात रौरे हाथ में ही फासला बा कि रौरा अंधेरा देखब अपने मंदिर के कि आज हमरे पति के अंधेरा देखब।
1: ऐसा बात बा कि तोर नाव का हा?
0: हमार नाव हेवंती हा।
1: सुन ले हम तोरा के जब्बे सतमानी बुझाम, जब्बे तक सती बुझाम कि अपने सत से
0: हाँ।
1: हमरे मंदिर में एक थोते ज्योत जला दे तब ते मड़ी के हम दे दे ना तो ना दे।
0: अच्छा अगर हमरे अंदर जरूर सत्य हुई तो हम मंदिर में चिराग मंगा दे। हम सुन ली हम मंगा देता नहीं कोई तरह से
1: मंगा दे।
0: अरे अपने तब से देवता

0: ये हमंती।
1: हाँ
0: बोलते हमरा के कहे के याद
1: के देता। देखी आज जो इतना बढ़न सत्य के बात आ गई बा, एक वजह से हमरे उड़ा के याद कैनी हो। आज हमरे पति के मड़ी ये मंदिर में पतलपुरी में मंदिर बा वही में जलता। आजो मड़ी के बाद अगर वो जो चिराग ना दिया ही तो हमके मड़ी ना मिली। बाबा के ये कहना बा,
0: यही खाती से हमरा के याद कैले हो।
1: हाँ
0: साधु कहले कि हमरा के एक ठो जोत चाहिए तबे ही हम मड़ी दे सकीले।
1: हाँ
0: ठीक बा, जो ऐसा नहीं होई
1: अच्छा
0: हम भेज देता नहीं।
1: ठीक बा महाराज। देखी देखी रहुरा गई।
0: आ गए मान गए नहीं तो वाकई थे सती बारे हेवंती।
1: हाँ
0: ले जो हाई मड़ी उठा के ले जो।
1: अब मड़ी वहां से लेकर के अब निकला तालो हेवंती। आज सातो सौरो कौन तरह से
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों समेत रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। राज्य मंत्रिपरिषद ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की। गंडक नदी में तेज बहाव के कारण पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण में कई तटबंध क्षतिग्रस्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। और अखिल भारतीय दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम घोषित, सहरसा के कुंवर देव को मिली टीम की कमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं, जौ, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% से ज्यादा तय किया गया है।
1: वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP को।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत विद्युत ग्रिड व्यवस्था को स्मार्ट बनाया जाएगा और अंतर्राज्यीय विद्युत संचरण प्रणाली मजबूत होगी।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म देश के लिए जो उपयोगी कार्यक्रम है वो हाथ में लिया गया है, PM धारा। ये रिन्यूएबल एनर्जी को इवैक्यूएट करने के लिए जो ग्रिड चाहिए, स्मार्ट ग्रिड जो चाहिए, उसका प्रोग्राम है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने MSP में बढ़ोतरी के निर्णय को किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे अन्नदाता किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा और कृषि क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस निर्णय से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम होगी।
2: आज का पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसमें बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जारी किया गया है। उद्देश्य है कि 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता के लक्ष्य के अनुसार भारत की बिजली की 50% मांग को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाए।
0: अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने राज्य में कुशल युवा कार्यक्रम डिजिटल मित्र को संशोधनों के साथ लागू करने की भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में श्री चौधरी ने स्थल मार्ग से पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया, नौतन और योगापट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामुदायिक किचन और राहत शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज और सारण जिले के निचले इलाकों में बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी की तेज धारा के कारण दो नई जगहों पर भी चंपारण तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पूर्वी चंपारण के अरेराज में भी गंडक का रिंग बांध टूट गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम बघा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज में क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत के कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर रिंग बांध में रिसाव हो रहा है। शीतलपुर में रिंग बांध ध्वस्त होने की भी खबर है। एक रिपोर्ट।
3: गंडक नदी में तेज बहाव के कारण बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में आज रिंग बांध ध्वस्त हो गया। इसके कारण शीतलपुर, फैजुल्लाहपुर, नरवार, बहरामपुर सहित कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि अन्य स्थानों पर तटबंधों की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है।
4: मुख्य तटबंध से थोड़ा दूर है, ये रिंग बांध है। यहाँ पे कल हम लोग के द्वारा भी रात में इंस्पेक्शन किया गया था, थोड़ा सीपेज था, लेकिन अचानक से आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये टूट गया है। और इसको जो है और फर्दर ये ना टूटे इसको कंटेन करने के लिए यहाँ टीम अभी लग गई है और हम लोग इसको कंटेन कर देंगे। मेन बांध और इस बांध के बीच में भी और कुछ बांधे हैं, उसको भी हम लोग वहाँ पे प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। फोर्स मजिस्ट्रेट सबकी डेपुटेशन होगी ताकि उसकी सुरक्षा हम लोग निरंतर करें।
3: जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर लगाए हैं। सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही मेडिकल सहायता भी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश कुमार तिवारी।
0: सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने आज अमनौर, तरैया और पानापुर में तटबंधों पर रिसाव स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इधर तटबंध और नदी के बीच फंसे लोगों को एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली, शेखपुरा और जहानाबाद में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। 4 अक्टूबर से मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इधर देश के अधिकतर भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है स्टार्टअप इंडिया पर एक रिपोर्ट।
6: किसी नए विचार को कारोबार का रूप देना आसान नहीं होता। पूंजी, मार्गदर्शन और सही अवसर हर कदम पर जरूरत होती है। स्टार्टअप इंडिया ने ऐसे ही उद्यमियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल का मकसद था देश में नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के लिए मजबूत माहौल तैयार करना।
7: आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया, हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd largest स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है।
6: अब इसका असर आंकड़ों में भी दिखाई देता है। वित्त वर्ष 2025-26 में 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई, किसी एक वित्त वर्ष में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 31 मार्च 2026 तक देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2,23,000 से अधिक हो गई। इन स्टार्टअप से 23,36,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। इन आंकड़ों के पीछे ऐसे युवा उद्यमियों की कहानी भी है जिन्होंने मदद मिलने पर अपने विचार को कारोबार में बदला। ग्रीन स्टार प्राइवेट लिमिटेड के चंदन कुमार को 20 लाख रुपए का सीड फंड मिला जिससे वो अपने स्टार्टअप को खड़ा कर सकें।
8: मेरा नाम है चंदन कुमार और मैं हूँ फाउंडर ग्रीन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। हम लोग एक पंप ऑटोमेशन का प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हम लोग इस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे थे तो हम लोगों को फंड का जरूरत था, तो हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमें 20 लाख का फंड मिला और उस फंड को यूटिलाइज करके हम लोगों ने प्रोडक्ट को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद उसे सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च किया। आज हमारा प्रोडक्ट जो है 1000 से ज्यादा जगहों पे सक्सेसफुली चल रहा है।
6: चंदन की कहानी अकेले नहीं है, देश में ऐसे हजारों युवा हैं जिन्होंने अपने विचार को कारोबार में बदला है। स्टार्टअप इंडिया ने इस बदलाव को एक मंच दिया है जहां नए विचार अब नए कारोबार की नींव बन रहे हैं। आकाशवाणी के लिए सत्यम कुमार की रिपोर्ट।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य में टीबी के संभावित मरीजों की पहचान के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक लगभग 3.5 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है।
9: हमने करीबन 3.5 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, जिसमें 3,97,000 को टीबी चिन्हित पहचान किए गए हैं और हम उनका इलाज करा रहे हैं और निरंतर स्वास्थ्य विभाग लगा है, उनका इलाज हो रहा है। आगे भी आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टीबी उन्मूलन के लिए हम लगेंगे, जो भी संसाधन हमारे विभाग के पास है उन सबको हम उपलब्ध कराएंगे।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बैठक में भाग लिया। जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया है। इन आंदोलनों की शुरूआत 2 अक्टूबर से होगी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में समीक्षात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्री चतुर्वेदी ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच AI आधारित सोच को सीमित करने और विषय वस्तु के प्रति क्रिटिकल सोच विकसित करने की पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू की गई है। कुलपति ने बताया कि परंपराओं, भाषा और ज्ञान के साथ समन्वय और आपसी संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में ज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए विशेष पहल कर रहा है। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वाराणसी में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। सहरसा के कुंवर देव को टीम का कप्तान बनाया गया है। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश की 6 टीमें भाग ले रही हैं। जापान के आईची नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 7वें स्थान पे पहुंच गया है। औरंगाबाद जिले के आंजन थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचरुखिया जंगल के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय पुलिस की जांच अभियान के दौरान 2 शक्तिशाली IED बम बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित ढंग से इन बमों को विनष्ट कर दिया। शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने सदर प्रखंड अंतर्गत मेहूस में सरस्वती विद्या मंदिर आदर्श विद्यालय का दौरा किया। जिलाधिकारी ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं से संवाद किया। रोहतास जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे चिकित्सा आपके द्वार अभियान में 40 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में जिले में नागरिकों की विशेष डिजिटल स्वास्थ्य पहचान आभा ID निर्माण कार्य को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। जहानाबाद के जिलाधिकारी चिरिंगबाई भूटिया ने आज जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सीवान के जिलाधिकारी विजय प्रकाश और पुलिस अधीक्षक भरत सोनी ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों समेत रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। राज्य मंत्रिपरिषद ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की। गंडक नदी में तेज बहाव के कारण पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण में कई तटबंध क्षतिग्रस्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। और अखिल भारतीय दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम घोषित। सहरसा के कुंवर देव को मिली टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 98 527 88 291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84 28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं, अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा, अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत, हंसत रही मुस्कुरात रही, नमस्कार राम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right.

0: मेरी दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: तू जो है,
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
15: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
17: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
17: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
17: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
18: प्रसाद क्लिनिक।
19: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
18: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
19: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
8: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
9: विवाहित आवास परियोजना MAP महानिदेशालय मुख्यालय DGMAP में अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए 4 कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 65 वर्ष है। समेकित पैकेज लगभग ₹50,000 प्रति माह दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.dgmap.gov.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में सिमुलेटर इंजीनियर ग्रेड 1 का एक पद रिक्त है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है igrua.gov.in। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में प्रशासनिक अधिकारी सह लेखाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पात्रता की शर्तों, सेवा की शर्तों, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि का विवरण राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है www.nin.pune.ayush.gov.in। लोकसभा सचिवालय में संविदागत आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स को पैनल में शामिल करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार, राज्य विधानसभा सचिवालय, स्वायत्त निकाय, केंद्र अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और स्थानीय निकायों के पात्र गैर आधिकारिक भारतीय नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स को पैनल में शामिल करने के लिए भाषाएं हैं संथाली एक रिक्ति, मराठी और उर्दू एक एक रिक्ति। अधिक विवरण और निर्धारित आवेदन पत्र के लिए देखिए वेबसाइट sansad.in/is.recruitment। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में फोरमैन इलेक्ट्रिकल का एक पद रिक्त है, इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम और शर्तों, आवश्यक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देखिए 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO आयोजित कर रहा है वॉक इन साक्षात्कार। 5 रिक्तियां हैं, पद है मैकेनिकल इंजीनियर का। दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा सवेरे 9:30 से 11:30 बजे तक और दस्तावेज सत्यापन के बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तिथि तय की गई है 6 अक्टूबर 2026 और 7 अक्टूबर 2026। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय आमंत्रित कर रहा है अपर श्रेणी लिपिक के पद के लिए आवेदन। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान और अन्य आवश्यक शर्तों और निर्देशों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट rdsdetelangana.dgt.gov.in।
8: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
10: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है, माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
16: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
17: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
16: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
17: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
18: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
18: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: 1566.3 मीटर अर्थात 819।
1: नमस्कार, केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तेलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
2: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
2: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
5: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
6: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
7: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
5: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
8: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
1: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
9: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
1: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
10: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पैसे पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग। समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
13: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
12: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
13: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
12: कहाँ?
13: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
14: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
15: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
14: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
15: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
14: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
15: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95 999 27 982।
16: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
15: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
16: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
15: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
16: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565।

0: 9956536 या 9956597902।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गंडक नदी का जमींदारी बांध टूटा, बैकुंठपुर के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। 10 साल के एक छात्र की हत्या कर शव को दाहा नदी में फेंका, पुलिस जांच में जुटी। 216 लीटर शराब के साथ 5 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कचरा प्रबंधन को लेकर स्वच्छता कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में विजेता टीम को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज सुबह सुबह बैकुंठपुर क्षेत्र से एक बुरी खबर आई, गंडक नदी का जमींदारी बांध टूट गया। लगातार नदी के दबाव के कारण इस बांध के टूटने से लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और लोग सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मोर्चा संभाला। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह, अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी लोगों ने जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में मोर्चा संभाला। NDRF की टीम को तैनात किया गया। राहत और बचाव कार्यों में जो लोग भी पानी से घिर गए और घरों में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाने लगा। वहीं 5 स्थानों पर सामुदायिक रसोई का संचालन भी देर शाम तक शुरू कर दिया गया, जिसमें रामपुर टेंगराही स्थित WPO के समीप, जगीरी टोला के मुंगारहा मध्य विद्यालय, मेहंदिया के हीरा पाकड़ स्थित शिव मंदिर के पास और कटघरवा के रामनगर तथा राजवाही में नितेश की दुकान के समीप सामुदायिक रसोई का संचालन शुरू कर दिया गया है। यहाँ प्रभावित लोगों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बांध टूटने के बाद पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने पूरे स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए कहा।
9: पिछले 3 दिन से ही जिले में पेट्रोलिंग चालू कर दी गई थी, पानी का लेवल बढ़ते ही, और चौकीदार से लेकर के हमारे सीनियर ऑफिसर्स तक सभी लोग थाना अध्यक्ष तक मूव कर रहे हैं ताकि तटबंध पर किसी तरह की समस्या ना आए। लोगों का भी, गोपालगंज की जनता का भी और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं उनका बहुत अधिक सहयोग भी मिल रहा है। वो भी कष्ट की स्थिति में है लेकिन फिर भी अपने आवश्यक संसाधनों से जिला प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं। कई ऐसी लोगों के सामने संज्ञान आए हैं जहाँ पर लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद की और हम लोग भी घूम रहे हैं। पुलिस की भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, पेट्रोलिंग पार्टी अलग से बनाई गई है। अगले 4 दिन तक लगातार यहाँ पे फोर्सेस का मूवमेंट रहेगा जब तक कि पूरी तरह पानी नहीं निकला। पानी की स्थिति अभी बेहतर हुई है, पानी अब कम होना चालू हो गया है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10 से 12 घंटे में वाटर लेवल डाउन होगा जिससे जो लोगों को भी असुविधा हो रही है। अभी लोगों को ये सलाह भी दी गई है और लोग मूव भी कर रहे हैं, जो ऊँचे स्थान है खास करके बांध पर, बांध पर लोग मूव किए हैं अपना अपना सामान लेकर के। उन्हें आवश्यक सुविधाएं और कम्युनिटी किचन चालू हो गई, वहाँ पर जो भी सुविधाएं दी जानी है, पॉलिथीन वगैरह, कम्युनिटी किचन सब चालू हो चुका है और हम लोग भी घूम रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना रहे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर लोगों से मिलकर मुलाकात

0: करके सभी व्यवस्थाओं का हम लोग जायजा ले रहे हैं।
1: अभी जैसा आप लोगों को पता होगा, सुबह ही 7 बजे के पहले ही यहाँ सीतलपुर में तटबंध टूट गया था। वो जमींदारी बांध था, एक्चुअल तटबंध जो है वो थोड़ा पीछे है, तो उसके कारण जो पानी का बहाव निचले क्षेत्रों में आ गया है, 4 पंचायतें हमारे प्रभावित हुई हैं। वहाँ हम लोगों ने इमीडिएटली कम्युनिटी किचन चालू कर दिया है। लोगों को जो ऊँचे स्थल है वहाँ पर जाने के लिए सलाह दी गई है, लोगों को ले के भी जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है, एक पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड टीम वहाँ पर लगी हुई है और लोगों को रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। मेडिकल टीम भी है, मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन भी चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी भी समस्याएं लोगों को ना से कम हो। और एक अच्छी बात यह है कि पानी का जो लेवल है धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो गया है और जैसा कुछ हाईकोर्ट वाले एरिया है वहाँ पे तीव्र गति से अभी तक 45 सेंटीमीटर पानी जो हाईएस्ट लेवल था उससे डाउन हो चुका है। तो संभवतः यहाँ भी 5 से 6 घंटे बाद ये लेवल पानी का डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लोगों को थोड़ी राहत उससे मिलेगी और निचले स्तर से पानी निकलना चालू हो जाएगा।
2: 70 घाट सड़क पर भी पानी पड़ गया।
1: अभी हम लोग यही 70 घाट सड़क पर हैं, यही जो पानी अभी ओवरफ्लो हो गया है, तो रोड अभी स्थिति में है। अभी आवागमन को हम लोग कंट्रोल करेंगे क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। 5 से 6 घंटे में ये पानी का भी फ्लो कम हो जाएगा, तब फिर लोग आराम से सुरक्षित तरीके से आ जा सके।
3: आज मीरगंज के महैचा से भी एक बुरी खबर आई। यहाँ 24 घंटे पहले से लापता अंकित कुमार नाम के एक 10 साल के छात्र का शव दाहा नदी से बरामद हुआ। मृत छात्र महैचा गांव के मनोहर शाह का पुत्र बताया जा रहा है। घटना के बाद अंकित के परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि अंकित मेला देखने के लिए घर से निकला था और लापता हो गया था। 24 घंटों से लगातार परिजन इसे ढूंढ रहे थे, इसी बीच दाहा नदी से इसका शव मिला। इसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। इस घटना को लेकर अंकित की माँ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
4: नहा के बाजार में कहा था कि मम्मी रे हम आवो तनी मेला में से खोज के उसके खा के, तो हम कहीं जो हल्दी वही है। 11 बजे हमारे बाबू गायब हो गए बड़े, न लाठी से न मार गया हमारे बाबू के फंस लगे के मुँह हाथ दिल बड़ सी हुआ पड़ा तो देखे नहीं हमारे बाबू के चप्पल अथी में रहा नदी में एगो बाना पड़ल है, देखो तनी हमारे बाबू मर गए बड़े नहीं है तो हमारे बाबू के ध्यान लगे चप्पल वही पानी में रहला एगो रहला बनवा पर 11 बजे से खोजत आनी सन 1 बजे से हम खोजत खोजत रात हो गई।
5: 11 बजे तो निकल बना है।
6: पुलिस में सूचना नहीं देते आप लोग? पुलिस में
5: मेला में तो मेला में हो लड़का अभी देख लो तब हम कोनो कार्रवाई।
7: क्या नाम था लड़के का?
4: अंकित कुमार।
7: कितने साल का था?
4: 10 साल के बाद।
7: कौन से क्लास में पढ़ता था?
4: 2 में रहता।
7: 2 में पढ़ता।
3: आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाटवा मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा। इस गाड़ी में 5 महिलाएं और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, 5 महिलाएं सवार थीं। गाड़ी के अंदर 216 लीटर से अधिक विदेशी शराब रखी गई थी। उत्तर प्रदेश की तरफ से यह गाड़ी आ रही थी। भाटवा मोड़ के पास पुलिस ने इसे दबोच लिया। उत्पाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर से 216 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इसके बाद 5 महिला और एक ड्राइवर पुरुष सहित आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इन सभी लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं जादोपुर की रहने वाली हैं और पुलिस इनके दूसरे आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 थीम में से थीम 2 स्वस्थ गांव के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला पंचायत संसाधन केंद्र गोपालगंज में 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड कुचायकोट के पर्यवेक्षकों एवं पंचायत स्तर पर कार्यरत WPU कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ गांव के निर्माण में विभिन्न हितधारकों के रूप में LSBA कर्मियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रयासों के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायतों के निर्माण को बढ़ावा देना था। प्रशिक्षण के दौरान स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा संग्रहण एवं सुरक्षा उपायों तथा ग्रामीण परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखने के संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था, इसमें विजेता टीम को आज सम्मानित किया गया। मिंज स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में 100 मीटर बालिका अंडर 14 आयु वर्ग में माझा की शिल्पी कुमारी, बालक वर्ग में पंचदेवरी के अभिषेक कुमार कुशवाहा, 100 मीटर बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में थावे की लूसी कुमारी, बालक वर्ग में गोपालगंज के आदित्य कुमार, 100 मीटर बालिका अंडर 19 में गोपालगंज की दीक्षा पाल, बालक में गोपालगंज के विशाल कुमार ने विजय हासिल किया। वहीं 200 मीटर अंडर 19 में हथुआ की रानी खातून बालक में गोपालगंज के विशाल कुमार, 400 मीटर बालिका अंडर 14 आयु वर्ग में गोपालगंज की गरिमा कुमारी और बालक वर्ग में पंचदेवरी के फरहान अंसारी, 400 मीटर बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में हथुआ की अनामिका कुमारी, बालक में भोरे के निखिल कुमार, 400 मीटर बालिका अंडर 19 में बैकुंठपुर की रिंकी कुमारी और बालक वर्ग में बरौली के जहीर बैठा ने जीत दर्ज की, 600 मीटर में बालिका में 14 वर्ष आयु में गरिमा कुमारी और बालक में पंचदेवरी के अभिषेक कुमार कुशवाहा, 800 मीटर बालिका अंडर 17 में हथुआ की अनामिका कुमारी और बालक में भोरे के विवेक चौहान, 800 मीटर बालिका अंडर 19 आयु वर्ग में अफरीना खातून जो थावे की है, बालक में बरौली के शहबाज अली, 1500 मीटर बालिका अंडर 17 में पंचदेवरी की शिवानी कुमारी, बालक में गोपालगंज के नीतीश कुमार, 1500 मीटर बालिका अंडर 19 में रीता कुमारी जो गोपालगंज की है और माझा के समीर अली बालक हैं, 3000 मीटर बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में गोपालगंज की पूजा और बालक वर्ग में गोपालगंज के नीतीश कुमार, 5000 मीटर अंडर 19 आयु वर्ग में माझा के समीर अली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता छात्रों को सम्मानित किया गया। अब इन्हीं छात्रों में से राज्य स्तरीय टीम का चयन भी किया जाएगा। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मिथिलेश यादव पिता वीरेंद्र चौधरी साकिन पिठौरी थाना थावे का रहने वाला है। आज इसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसमें हत्या के प्रयास, SC/ST एक्ट और NDPS एक्ट तथा शराब की तस्करी में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उत्पाद पुलिस ने गोपालगंज शहर के बंजारी में शिव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर एक कार को पकड़ा। इस गाड़ी से 315 लीटर शराब मिली। इसमें उत्तर प्रदेश तमकोही राज्य के रहने वाले रईस अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थावे थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक प्राथमिकी आरोपी को भी गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ गद्दी, जो स्वर्गीय ललन गद्दी का पुत्र है और नूरा हत्ता थाना बड़हरिया जिला सिवान का रहने वाला बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गंडक नदी का जमींदारी बांध टूटा, बैकुंठपुर के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। 10 साल के एक छात्र की हत्या कर शव को दाहा नदी में फेंका, पुलिस जांच में जुटी। 216 लीटर शराब के साथ 5 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कचरा प्रबंधन को लेकर स्वच्छता कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में विजेता टीम को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
10: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
11: सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 6300 या 70 70 75 4200, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
17: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
19: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
20: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
21: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-16-65-96। और ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो पुराने गाने के फरमाइश करें ताकि आपकी भी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, हाँ गाने का नाम मुख्य देंगे ताकि आप जो गाने फरमाएं उसी गाने को हम सुनाएं। यदि आप क्लियर नाम बताते हैं तो हमें आपकी फरमाइश पूरा करने में सहूलियत मिलती है, और बीच में से गाने की फरमाइश करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा क्या बहुत हो जाती है, पता नहीं चलता है कि कौन गाने हम सुनाएं आपको। और जब प्ले होता है तो पता चलता है, आप लोग बताते हैं कि गाने ये नहीं दूसरे थे। सो आपसे कहेंगे कि आप क्लियर बताएं कि कौन से गाने सुनने हैं ताकि हम आपकी फरमाइश, आपके फरमाए गए गाने को सुनाएं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं मायके चली जाऊँगी, तुम देखते रहियो। जय किशोर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं भिवाड़ी से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और हो सके तो आप ही के गाने का साथ इस कार्यक्रम की आगाज होगी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि ओम प्रकाश गुप्ता पूना महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बिल्कुल आपके उम्मीद के अनुसार मस्त स्वस्थ हूं और आप सभी के बीच उपस्थित हूं कार्यक्रम के साथ। अब रही बात गाने की फरमाइश की, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आप बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, निशा डुमड़िया से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्कार प्रणाम भाई रवा के सोनू जी कैसे हैं, तो बिल्कुल हम बढ़िया हैं। अपना बताएं कि आप कैसे हैं। और फिलहाल मैसेज तो आते जा रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं, फिर गाने हम प्ले करते हैं और उसके बाद से जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचेंगे उस मैसेज को शामिल करेंगे। फिलहाल गाने के साथ एंजॉय करते हैं हम सभी जय किशोर प्रसाद जी के रेडियो रमझिम 94.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और इसी गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जैसे अभी आप गाने सुन रहे थे इसी कैटेगरी के गाने की फरमाइश करना है, पुराने ओल्ड इज गोल्ड या 90s की। तो यहाँ पे कुछ और मैसेज पहुँचे तो मैसेज को शामिल करते हैं, अपना भी मैसेज पहुँचाए हमारे पास और गाने एंजॉय करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, यही गाना है, सुना दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आरती कुमारी नवादा से जुड़ी हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक की इतनी बुरी लत लगी है, आज पड़ोसी ने एक्सरे दिखाई तो मेरे मुंह से नाइस पिक निकल गया और अब पड़ोसी खर्चुल लेकर ढूंढ रही है। ओह, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, आप कैसे हैं? तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं राहुल जी हथुआ से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई, जय राम जी के, मैं ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, क्या हाल चाल है, आज मुझे एक गाना सुना दीजिए। गाना सुनना है फिल्म प्रोफेसर से, गाने का बोल है खुली पलक में झुट्टा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल, हाय मरना भी मुश्किल। ये गाना मैं आपको और वीरेंद्र गुप्ता को और अपने पूरे परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, मिलन मूवी से सॉन्ग है, आने वाली है मिलन की घड़ी। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। निशा पांडे, ओहो डेडिकेटेड नामे दी हैं और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती। आप बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, माय नेम इज साझा विलेज मोगल ब्रिचा से। तो बिल्कुल साझा, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बहुत दिन के बाद। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो नमस्ते सर, हाउ आर यू। और इस मैसेज को करती हैं सुनीता। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल चाल है, और मैसेज करते हैं राघव जी। ओहो लिखा गया है कि क्या हाल चाल है राघव जी। तो राघव जी तो अभी जुड़े नहीं हैं, सुन रहे होंगे तो ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल इस मैसेज को किए हुए हैं अपना नाम इसमें तो नहीं बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है रंजन जी। तो आप अपना भी नाम बताएं कि आप फिलहाल किस नाम से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश हम सभी। ओम प्रकाश गुप्ता जी के और महाराष्ट्र से गाने के फरमाइश किए हुए हैं, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रेम 6.4 FM पे। और यदि आप भी इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। इस गाने की फरमाइश करती हैं आरती कुमारी नवादा से, और गाने का बोल देती हैं, ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनो भैया बजा दो गाना नाकाबंदी। बिल्कुल बजाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर ले, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं आप, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी शो से जुड़ गई हूं, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, रोशनी कुमारी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि वाओ माय फेवरेट सॉन्ग एंड लजवाब स्टार्ट टाइम, मैं यही सॉन्ग सुनी थी। और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते सर मैं मीनू हीरा पाकड़ से, और हमें एक डोली सजी एक अर्थी सजी गाना सुनना है। तो इस गाने को तो हम नहीं सुना सकते हैं क्योंकि ये गाने निर्गुण हैं और निर्गुण इस समय नहीं सुना सकते हैं। साधारण गाने की फरमाइश करें, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नहीं बजाइएगा क्या। तो बिल्कुल आपके गाने तो हम बजा चुके हैं। और अभी मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर, आपको धन्यवाद है रेडियो रमसम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बिल्कुल आपके मैसेज हम एक एक करके शामिल करेंगे। फिलहाल आपके मैसेज देखने के बाद से आपकी फरमाइश और मैसेज शामिल करने की कोशिश रहेगी। आगे मैसेज पहुंचे हुए जो पहले से, और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे राघव जी जुड़ चुके हैं और लिखे हुए हैं कि रेडियो रिमझिम की महफिल सजे, हर दिल में प्यार की खुशबू बसे, आरजे की आवाज़ जब कानों में आए उदास चेहरा भी मुस्कुराए, दोस्तों के मैसेज से महफिल गुलजार रहे, रेडियो रिमझिम यूं ही दिलों के पास रहे। ओम साई टेलर राघव जी की तरफ से। तो आप बन रहे हमारे साथ और आपकी एक मित्र साय जुड़े हुए हैं रंजन जी। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे ब्रिज बिहारी पांडे जी की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, बोल है खुली पलक में झूठ गुस्सा बंद, पलक में प्यार जीना भी मुश्किल।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे ब्रिज बिहारी पांडे जी, राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और कमल के शौक थे। उस गाने के माध्यम से कहा जा रहा था, आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे गुलाम हुसैन की, और इनके तरफ से कुछ लाइन भी लिखा गया है, लिखा गया है कि सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है, बस यही सोचकर हम आए थे तेरे शहर, पर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। हेलो हाय, क्या हाल चाल है? सुनो भैया, गुलाम हुसैन इंदरवा से मुझे गाना सुनना है, गाने का बोल उड़ जाई बुए मैना, और डेडिकेट मशरूम कैसर जुनेद कमरान अरमान नौसाद फरहान जयदीप आयुष प्रिंस लकी शमीर शाकिब रुबीना ब्यूटी हिना गुड़िया सलदा गुलशन सबीना और यास्मीन सलेहा रोशनी और आफरीन को सुनवाना चाहते हैं मेरे को भी, तो चलिए हम भी सुनेंगे और आगे कुछ मैसेज पहुँचे हैं और मैसेज देख ले फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। लिखा गया है कि हाय सुनो सर, मैं सुरभि फ्रॉम गोपालगंज नवादा से, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, कहते हैं कि मैं भी जुड़ गई हूँ बिल्कुल, और साथ में खड़ूस एक तृप्ति भी जुड़ी है, तो आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि भैया आप मेरा गाना, तो बिल्कुल आपकी भी गाने हम बजाएंगे, आप स्थिर हैं तभी तो आपकी नंबर आएगी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मैं मिन्नू और हमें कौन दिशा में लेके चला रे बुटू, यह गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल बने रहे हमारे साथ, अगले गाने की फरमाइश हम गुलाम हुसैन की प्ले करते हैं और सुनते हैं, काफ़ी प्यारा सॉन्ग है। रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे

रेडियो एम जी एम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। इस गाने की फरमाइश करती हैं निशा भारती, और गाने का बोल देती हैं आने वाली है मिलन की घड़ी। डेडिकेट करती हूँ आपको एंड सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर, बतरदे वाली, शिल्पी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, साहिदा अंसारी, और प्यारे प्यारे और लिसनर को, साथ में भारती मैम एंड मनोरमा मैम को भी। तो बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचे हुए कुछ देखा जाए, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, और सभी को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है तेरी तमन्नाओं की तकदीर को शावर, दो लिंक भेजे हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है लेकिन समय तो बहुत कम है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, थैंक्स भैया मुझे सुनाने के लिए, मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग सुनो भैया, प्यार से आपको थैंक्स। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए, और आगे बढ़ते हैं अगले गाने के फरमाइश भी प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी

0: For more entertainment, log.
1: रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और अभी हम सभी गाने सुन रहे थे निशा भारती की फरमाइश आने वाली है मिलन की घड़ी, और अगे मिसेस पहुंचा हुआ है। अगले गाने की फरमाइश पूरी करते हैं, यहाँ पे गाने की फरमाइश करते हैं नंदन राहुल जी। तो चलिए राहुल जी, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, नकाबंदी। और हम इसे हथुआ से पहुंचाए हुए हैं, थोड़े सी टाइपिंग ऐसे किए हुए हैं कि ध्यान देना पड़ रहा है कि क्या लिखे हुए हैं। तो फिलहाल हम बहुत सारे आप मैसेज में लिखे हुए बातें तो उसको हम नहीं शामिल कर पा रहे हैं, तो आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमशन सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, ओहो ये बात है, वैसे कब आने वाली है मिलन की घड़ी मुझे सुनाने के लिए, दिल से थैंक्स सिस्टर। और मैसेज करती हैं रोशनी कुमारी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि सर प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले कर देंगे इसके बाद हो सके तो। ओहो चलिए आपके गाने प्ले करेंगे, और गाने प्ले करते हैं फिलहाल हम राहुल जी की, क्योंकि समय भी समाप्ति के करीब है।

जिम 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि धन्यवाद भाई, छोटा फोन है और खराब है तो कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश हम प्ले कर दिया। हम बताते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, 3 लाइन लिखना है, 3 लाइन हमारे पास भेजते हैं तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुँचे हुए तो आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा गया है कि सुपर डांसिंग सॉन्ग और मैसेज करते हैं निशा भारती। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है मंकी सानी भैरवगंज चंपारण से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल आप भी बन रहे हमारे साथ। अंतिम गाने प्ले होने वाली है और कार्यक्रम भी समाप्त होने वाली है, थोड़ी सी लेट कर दिया। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आज तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कल कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सर प्लीज़, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। और आपने थोड़े नए गाने की लिस्ट से गाने की फरमाइश किए हैं तो आप आगे से ध्यान देंगे कि आगे जब भी गाने की फरमाइश करें तो पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी भी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। फिलहाल आपके गाने के साथ इंजॉय करते हैं हम सभी और हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो रमझिम 94.4 FM, जो हमेशा कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब से कुछ ही पलों में सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये, चने के लिए 83 रूपये और गेहूं की कीमत में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में

0: मेरे किरदार को जाने का हो।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: हमने के मिलन अब नहीं।

0: नइखे हो सकत, कुछ मजबूरी बा जेकरा कारण हम तोहसे ना मिल सकीला।
1: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज आंसू पोछत अनि एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 94.4 FM में।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं मनीष राजा फाइनर कुशीनगर से बोल रहा हूँ।
2: जी, कैसे हैं आप?
1: हमें बताइए।
2: जी, हम लोग भी अच्छे हैं।
1: मौसम का क्या हाल है?
2: अभी तो मौसम इधर काफी सुहाना मौसम बना हुआ है।
1: हम लोग की तरफ हुआ है मौसम सही। अभी तो मैं पंजाब में हूँ।
2: जी,
1: इधर भी मौसम सही हुआ है, बादल घेरा हुआ है, बारिश का मौसम है।
2: अच्छा, चलिए बढ़िया है। कौन सा गाना
1: सब बताइए?
2: और सब तो बढ़िया है।
1: गाना सुना है, सुना दीजिएगा।
2: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
1: जान पिक्चर का गाना सुना दीजिए, हिंदी पिक्चर का।
2: और गाने की बोल
1: जान मेरी जान।
2: और गाना किसी को सुनवाना भी है
1: तो पहले आपको और पूरा रेडियो रंजन सुनने वाले करता हूँ।
2: जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: कब तक बजेगा मैम
2: ये? आपको आज शाम को 5 से 7 के बीच बज जाएगा, नहीं तो कल शाम को 5 से 7 के बीच बजेगा।
1: पहला कॉल है मेरा।
2: जी जी, पहला ही कॉल है।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, नाम बता दीजिए पहले अपना।
1: मेरा नाम जगत प्रसाद है।
0: और कहाँ से है आप?
1: गोपालगंज मठिया से।
0: जी, तो कौन सा गाना सुनना है आप?
1: कांटे बजेंगे फिल्म का प्यार नहीं करना जहां तारा काटा है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: सबसे पहले आपको सुनाना चाहते हैं।
0: जी,
1: जितना रेडियो सारी आदमी को सुनाना चाहता है।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: कब तक हो जाएगा जी
0: ये? आपको आज शाम को नहीं तो कल शाम को सुनने को मिलेगा, 5 से 7 के बीच में।
1: आपको समाचार ठीक है जी?
0: जी जी, मेरा समाचार ठीक है, आप ठीक है ना?
1: हाँ जी, हमारा भी ठीक है
0: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: हाँ जी ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 91.4।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: कन और अपने भाषा की पहचान। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
5: नमस्कार मैडम।
6: जी नमस्कार,
5: बोल रहे हैं हम हाथा माठिया से बोल रहे हैं मैडम।
6: जी नाम बताइएगा अपना।
5: मंतोष माझी।
6: जी क्या हालचाल है आपका?
5: ठीक है, अपना बताइए।
6: जी हम सबका भी ठीक है।
5: फरमाइश करना था एक मैम।
6: बिल्कुल बताइए, कौन से गाने की फरमाइश है?
5: हिंदी में कोई अपना अच्छा गाना लगा दीजिए ना, देवफाई वाला कोई।
6: हिंदी में?
5: हिंदी में जो आपको अच्छा लगता हो।
6: अच्छा, तो हम लोग तो हमेशा अपनी पसंद के गाने आप लोगों को सुनाते रहते हैं।
5: मैं चॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब साइड सॉन्ग कोई अच्छा से लगा दीजिए।
6: जी जी कोई बात नहीं, और गाना आप किसी को सुनवाएंगे भी?
5: जी
6: बिल्कुल बता दीजिए।
5: नाम नहीं बता सकते हैं ना।
6: अच्छा जी, चलिए कोई बात, तो आपका गाना प्ले कर दीजिए।
5: कोई अच्छा सॉन्ग लगाना की साइड सॉन्ग की उसके पास तक ले चला जाए।
6: जी जी बिल्कुल, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: एक मैम पैसा देना था, एक दोस्त लो है।
6: जी जी बिल्कुल,
5: सोनू और मनु हाथा मठिया से दोस्त लो है, थोड़ा सा ये भी डाल दीजिएगा, उन लोग भी सुन ले मेरा साइड सॉन्ग।
6: जी बिल्कुल,
5: धन्यवाद मैडम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: हेलो
0: जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं बस।
0: तो कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए आप।
1: मैं हर बार हुआ हूँ
0: जी। और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: जी आपको, मनोरमा मैम को और जितने भी सुनने वाले हैं रेडियो डिवीजन में उन सभी को।
0: तो अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
1: मेरा नाम सुरभि है।
0: जी जी मालूम है, लेकिन आप बताएंगे तो सारे लिसनर को पता चलेगा ना कि किसकी फरमाइश है, इसीलिए बोले।
1: मैम प्ले कर दीजिएगा
0: जी। गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
5: Break के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है Hello My Choice के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम।
7: जी नमस्कार,
6: हम रांची झारखंड से बोल रहे हैं।
7: जी नाम बता दीजिएगा अपना।
6: गोविंद
7: जी।
6: सब और सब सुनाइए, कैसे हैं?
7: जी जी हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है।
7: जी तो इसका टाइमिंग अभी शुरू होता है, 11 बजे से 12:30 के बीच में ये रिकॉर्ड होता है।
6: 11 बजे हम लगा रहे हैं तो बहुत दिन ट्राई किए, केवल व्यस्त बता रहा था, कॉल ही नहीं लग रहा।
7: हाँ हाँ, तो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं ना, इसीलिए।
6: आरती मैम बोल रहे।
7: जी जी
6: बहुत अच्छा लगता है शो रेडियो।
7: अच्छा जी, आप केवल इसी शो में जुड़ते हैं कि कोई और शो में भी जुड़ते हैं?
6: केवल हम रेडियो हर शो में जुड़ते हैं, लेकिन केवल रेडियो रिमझिम हम केवल सुनते हैं और कोई रेडियो चैनल नहीं सुनते हैं।
7: जी जी बस यही पूछ रहे थे, मतलब इसमें के सारे शो से आप जुड़ते हैं?
6: हाँ सारे शो में, थोड़ा मजबूरी है, हम थोड़ा क्या बोलेंगे, नेत्रहीन व्यक्ति हैं तो थोड़ा काम करने नहीं सकते हैं। इस कारण से कोई काम में नहीं रहता है, इस कारण से हमेशा सुनते रहते हैं।
7: कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आंखें नहीं है तो जिंदगी खत्म हो जाएंगी।
6: खराब लगता है लेकिन क्या करेंगे, बोर लगा है।
7: ये तो बात सही है।
6: तो गाना सुना दीजिएगा।
7: बता दीजिए।
6: फिल्म का नाम तो याद नहीं है लेकिन गाने का बोल है, रब ने भी मुझ पे क्या सितम किया है वाला।
7: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
6: पूरा रेडियो रिमझिम परिवार को, आपको भी और सभी को, जितना भी सुनने वाला है सभी।
7: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90।
6: कितना बजे होगा
7: ये? आपको आज शाम को 5 से 7 सुनने को मिलेगा, नहीं तो कल शाम को मिलेगा। जी
6: ठीक, धन्यवाद,
7: वेलकम।

0: जी बहुत स्वागत है आपका रंजन 94.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है
0: जी। तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
1: फिल्म मुगले आजम से सुनवा देंगे, प्यार की याद तो डरना।
0: और गाना किसी को डेडिकेट हुई है?
1: कुछ मित्र है हमारे, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन्द्र वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, तुकाराम जी है, धीरज रवाड़ी जी है और सभी साथी।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद।
0: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम, कैसी हैं?
3: जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
3: तो क्या हो रहा है अभी?
2: अभी कुछ नहीं, बैठी हूँ।
3: अच्छा, तो बता दीजिए आप कौन सा गाना सुनिएगा?
2: साजन साजन तेरे दुल्हन तुझको पुकारे आ जा।
3: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
2: आपको और जितने भी रेडियो रूम सुनते हैं सभी को।
3: जी जी, अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा।
2: मैं तुम्हारी फालतू से।
3: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4।

0: जी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम, हम लोग मठियाहाटा से बोल रहे हैं। लोग
1: जी नाम बता,
0: क्या है कि सभी लोग रेडियो में सुनते हैं, लोग हम लोग कार में सुनते हैं और ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करते हैं लोग, उसमें बहुत अच्छा सुनाई देता है एफएम, तो सोचे हम लोग भी कॉल करें सभी लोग का रिकॉर्डिंग देखकर।
1: हाँ जी,
0: हम मनु मौर्या बोल रहे हैं और मंतोष और सोनू को गाना सुनवाना चाहते हैं, सारे लड़कों को कर दो शादी बस एक को कुंवारा रखना, यही गाना बजा दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल बजाएंगे।
0: और ये कहाँ कब तक बज जाएगा?
1: ये तो आपको शाम को बजता है 5 से 7 और सेम रिपीट होता है सुबह में 9 से।
0: ठीक है मैडम, इन लोगों को सुनाना है और हम लोग शाम को कार में बैठेंगे।
1: जी जी, तो
0: ठीक है मैडम,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैडम,
1: वेलकम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, नमस्कार।
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
2: जी आपका भी स्वागत है कॉल लेने के लिए।
3: जी जी,
2: क्या हाल चाल है भारती जी?
3: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: हम भी ठीक है। मौसम कैसा है आज आपके साइड में?
3: मेरे यहाँ तो काफी सुहाना मौसम बना हुआ है,
2: बदरी छाया हुआ है,
3: हल्का धूप है,
2: लेकिन दिल्ली में तो बदरी छाई हुई है।
3: बारिश होने वाला है क्या?
2: अब देखिए, ऊपर वाले के कृपा होगी तो जरूर बारिश होगी, इतना पानी लेके आए होंगे तो। यदि दूसरे जगह ट्रांसफर होने वाला होगा तो कहाँ होगा, लेकिन चारों तरफ से बदल छाया है। सुबह से सूरज देव के दर्शन हुआ नहीं अभी तक, तो सब नाश्ता पानी सही से करके आई है?
3: हाँ, नाश्ता पानी तो हुआ है।
2: आज सोमवार है, आज सोमवार का एक हफ्ता हो गया। बीच में बोले थे ना कि आपको फलना दिन होगा, इसीलिए मैंने नहीं भेजा
3: जी।
2: आपकी बातों का सामान रखते हुए कदर किया आपको।
3: जी जी, कोई बात नहीं, आज प्ले होगा सबके गाने जिनके जिनके हैं।
2: तो हम नाश्ता पानी बढ़िया से करके आई है ना। आप नॉर्मल जी कहाँ बन गई?
3: काम में अपना
2: पूरा रिकॉर्डिंग
3: ना, अब हम शो शुरू करें ना, वहाँ के रिकॉर्ड करें।
2: मान लें कि 10:11:47 हो गया,
3: अब लास्ट कॉल ले।
2: अच्छा, बाद वहाँ का लेते रहें कि ना। अच्छा, वो दिन जो रिकॉर्डिंग भयल तो बाजन लिखे का है जी?
3: एक कॉल अभी रह गई बावे, हमारा पास रहे कॉल बावे अभी।
2: अच्छा जी, वे रोजाना तो हम सुनबे करी ले, लेकिन कहले की खाली मनोरमे जी आवता नहीं है, बीच में भारती जी आते नहीं थी, कहाँ भाग जाता?
3: ना आयल तो रहनी है, कल ही है, मतलब आज सुबह में भी बाजल हवे, में कॉलवा नहीं है, कैसे हमारे पास कॉल बाचल बाबे।
2: अच्छा, वो कहनी है कि हम कहाँ पता ना, हम के ना चोकर का बोरा में कहीं भुला गए?
3: ना चोकर के बोरा में नहीं थी।
2: अच्छा, ये वो गाना बाटे?
3: बिल्कुल बाटे।
2: बीचे बीचे बीचे लिखल हो जय हिंद ये राजा, ले ले ये टिकुलिया इन के राजा।
3: गाना सुनवाहू के बाद
2: सबसे पहले तो रघुगा बानी स्पेशल ब्रांड में मनोरमा जी, ओकरा बाद जे बाटे सोनू भाई बारन, कमरान भाई बारन, अहमद भाई और अख्तरी जी बानी, सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, नेहा जी और उकरा बाद शबीर अंसारी जी, मुस्तफा भाई बारन और जितना श्रोता गण और सबकी सहेली सुनाता लोग सब केहू के गाना सुनावल
3: गयी। और गाना प्ले करते हैं तब?
2: ठीक बाटे, नमस्कार
3: जी। नमस्कार,
2: फिर हम लोग मिलते हैं
3: रेडियो में कॉल करने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: दीदी,
0: नमस्ते।
1: क्या हाल है? मेरा
0: मेरा ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: भी बढ़िया है। कॉल लगा रहे हैं तो आप भी बस इतने भी बस हो रहे हैं, कॉल ही नहीं उठा रहे हैं।
0: नहीं, अभी जस्ट कटा है तो आपका कॉल आया तो रिसीव किए।
1: मेरे को लग रहा है कि अभी रिसीव नहीं हो पाएगा।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, लगेगा, लेट सेट तो लग ही जाएगा।
1: नहीं, कभी कभी थोड़ा सा पास लग जाता है, कभी कभी पूरा टाइम लग जाता है। और सब बताइए,
0: सब बढ़िया है।
1: थोड़ा कॉल भी फरमाइश नहीं, तो कॉल भी नहीं जुड़े थे फरमाइश में। थोड़ा मेरा गांव 5 दिन से लाइट नहीं था,
0: अच्छा,
1: 5 दिन से लाइट नहीं,
0: अभी लाइट आ गया है? तो
1: अभी लाइट आ गया है, अभी लाइट आ गया है।
0: आज रउआ हमके थोड़ी चीन है, ना ऐसा कोनो बात नहीं है।
2: सोनी दीदी बोला था नहीं, वो मनिया एकदम।
0: हाँ, आवाज बदल गई बा का?
2: आवाज बदल गई बा 5 दिन में।
0: नाइस।
2: मनोरमा दीदी कहाँ बनी?
0: मनोरमा दी काम में बानी अपना।
2: फरमाइश में जा दिले पर भेजन सब हमने संग के।
0: ठीक बा।
2: पहिल के बार भेजन सब बात है कि चाहे वेट मत
1: करो। चल रही है
0: तो आज अभी बता दी कौन सा गाना सुने लो।
1: आज हिंदी सॉन्ग बजा दीजिए।
0: बताइए कौन सा।
2: हाँ, ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: अच्छा,
2: जैसी रह जाएगी सखिया बेचारी।
0: ओहो,
1: चली ढेर रिसनो लो, होइलो पासान हो लो।
0: हाँ हाँ, चली लो। ठीक बा, तब गाना प्ले करता नहीं
1: सुना एक बार। सबसे पहले रहुआ के मनोरमा दीदी के सुने दीदी और पूजा रोडी एकदम झूल को सुनवाना है करिश्मा जी के।
0: तो गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रूम। ठीक बा,
2: बाय
0: बाय।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: हेलो।
4: हाँ नमस्ते मैडम
5: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
4: हमको गाना सुनना है।
5: बिल्कुल, नाम बता दीजिए अपना।
4: सुमन कुमारी बोलता नहीं था वैसे।
5: तो कौन सा गाना सुनना है सुमन जी आपको?
4: भोजपुरी गाना सुना सकते हैं?
5: बिल्कुल बता दीजिए।
4: जिंदगी जिए के मन बा बहिया तुहारे पकड़ के, यही गाना सुना है।
5: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
4: सबसे पहले आपको और जितना रेडियो सुनते हैं उन्हीं लोग को।
5: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
4: कब तक सुनाएंगे
5: ये आपको? आज शाम को नहीं तो कल शाम को मिलेगा सुनने को।
4: ठीक है।
5: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मनोरमा जी
0: ना भारती
1: भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बोल रहे हैं तो पहचान रही है?
0: थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़ से।
0: धर्मेंद्र तिवारी चंडीगढ़ से
1: जी।
0: अच्छा जी,
1: और सब बताइए?
0: और सब बढ़िया है, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं?
1: हम लोग तो काम में लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है।
0: अच्छा, चंडीगढ़ में भी बारिश हो रही है? चलिए बढ़िया।

श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं. नंबर है 8029994911. जी हाँ, 8029994911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल.
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में.
4: नमस्ते दीदी.
5: नमस्ते.
4: क्या हाल है?
5: हमारा हाल चाल ठीक बा. रुआ बताएं, रुआ कैसन बानी?
4: हम ठीक बानी. खाना
6: पंचमा मछली बना कर जाके खा ले.
5: बिल्कुल मछली तो, लेकिन हम ना खानी.
4: ना खानी
5: मछली ना खानी.
4: अच्छा ठीक बा, ना खानी तो हमारा छोड़ दे.
5: ना ना, जे खाला ओकरा खाए के चाहे, कोनो बात नहीं छे.
4: ऐसी खा ली चिकन.
5: हाँ वो सब चिकन थोड़ा खानी और खानी.
4: तो कौन जाइए अनका?
5: अच्छा जी, बिल्कुल आते बानी.
4: आए और सब ठीक बा?
5: और सब ठीक बा. तब हम
4: तो
5: गाना
4: तो चलिए बेरा
5: गाना सुने.
4: तो चलिए बेरा.
5: हाँ हाँ, सो चलिए. वैसे तो कहते हैं जल्दी से एक गाना बता दी, कौन सा गाना सुने?
4: हम गाना सुने रुकी गा के बता दी थोड़ा देर, रुक जाइए वेट करी. बता दी कोनो भी होटल याद नहीं थी पड़ा. जब गीतिए गाय कर ले तो याद ना पड़े लगे. नीलकमल सिंह के बजा दी जी टिकट रहुआ के रही और मनोरमा दीदी के और जितना सुनते हैं
5: चलिए ठीक
4: बाट्टू भैया के हमारे रही. ठीक बा
5: जी, रेडियो में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद.
4: नमस्ते दीदी.
5: नमस्ते.

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। जी नमस्ते जी, हमारे का हाल चाल ठीक बार वो बताए तो वो कैसा बानी। हेलो,
2: अब आवाज साफ जाता थे
1: जी,
2: तो पहचान ले ली
1: ना जी आवाज तर और अभी नहीं है पहचान में आओ हम के रोगा बता दी।
2: अब हम बताए।
1: हाँ हाँ बोली।
2: मेरा छोटा भाई विकास।
1: अच्छा विकास जी, कैसन बानी?
2: बढ़िया बानी। हमारे फोनो में रिचार्ज खत्म हो गया नू, यही सब।
1: आवाज थोड़ा चेंज लगा था, तबियत ठीक बा ना?
2: अरे दो चार दिन से थोड़ा तबियत गड़बड़ हो गया ना मैडम।
1: वैसे न कहते नहीं, आवाज थोड़ा बदल लगा था।
2: सर्दी खांसी बुखार उखार पूरा लग रहा एकदम।
1: मौसम चेंज भी तो होता।
2: मौसम भी चेंज होता थे।
1: ऐसे मौसम में ख्याल रखे तो पड़ेगा खुद को।
2: तब और सब गोपालगंज में बाढ़ और नानू आई
1: गोपालगंज में ना, मतलब और ये जौन नदी के साइड जौन बावे होने को और थोड़ा बहुत आयल बा।
2: अच्छा वो गंडक नदी जौन बाटे मंगलपुर मंगलपुर के तरफ ना। सब लोग के
1: हेलो
2: हेलो
1: आज पता नहीं कह रहा हूँ, आवाज कटकट के आओ तो थोड़ा।
2: हमारे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम। हेलो।
1: हाँ
2: अब आवाज जाता ना क्लियर? अच्छा तो वही गंडक नदी में 3.5 लाख पानी और छोड़ दिला ना वो नहीं। तब खाना वाना हो गया मैडम?
1: हाँ खाना हो गया।
2: हमरो तरफ बारिश भइल तो थोड़ा ठंडा एकदम सुहाना मौसम भइल एकदम। काम करे में अब सही लागत है एकदम। गर्मी भी नहीं खेत पूरा ठंडा एकदम कूल। पूरा मस्ती से एकदम काम करो एकदम।
1: चले तब तो और बढ़िया।
2: लेकिन आपसे बात करे खतरा निकाल ले ना। पहले की जब तक मन थोड़ा उलझने में रही।
1: हेलो
2: आज कौन सा गाना सुना हम अपने पसंद के?
1: रोवा बता दी रोवा कौन सा गाना सुने?
2: हम तो गाना हुए सुने तेरे ये सानो की बदला।
1: अगर आवाज भी कट जाता गाना कैसे सुनाई दी?
2: आवाज भी कट जाता थे।
1: अब बोलिए अब थोड़ा ठीक होता है।
2: तेरे ये सानो यही वाली हिंदी गाना है ना। यही पुराना सॉन्ग सुनवाइएगा
1: जी। और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
2: ना ये सुनवाइएगा दूसरा सुनवाइएगा गाना हिंदी।
1: नहीं मतलब हम पूछ रहे हैं आप ये गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
2: ये गाना आप ही को सुनवाएंगे केवल आज
1: जी,
2: और कोई और किसी को नहीं सुनवाएंगे
1: जी। जी कोई बात नहीं।
2: नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है ना जी, गद्दारी नहीं करना चाहिए। सब रेडियो रेन्यूम को सुनने वाले को सुनवाएंगे
1: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
2: ठीक है मैडम।
1: सुनते रहिए रेडियो रेन्यूम 90.4 एफएम।
2: ठीक है नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: सलाम अलैकुम
6: जी।
5: सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: कौन मैम बोल रहे हैं?
6: मैं तो भारती बोल रही हूँ। आप?
5: मैं अहमद सन्नी, वार्ड नंबर जी।
6: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
6: हाँ जी,
5: तबीयत पानी अच्छा है ना?
6: जी, मेरा तबीयत तो सही है।
5: आज हमको सॉन्ग सुनाइए अवतार मूवी से। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे।
6: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: हाँ, सबसे पहले तो आपको और मुनर्मा जी को, अख्तरी को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
6: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
5: थैंक यू मैम। आज बच जाएगा क्या?
6: जी आज नहीं तो कल बच जाएगा एकदम।
5: ठीक, ओके मैम, शुक्रिया गाना सुनाने के लिए।
6: ओके ओके।

0: सबसे बिल्कुल
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडियन 90.4 एफएम में।
1: जी सलाम मैम, कैसन बानी?
2: कैसन बानी?
1: हम अच्छे बानी, अपन बताई।
2: हमने की सब क्यों ठीक बानी सर।
1: मैम का बात बा, आज बानी और मनोरमा जी से बात नहीं हो पाओ।
2: हम तो से कहले रहे की 12 बजे के बाद कॉल करी तो मनोरमा जी से बात हुई।
1: मैम टाइम ना मिल रहा ये वजह से।
2: तो एने की रिकॉर्डिंग हम ही करें।
1: अच्छा मैम, अच्छा बात आदमी करे के चाहिए। और नाश्ता हो गई?
2: हाँ हाँ नाश्ता हो गई बा। आप बताए आपके हो गए?
1: जी हो गई बा। मैम तो बता दी हम कौन बोलता नहीं
2: सर। फ्रोज
1: जी मैम। जी मैम तो हमारा के एगो गम वाला गाना सुनाई।
2: गम वाला?
1: जी मैम।
2: अच्छा तो बता दी कौन सा गम वाला गाना सुने एक बार।
1: जी मैम गाना के बोल कौन सी के आवाज में गाना बा। और गाना के बोल बा आँख से आँख अब ना मिला पाई बुझे।
2: एक बार और ही बताए।
1: मैम ये वाला गाना बता नहीं ना, आँख से आँख अब ना मिला पाई बुझे।
2: अच्छा अच्छा, और गाना क्यों के सुनाहू के बाद?
1: आपके और सभी आरजे के अभी आज कौन दोस्त का ना सुना है अकेले सुना।
2: अच्छा चलिए तब तो ठीक है बा।
1: और मैम और बताइए और वाइस चली?
2: हाँ वो तो चल रही करी।
1: भोजपुरी गाने फरमाइश बटन तो भोजपुरी में बोल दी, अच्छा लगी। अब सभी दोस्त का हम की कैसा लगी बताइए। हेलो
2: अच्छा भोजपुरी बोले नहीं
1: कोशिश करता नहीं।
2: अच्छा
1: जी मैम तो कौन नंबर में हमारे फरमाइश
2: राउर तो 4-5 नंबर पे बाबे।
1: बहुत लेट हो गई मैम, तो आज तो चली ना पक्का बा।
2: ना ना हमार केवल चली तो 16 को कॉल हम लेके हट जाए, तो हमार अगर आज चली तो चली या ना तो काल चली एक बार।
1: अच्छा काल के इंतजार हो।
2: आज ना तो मिलिए जाए सुनेंगे
1: मैम, लेकिन एक बात भाई इंतजार करके सुने में अलगा ही मजा बा।
2: अच्छा हर के हुई नानो समझ पावेला।
1: हाँ मैम हम समझाता नहीं की मतलब इंतजार करके सुने में अलग ही मजा आवेला। जैसे आज रिकॉर्डिंग करनी काल बाजी वक्त के नागवाते हुए प्ले करी और भी लोग।
2: चलिए ठीक बताओ गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: बाय।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: का हुआ पुछू बेबी?
2: बेबी
1: वो का कोई ले बड़ू बताइबू की बीपी बढ़ाइबू?
2: तो बर्दाश्त कर ले बना।
1: अरे

0: पहुंची।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।